मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 9 अक्टूबर 2026। प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रथम प्रसारण सभा। इस सभा के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र दिव्या अग्रवाल का नमस्कार और सुप्रभात।

0: मिडवे पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल GST परिषद द्वारा अनुमोदित

0: जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाची वाडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस देशगान के साथ।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से, और इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अनूप जलोटा और उनके साथियों का गाया ये भजन।

गोविंद प्रसाद जयपुर वाले, इनसे ये भक्ति रचना आपने सुनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मी शंकर के स्वर में ये भजन।

इस भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन। चिंतन में आज आप सुनेंगे महात्मा गांधी एक यात्रा का भाग 8। आलेख और वाचन स्वर है सुमित गौतम का।

गांधी भारत की आत्मा की आवाज, आवाज जो गूंजती रहेगी सदियों तक। जब सत्य लड़खड़ाता है तो उसे सहारा देती है एक लाठी, वो लाठी है गांधी। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट है गांधी। भारतीय इतिहास का एक समूचा कालखंड है गांधी। सभी अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब है गांधी। गांधी एक मनुष्य नहीं, एक यात्रा, एक सतत यात्रा।

0: ये चले इस यात्रा में।
1: गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच अत्यंत ही स्नेहिल संबंध थे। जिस तरह नदी के अंदर एक अंतरधारा होती है जो नदी के प्रवाह को सूखने नहीं देती, उसी तरह इन दोनों महापुरुषों के बीच स्नेह की एक ऐसी निर्मल धारा प्रवाहमान थी जिसने उनके जीवित रसधार को सूखने नहीं दिया। अपने व्यस्त राजनीतिक जीवन के बावजूद बापू और सरदार के बीच लंबा पत्र व्यवहार चलता था। मणिबहन पटेल द्वारा संपादित सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम लिखित गांधी जी के पत्रों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। इससे भी इन संत और सेनानी की घनिष्ठ मैत्री एवं विनोदी स्वभाव का पता चलता है। गांधी जी से जब सरदार का परिचय हुआ तो प्रारंभ में वे उन्हें भाई श्री लिखा करते थे, लेकिन बाद में उनका संबंध भाई और चिरंजीव तक घनिष्ठ होता चला गया। बापू सरदार को कितना प्यार करते थे और उनके स्वास्थ्य की कितनी फिक्र थी, इसका पता उनके पत्रों से चलता है। अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा, आप शरीर पर खूब अत्याचार कर रहे हैं, परंतु सरदार से कोई कुछ कहया करा सकता है? स्वास्थ्य बिगाड़ लेंगे तो बहुत सुनना पड़ेगा। दूसरे पत्र में पूछा, आपका वजन कितना रहता है, क्या खाते हैं, दूध दही कितना लेते हैं, कुछ भेजूं? मांगे बिना तो माँ भी नहीं परोसती, और वह भी मेरे जैसी माँ, फिर पूछना ही क्या। अब सुबह की प्रार्थना में जाने का वक्त हो गया, इसलिए बस। एक बार जब सरदार बीमार पड़े तो मीठी चुटकी लेते हुए लिखा, आप तो बीमार पड़ने ही वाले थे, आप दूसरों के सरदार हैं लेकिन अपने तो दास ही मालूम होते हैं। सच्चे सरदार तो वह होते हैं जो खुद अपने पर सरदारी भोगें। आप समय पर काबू रखें और सब बातों के नियम बना लें तो बहुत जिएंगे। कठौती कूड़े पर हंसती है, यह समझकर यह बात उड़ा न दे। एक और पत्र में लिखा, दवाओं के बल पर कहाँ तक टिकेंगे, कौन सा राज्य लेना है, धीरे चलिए, कठौती लकड़ी की होती है और कूड़ा पत्थर का। यहाँ बापू ने अपने आप को कठौती कहकर स्वयं अपनी अस्वस्थता पर भी व्यंग किया है। साथ ही स्वराज के सेनानियों द्वारा कौन सा राज्य लेना है का मधुर विनोद भी कितना सुंदर बन पड़ा है। बापू कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने और उसमें विनोद की गहरी चुटकी लेने से चूकते नहीं थे। सरदार के जन्मदिवस पर बधाई देते हुए आपने लिखा, सुना है आज आपका जन्मदिवस है, इसलिए सेवा के वर्षों में से एक वर्ष तो गया, ऐसे अनेक वर्ष जाएं, ऐसी कामना करना यह कहने के बराबर है कि आप दीर्घायु हों। देखना, हमें स्वराज्य लेकर ही जाना है। बापू सरदार को कितना प्यार करते थे, इसका पता इस घटना से चलता है। सन 33 में जब बापू को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेजा गया तो उससे एक दिन पूर्व ही सरदार को उस जेल से हटाकर नासिक भेज दिया गया था। बापू को जब इस बात का पता चला तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। कहते हैं यरवदा जेल में बापू भर्तहरी नाटक की एक पंक्ति याद कर अक्सर गुनगुनाया करते थे, यहरे जखम जोगे नहीं मटे, जिसका अर्थ है जोगी बन जाने से दिल का घाव नहीं मिटता। सरदार केवल नाम के सरदार नहीं थे बल्कि अपने दृढ़ निश्चय के कारण बापू भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। अपने एक पत्र में उन्होंने सरदार को लिखा, कुछ मामलों में मेरा सारा आधार सिर्फ आप पर रहता है, इसलिए मैं तो अक्सर एकलव्य की तरह करता हूँ। एकलव्य द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर और मूर्ति से ज्ञान प्राप्त करके धनुर्विद्या में अर्जुन के बराबर हो गया। मैं आपकी मानसिक प्रतिमा बना लेता हूँ और उसे पूजता हूँ। बापू के पत्रों से पता चलता है कि उनका जीवन कितना व्यस्त था और वे किस तरह अपनी व्यस्त जीवन में से पत्र लिखने का समय निकाल लिया करते थे। बापू को इतना अधिक काम करते देखकर कोई रोकने वाला नहीं था, ऐसी बात नहीं। समय समय पर सरदार उन्हें खरी खरी सुनाने से चूकते नहीं थे। एक बार अस्वस्थता के बावजूद उनके हाथ का लिखा पत्र पाकर सरदार ने महादेव भाई को लिखा था। बापू के हाथ का पत्र देखकर आनंद तो हुआ, परंतु साथ ही फिक्र भी हुई। अभी हाथ से लिखने या लिखवाने का भी लोभ छोड़ देना चाहिए। लिखना शुरू कर देंगे तो किसे लिखेंगे और किसे ना लिखेंगे? विश्व को कुटुंब बनाकर बैठे हैं, काजी को सारे शहर की फिक्र और महात्मा को सारी दुनिया की फिक्र।

चिंतन में भी आपने सुना गांधी एक यात्रा का भाग 8। आलेख और वाचन स्वर था सुमित गौतम का। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है चूहा नियंत्रण क्यों और कैसे, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, चूहा नियंत्रण करें। चूहे खड़ी फसलों को काटते हैं, कुतरते हैं, खेत खलियानों में, अनाज से भरे गोदामों में अनाज खाने के साथ साथ अपने मलमूत्र से 10 गुना अधिक बर्बाद कर देते हैं। चूहा अपने आकार के अनुसार 10 से 60 ग्राम अनाज प्रतिदिन खाता है, जिससे प्रतिवर्ष 1.25 करोड़ टन अनाज की बर्बादी होती है। देश भर में चूहा जितना अनाज खराब करते हैं, उससे लगभग 2.5 करोड़ व्यक्तियों को भोजन प्रदाय किया जा सकता है। चूहा अनाज और फसलों के अतिरिक्त किताब, कपड़ों, लकड़ी के सामान, बिजली के तारों, तालाब, बांधों और सिंचाई नालियों को भी खराब कर देते हैं, जिससे श्रम और समय दोनों अधिक लगते हैं। चूहा सर्वभक्षी जीव है और बहुत ही चालाक होते हैं। इनमें सूंघने, चखने के साथ साथ आर्द्र और गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। चूहे अपने साथ साथ बहुत से हानिकारक परजीवियों को अपने बालों में लिए रहते हैं, जिससे मनुष्यों और पशुओं में प्लेग, टाइफाइड बुखार, रेबीज, पीलिया दस्त जैसे घातक रोग फैलते हैं। चूहों का वंशवी तीव्र गति से बढ़ता है। एक जोड़े चूहों से एक साल में लगभग 800 चूहे पैदा होते हैं। चूहों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हरिन, गैल बिल प्रजाति के चूहे विशेष रूप से फसलों को नष्ट करते हैं। चूहे विशेषतः रात्रि के समय ही हानि पहुंचाते हैं। चूहों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के आधार पर चूहे हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, इसलिए चूहों का नियंत्रण सामूहिक रूप से करना चाहिए। सबसे पहले घरों, गोदामों के दरवाजों के निचले भाग में 15

0: सेंटीमीटर चौड़ी टीन की प्लेट लगाएं, नालियों और खिड़कियों में तार की जाली लगाएं, जहां कहीं भी चूहों के बिल दिखाई दें उनको सीमेंट कांच के टुकड़ों तथा कंकड़ पत्थर भरकर बंद कर दें। घरों के आसपास सफाई रखें जिससे चूहा छिपने न पाए, और यदि घरों के आसपास पेड़ पौधे हों तो लटकती हुई शाखाओं को काटते रहना चाहिए जिससे चूहे पौधों पर न चढ़ने पाएं। अनाज से भरी बोरियों को जमीन से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लकड़ी और चौकियों पर रखें। अनाज भंडारण जहां तक संभव हो सके कोठियों में भरकर रखें। चूहों को पकड़ने के लिए घरों में चूहे दानियों का प्रयोग करना चाहिए। चूहे दानियों को दोबारा प्रयोग करने से पहले साबुन और पानी से साफ कर लेना चाहिए। चूहों का पता लगाने के पहले सभी बिलों को ढूंढकर शाम के समय बिलों के मुंह कागज और गीली मिट्टी से बंद कर दें, जिससे जहां जहां बिल खुले हों वहां पर चूहे हैं। खुले हुए बिलों में 3-4 दिन तक सादा गोलियों का प्रलोभन के रूप में प्रयोग करें। बाद में विषाक्त गोलियों का प्रयोग करने से चूहों को आसानी पूर्वक नियंत्रित कर सकते हैं। जिंक फास्फेट गहरा भूरा या काला पाउडर होता है। इस विष की एक खुराक चूहा मारने के लिए पर्याप्त होती है। जिंक फास्फेट का चुग्गा तैयार करने के लिए 96 भाग आटा, 2 भाग खाद्य तेल और 2 भाग जिंक फास्फेट लकड़ी की सहायता से मिलाएं। विषयुक्त चुग्गा हवादार स्थान पर खुली जगह पर बनाएं, बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर रखें। आंतजन विष धीरे धीरे असर करने वाला विष है जो रक्त के जमाव को रोकता है, जिससे चूहों की आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव द्वारा मृत्यु हो जाती है। विषयुक्त चुग्गा रात्रि के समय ही प्रयोग करें। खाद्य पदार्थों और पानी को खुला न छोड़ें। चूहा नियंत्रण का कार्य सभी को सामूहिक रूप से करना चाहिए, जिससे चूहों द्वारा होने वाली संभावित हानि से बच सकते हैं, चूहों द्वारा फैलने वाली बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और अपने को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।
1: चूहा नियंत्रण क्यों और कैसे, इस विषय पर अभी आपने सुनी एक कृषि चर्चा और जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।
1: अपने रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
3: आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
4: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार सलमान खान।
2: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, FM पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।

अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें,
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: श्रोताओं, आज 9 अक्टूबर को हम मनाते हैं प्रादेशिक सेना दिवस। प्रादेशिक सेना स्थापना दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। और श्रोताओं, 1920 में अंग्रेज़ों ने भारतीय प्रादेशिक अधिनियम 1920 के माध्यम से प्रादेशिक सेना का गठन किया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राज गोपालाचारी ने 9 अक्टूबर 1949 को औपचारिक रूप से प्रादेशिक सेना की शुरुआत की थी। तब से इस दिन को प्रादेशिक सेना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को आज के दिन के रूप में मान्यता दी जाती है। प्रादेशिक सेना, जिसे हम टेरिटोरियल्स के नाम से भी जानते हैं, और ये नियमित सेना के बाद राष्ट्रीय रक्षा की दूसरी पंक्ति में मानी जाती है। ये सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। श्रोताओं, इस सेना का काम है प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करना, नियमित सेना को स्थिर जिम्मेदारियों से मुक्त करना और देश की सुरक्षा या समुदायों के जीवन को प्रभावित करने वाली स्थितियों में आवश्यक सेवाओं का रखरखाव करना। और इस विषय पर हम आपसे और भी बात करेंगे हमारे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोताओं, साथ ही हम आपको बता दें कि आज हम विश्व डाक दिवस भी मना रहे हैं और उत्कलमणि गोपाल दास बंधु जी को भी हम याद करेंगे। तो ये तो थी कार्यक्रम दर्पण में कुछ बातें आपके साथ। सूचना पर कार्यक्रम दर्पण अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और उसके बाद हिंदी में समाचार। ये समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
5: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास विभागीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे सहभागं करिष्यति। ह्यः आरब्धे अस्मिन् द्विदिवसीय सम्मेलने सर्वेषां राज्यानां महिला बाल विकास क्षेत्रैः सम्बद्धानां राजनीतिक नेतृणां अधिकारिणां च सहभागिता भवति। प्रधानमन्त्रिणा परिकल्पितानां विभागीय शिखर सम्मेलनानां शिखायाः इदं द्वितीयं सम्मेलनमस्ति। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं सहकारी संघव्यवस्थायाः सुदृढीकरणं, राष्ट्रिय प्राथमिकतानां पूर्तये सामूहिक दायित्व भावनायाः प्रवर्धनं तथा केन्द्र राज्ययोः परस्पर सहकारेण कार्य परिणामानां त्वरित साधनमस्ति। सम्मेलने चतुर्षु प्रमुख विषयेषु ध्यानं केन्द्रितमस्ति: पोषणं, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षणं तथा महिलानां सुरक्षा सशक्तीकरणञ्च। वस्तु सेवाकर परिषदा नवदिल्ल्यां सम्पन्ने स्वकीयस्य 75वें उपवेशने करदातृभ्यः अनुपालन प्रक्रियां सरलीकर्तुं विविधाः उपायाः अनुमोदिताः। एतेषु निर्णयेषु वस्तु सेवाकर व्यवस्थायाः अन्तर्गतः

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र के जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद के अनुमोदित कर सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा व्यक्त की कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी। इससे कैंसर रोगियों को सालाना

0: 2500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल किए जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic पर लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिले हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए। सबसे अधिक 7,16,00,000 रुपए कृषि बीज क्षेत्र से प्राप्त हुए। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के उनके फार्म हाउस नानाची वाड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर नए मिसाइल हमले करने का दावा किया। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी। इस बीच रियाद में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटों सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारी आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। प्रस्तुति होगी तुलिका शर्मा की। फिल्म संगीत का आनंद आप हमारे स्टूडियो से ले सकेंगे प्रातः 7:30 पर। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे मेहंदी हसन की गाई कुछ अजलें। गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 9:00 से। 9:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर हरिचरण वर्मा का गायन और इनका गाया राग नट।

ठहराव। जिले की चिट्ठी आप सुन सकेंगे प्रातः 10 बजे से। ये कार्यक्रम भोपाल केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। प्रातः 10:05 पर आप हमारे स्टूडियो से सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। ये कार्यक्रम आप ही के फरमाइशी गीतों पर आधारित होगा। श्रोताओं, कार्यक्रमों का प्रसारण मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा प्रातः 11 बजे से। इसमें आप सुनेंगे फोन करें गीत सुने कार्यक्रम सबसे पहले, और फिल्म संगीत प्रातः दोपहर 12 बजे से। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से। दोपहर 1 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम महिला सभा। ये कार्यक्रम छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा, और छतरपुर केंद्र की ही प्रस्तुति होगा लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम क्रमशः 1:30 पर और 1:45 पर। मध्य प्रदेश केंद्र से आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से। प्रादेशिक समाचार 2:10 पर और 2:30 पर आप सुनेंगे मध्य प्रदेश केंद्र से ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, इस सभा के कार्यक्रमों में आप रह सकते हैं दोपहर 3 बजे तक हमारे साथ। और लीजिए अब सुनिए हमारी शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, शाम की सभा का आरंभ होगा शाम 5 बजे से इस घंटे की खास खबर के साथ। युवाणी कार्यक्रम 5:02 पर ये कार्यक्रम में छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। 5:33 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। एनसीईआरटी का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे मध्य प्रदेश केंद्र से ही शाम 6 बजे से। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण और 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल। ये कार्यक्रम हम अपने ग्वालियर केंद्र से प्रसारित करेंगे। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। उर्दू समाचार रात्रि 9:15 पर और खेल जगत 9:30 पर। आपकी फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश का कार्यक्रम होगा ये रात्रि 9:45 पर। राग रंजनी शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। तो ये तो थी जानकारी हमारी आज की दोनों ही सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज महिला एवं बाल विकास सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज हरदा में उद्यमियों, किसानों और आम लोगों से संवाद करेंगे। मुंबई रोड शो में मध्य प्रदेश को मिले करीब 90,000 करोड़ रुपए के निवेश। और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और नए पदों की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर आयोजित 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े मंत्री और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर सहकारी संघवाद

0: उत्पाद को मजबूत करना और योजनाओं के बेहतर परिणाम हासिल करना है। सम्मेलन में पोषण, शिक्षा, बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे चार प्रमुख विषयों पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में लिए गए फैसलों का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा है कि इससे कर व्यवस्था सरल, पारदर्शी और कारोबार के अनुकूल बनेगी। बैठक में कर दरों में बदलाव के बजाय जीएसटी की प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर जोर दिया गया। कम जोखिम वाले जीएसटी पंजीकरण को 3 कार्य दिवस में मंजूरी देने और रिफंड की समय सीमा 15 से घटाकर 10 दिन करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज हरदा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे उद्यमियों, युवाओं, किसानों और आम लोगों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री जिले की समीक्षा बैठक भी लेंगे और समाधान ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम में जिले के विकास कार्यों और आम लोगों की समस्याओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मुंबई में आयोजित मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। डॉ. यादव की मुंबई रोड शो में विभिन्न उद्योग समूहों और निवेशकों के साथ दिन भर हुई बैठकों में प्रदेश को लगभग 90,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। अलग अलग उद्योग समूहों के साथ बैठकों में सीमेंट, फार्मा, टेक्सटाइल, अक्षय ऊर्जा, डेटा सेंटर और निर्माण सामग्री जैसे क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा हुई। आवाजा समूह ने करीब 22,000 करोड़, एवरसोर्स कैपिटल ने 3,500 करोड़ रुपए के निवेश की जानकारी दी। वहीं मीरा कॉटन ने 2,000 करोड़, डीएनएच इंडिया ने 300 करोड़ और स्टारलाइट टेक्नोलॉजीज ने ग्वालियर में 200 करोड़ रुपए की दूर संचार उपकरण लगाई इकाई लगाने का प्रस्ताव रखा।
1: फार्मा सेक्टर में भी हमारे पास सन फार्मा, इफ्का, ऐसी बड़ी बड़ी ये सब मिलाकर के लगभग 1400 करोड़ के निवेश इनके माध्यम से होने वाले हैं। राजस्थान के साथ 2 प्रस्ताव हमारे पहले से चल रहे हैं, तीसरे प्रस्ताव पे भी हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे राज्यों के बीच परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधों के बलबूते पर एक दूसरे के राज्य में एक दूसरे के नागरिकों की बेहतरी के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के और अच्छा उपयोग करने के लिए और देश की समृद्धि में हम सब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल कहा कि भारत दूर संचार के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने और नई तकनीक के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान आयोजित सीईओ गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने सरकार और उद्योग जगत के बीच साझेदारी पर जोर दिया। बैठक में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, आधुनिक नेटवर्क और अगली पीढ़ी की संचार तकनीकों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की बिक्री पर मार्जिन की अधिकतम सीमा एमआरपी का 30% तय की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आ सकती है और कैंसर मरीजों को सालाना करीब 2,500 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण दवाओं की सूची तय होने के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 60 में कल राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने करीब 42 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसमें वल्लभ नगर से सौम्य विहार तक 37 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड बनाई जाएगी, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने 27 जिला अस्पतालों में जरूरत के मुताबिक नए पद बनाने की प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेजों में करीब 3,000 नए नर्सिंग पदों के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा 5 मेडिकल कॉलेजों में कैंसर की जाँच और इलाज की सुविधाएं बढ़ाने के साथ पेट स्कैन, लिनैक और विशेषज्ञ विभाग शुरू करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। भोपाल के न्यू मार्केट में कल दोपहर सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग से कई दुकानों और रेहड़ियों को भारी नुकसान हुआ। बालाजी छोले भटूरे की दुकान से शुरू हुई आग आसपास की 5 से 6 दुकानों और 10 से 12 रेहड़ियों तक फैल गई। आग से बचने के लिए पहली मंजिल से कूदने के कारण

कारण 3 लोग घायल हो गए। दमकल की 15 से ज्यादा गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फ्रांस से आए प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी में कल जबलपुर में सिटीज 2.0 कार्यक्रम के तहत शहर के विकास और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और नगर निगम के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी। ग्वालियर में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने पर जिला प्रशासन ने 19 पटवारियों को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। आज 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में डाक सेवाओं के महत्व और लोगों को जोड़ने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन 1874 में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में डाक व्यवस्था का इतिहास प्राचीन है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज रांची में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत ने पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना रखी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन आज आगरमालवा स्थित नवीन कृषि उपज मंडी में किया जाएगा। महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्चुअली उपस्थित होकर किसानों से संवाद करेंगे। मंदसौर जिला जेल में पतंजलि योगपीठ के सहयोग से 3 दिवसीय योग शिविर संपन्न हुआ। खंडवा में जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के कार्य को व्यवस्थित रूप से संपादित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सतना में कार्य में लापरवाही बरते जाने पर अपर कलेक्टर ने जिले के 54 परीक्षाधीन पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। झाबुआ जिले के शिक्षा केंद्र में प्रतिनियुक्ति के माध्यम से 10 पदों की पूर्ति की जाएगी। नर्मदापुरम जिले में उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक सार्थक पहल शुरू की है। जबलपुर में टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ज्वाइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ टीम का शुभारंभ कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. जेपी नड्डा ने भारत मंडपम नई दिल्ली से किया। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय डिंडौरी में सेवा संकल्प अभियान के तहत छात्र छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। सागर में शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के गंभीर मामले में कलेक्टर ने जिले के 12 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा। गांधी चर्चा की प्रस्तुति है तुलिका शर्मा की।

गांधी चर्चा में आज सुनते हैं 8 अक्टूबर 1931 को यंग इंडिया में प्रकाशित लेख और चार्ली चैपलिन की आत्मकथा माई ऑटोबायोग्राफी के आधार पर गांधी जी और चार्ली चैपलिन की भेंट में हुए वार्तालाप के मुख्य अंश। गांधी जी ने चार्ली चैपलिन का नाम नहीं सुना था, पर जाहिर है वे गांधी जी

चरखे के बारे में सुन चुके थे। इसलिए पहला प्रश्न चार्ली चैपलिन ने गांधी जी से यही किया कि वे मशीनों के खिलाफ क्यों हैं। गांधी जी को इस प्रश्न से खुशी हुई और उन्होंने उन्हें विस्तार से ये बात समझाई कि भारत की पूरी किसान आबादी 6 महीने बेकार रहती है, इसलिए उसे उसके पहले के सहायक उद्योग में फिर से लगाना उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चार्ली चैपलिन ने फिर कहा, तो ये केवल कपड़ों के बारे में है? गांधी जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल, कपड़े और भोजन के मामले में हर राष्ट्र को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम आत्मनिर्भर थे और फिर वैसा ही होना चाहते हैं। इंग्लैंड को बड़े पैमाने के अपने उत्पादन के कारण अन्यत्र बाजार की तलाश रहती है, हम इसे शोषण कहते हैं और शोषक इंग्लैंड संसार के लिए एक खतरा है। यदि ये बात ठीक है तो सोचिए कि भारत जब मशीनों को अपनाकर अपनी आवश्यकताओं से कई गुना अधिक कपड़ा तैयार करने लगेगा और इस तरह वह भी शोषक बन जाएगा तो वो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। अब चार्ली चैपलिन का सवाल था कि प्रश्न केवल भारत तक सीमित है, लेकिन मान लीजिए आपको भारत में रूस की तरह की स्वाधीनता मिलती है और आप अपने बेरोजगारों के लिए अन्य काम खोज सकते हैं और संपत्ति के बराबर बंटवारे की गारंटी कर सकते हैं, तब तो आप मशीन की उपेक्षा नहीं करेंगे। आप काम के घंटे कम करने और श्रमिक को आराम के लिए अधिक समय देने का समर्थन करेंगे? इस पर गांधी जी ने कहा, बिल्कुल, जरूर करेंगे। इस पर चार्ली चैपलिन का कहना था कि मेरी भारत की आकांक्षाओं और उसके स्वाधीनता संघर्ष से सहानुभूति है, फिर भी मशीन से आपको जो चिढ़ है उसने मुझे कुछ उलझन में डाल दिया है। गांधी जी ने जवाब दिया कि आपकी बात मैं समझता हूँ, पर उन लक्ष्यों पर पहुँच सकने से पहले भारत को अपने को अंग्रेजी शासन से मुक्त करना चाहिए। मशीन के कारण हम अतीत में इंग्लैंड के अधीन हो गए और हम अपने को पराधीनता से केवल इसी तरह मुक्त कर सकते हैं कि हम मशीन से बनी सभी चीज़ों का बहिष्कार करें। इसीलिए हमने प्रत्येक भारतीय के लिए अपना सूत कातना और अपना कपड़ा बुनना देश के प्रति उनका एक कर्तव्य बना दिया है। ये इंग्लैंड जैसे अति शक्तिशाली राष्ट्र पर आक्रमण का हमारा अपना ढंग है और निसंदेह अन्य कारण भी हैं। भारत की जलवायु इंग्लैंड से भिन्न है और उसकी आदतें और आवश्यकताएं भी भिन्न हैं। इंग्लैंड में ठंडे मौसम के कारण कठिन उद्योग और पेचीदा अर्थव्यवस्था आवश्यक हो जाती है। आपको खाना खाने के उपकरणों की जरूरत पड़ती है जबकि हम अपनी उंगलियों को काम में लाते हैं, और इस तरह ये चीज बहुत सी भिन्नताओं का रूप ग्रहण कर लेती है। गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे 8 अक्टूबर 1931 को यंग इंडिया में प्रकाशित लेख एवं चार्ली चैपलिन की आत्मकथा माई ऑटोबायोग्राफी के आधार पर गांधी जी और चार्ली चैपलिन की भेंट में हुए वार्तालाप के मुख्य अंश। गांधी चर्चा का अब समापन करते हैं इस भक्ति गीत से।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, प्रस्तुति थी तुलिका शर्मा की। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज आपके साथ मैं हूँ दिव्या अग्रवाल। श्रोताओं, हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि कल हमने एक अत्यंत प्रतिभाशाली और महान अभिनेता को खो दिया है। और नाना पाटेकर जी के बारे में हम क्या बताएं, कल से हम सभी लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारी बातें इनकी सामने आ रही हैं। भारतीय फिल्मों के अभिनेता, लेखक और ये फिल्म निर्माता भी रहे हैं। इनके अभिनय के सभी कायल थे और यही कारण है कि उन्हें आज तक कई बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और सन 2013

2013 में इन्हें पद्मश्री से भी विभूषित किया जा चुका है। इंडस्ट्री में अपने डायलॉग को बोलने की स्टाइल को लेकर ये काफ़ी मशहूर रहे हैं और आज भी बहुत सक्रिय रहे। अपने मरणोपरांत इन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक इन्होंने काफ़ी सारा काम किया। कई फिल्मों में ये मशहूर इन्होंने एक्टिंग की है। श्रोताओं, नाना का जन्म मुरुड जंजीरा रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था और इनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर और माँ का नाम संजनाबाई पाटेकर था। कार्यक्रम में आज सबसे पहले हम नाना पाटेकर जी को ही श्रद्धांजलि देते हैं और सुनते हैं इनकी फिल्म का गीत गुलामे मुस्तफ़ा से। गीत को आवाज़ दी है इकबाल साबरी और अफजल साबरी ने। गीत है आनंद बख्शी का और संगीत राजेश रोशन का।

श्रुता और नाना पाटेकर ने 1978 में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म थी गबन, लेकिन 1986 में अंकुश फिल्म जो रिलीज़ हुई थी उसमें उस फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई।

अपने फिल्मी करियर में उन्होंने हिंदी के साथ मराठी सिनेमा में भी काम किया। परिंदा, तिरंगा, क्रांतिवीर और खामोशी जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने दर्शकों के दिल में जगह बनाई और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। और केवल संजीदा ही नहीं, कॉमिक फिल्म

1999 में कारगिल युद्ध में भी उन्होंने योगदान दिया था। कारगिल युद्ध के दौरान इन्होंने एक्टिंग करियर को छोड़कर मराठा लाइफ इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथ मिलकर युद्ध में योगदान दिया। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई और दर्शकों को हैरान किया। श्रोताओं, देश के प्रति इनके योगदान को देखते हुए इन्हीं की फिल्म तिरंगा का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज के स्वर में।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। और लीजिए आप सुनिए टैक्सी नंबर 9211 फिल्म से ये गीत, जिसे आवाज़ दी है शेखर रविजानी ने।

शुरू टैक्सी नंबर 9211 फिल्म का ये गीत आपने सुना। जॉन अब्राहम के साथ नाना पाटेकर ने इस फिल्म में टैक्सी ड्राइवर की भूमिका निभाई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही। श्रोताओं, इसके साथ ही अब हम आपको सुनवा रहे हैं पाठशाला फिल्म का गीत, जिसमें नाना पाटेकर जी ने प्राध्याना पक्के की भूमिका निभाई। और ये जो फिल्म है पाठशाला, ये मराठी फिल्म शाला से प्रेरित है। ये कहानी भारतीय शिक्षा प्रणाली और उसकी कमियों पर कटाक्ष करती है। सुनते हैं इस फिल्म का एक ये गीत।

0: पाठशाला फिल्म का ये गीत आपने सुना कैलाश खैर के स्वर में। गीत और संगीत था हनीफ शेख का। श्रोताओं, बात कर रहे हैं नाना पाटेकर जी की, और बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस अभिनेता ने फिल्मों में पार्श्व गायन भी किया है। जी हाँ, इन्होंने यशवंत, वजूद और आँच जैसी फिल्मों में गीत भी गाए हैं। श्रोताओं, अपने मृत्यु के समय पाटेकर जी आगामी क्राइम थ्रिलर द कन्फेक्शन ऑफ मैरी, जिसे द कन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, इस फिल्म पर काम कर रहे थे। सह निर्माता सुभाष काले जी ने के साथ ये फिल्म की डबिंग पूरी करने के लिए मुंबई लौटने वाले थे, जिसमें डबिंग की एक लाइन बाकी थी, पर उससे पहले ही काल ने इन्हें हमसे छीन लिया। श्रोताओं, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार को हमारा शत-शत नमन है, और इस श्रद्धांजलि के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए। भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST परिषद के अनुमोदित GST सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
1: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
2: दूर दूराज गांव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़के, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव के महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
1: कि ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन
4: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2500 करोड़

0: की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के MRP में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। PVK के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
2: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इन्फोसिस, TCS, विप्रो और SCL के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जाँच के बाद ये कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच 7:00 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की PV सिंधु का सामना थाईलैंड की रच्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड

0: उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आए, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाए। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी, तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई, चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट इन वैलिडिक्टरी सेशन ऑफ डिपार्टमेंटल समिट ऑन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली टुडे। गवर्नमेंट कैप्स ट्रेड मार्जिन्स ऑन नॉन शेड्यूल्ड एंटी कैंसर ड्रग्स एट 30% ऑफ MRP. Prices may fall by up to 70%. Counting of votes begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Last rites of veteran actor Nana Patekar performed with full state honours at his Pune farmhouse. Houthi launches fresh attacks on airports in Saudi Arabia. India asks its nationals residing in that country to remain alert and vigilant. And in cricket, second T20 international between India and West Indies to be played in Ranchi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will participate in the valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. The two-day departmental summit, which began yesterday, is witnessing participation of political leadership and officials dealing with the women and child development sector from all states. More from our correspondent.
3: It is second in the series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen cooperative federalism, foster collective ownership of national priorities, and accelerate outcomes through closer center-state collaboration. The summit is focusing on 4 key themes, including nutrition, early education, child protection, women's safety, and empowerment. The departmental summit model is bringing together stakeholders from the union and state governments to deliberate on sectoral priorities, share good practices, address implementation challenges, and agree on time-bound actions for improved governance and service delivery. With Priya Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: Government has approved a cap on the margins charged for the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन की गाई कुछ गज़लें।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन की गाई कुछ गजलें। और लीजिए अब सुनिए मेहंदी हसन की गाई ये एक और खूबसूरत गजल।

मेहंदी हसन की गाइस पारंपरिक गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग टू ऑल माय प्यारे प्यारे साथियों। हाजिर हूँ लेके आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त दिव्या अग्रवाल। जानना चाहती हूँ आपका हाल, क्योंकि आप सब हैं बड़े कमाल और आप ही के प्यार से हम भी हैं माला माल। दोस्तों, ये तो हुई तुकबंदी, लेकिन वाकई आप सभी का प्यार हमें रोज़ ले ही आता है आपके पास, आपसे करने कुछ बातें ख़ास। तो आज की ख़ास बात ये है दोस्तों कि आज है 9 अक्टूबर, बहुत ही ख़ास है आज का दिन, क्योंकि आज हमारा देश मना रहा है प्रादेशिक सेना दिवस, यानी टेरिटोरियल आर्मी डे। अब प्रादेशिक सेना क्या होती है श्रोताओं, पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम आपको बता देते हैं। 1920 में अंग्रेज़ों ने भारतीय प्रादेशिक अधिनियम 1920 के माध्यम से प्रादेशिक सेना यानी टीए का गठन किया, टेरिटोरियल आर्मी। आज़ादी के बाद प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने 9 अक्टूबर 1949 को औपचारिक रूप से प्रादेशिक सेना की शुरुआत की थी, और तब से इस दिन को प्रादेशिक सेना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस बात को मान्यता दी जाती है। प्रादेशिक सेना, जिसे टेरियर्स के नाम से भी जाना जाता है, को नियमित सेना के बाद राष्ट्रीय रक्षा की दूसरी पंक्ति माना जाता है। जैसे पहली होती है आर्मी, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, और उसके बाद आती है हमारी टेरिटोरियल आर्मी। ये जो सेना है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। श्रोताओं, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में, नागरिक प्रशासन की सहायता

ना नियमित सेना को स्थिर जिम्मेदारियों से मुक्त करना और देश की सुरक्षा समुदायों के जीवन को प्रभावित करने वाली स्थितियों में आवश्यक सेवाओं का रखरखाव करना इस सेना का प्रादेशिक सेना का मुख्य कार्य है। प्रादेशिक सेना की इकाइयों ने उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर और भारत की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर सक्रिय सेवाएँ प्रदान की हैं। ये बल जुलाई 1987 से मार्च 1990 तक श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षक बल का भी हिस्सा रहा है। श्रोताओं, 18 से 42 वर्ष की उम्र के बीच का कोई भी भारतीय पुरुष नागरिक टीए सेवा के लिए आवेदन कर सकता है और इसमें प्रवेश कर सकता है। तो ये तो थी कुछ जानकारी, और साथ ही हम इसके बारे में आपको और बताएं श्रोताओं कि एक और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वॉलंटियर फोर्स का गठन किया गया था और महात्मा गांधी ने 1898 और 1905 में दक्षिण अफ्रीका में वॉलंटियर फोर्स के रूप में वहां पर हिस्सा लिया। 1917 में भारतीय रक्षा बल अधिनियम पारित किया गया, सभी विद्यालयों में रक्षा बलों में योगदान मांगा गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय कॉप्स ज्वाइन किया और नेहरू ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय कॉप्स में हिस्सा लिया। यानी कि जो ये जो गठन है ये बहुत पहले से है। अगर हम आज़ाद भारत की बात करें तो 1949 में इसका विधिवत रूप से इसका गठन किया गया, लेकिन टास्क वॉलंटियर फोर्स के रूप में ये बहुत पहले से 1857 से ये गठित है। भारतीय रक्षा बल में दो शाखाएं हैं, एक तो सहायक बल ऑक्सिलरी फोर्स जिसे कहते हैं, जो केवल यूरोपीय और एंग्लो इंडियंस के लिए था, और भारतीय प्रादेशिक सेना इंडियन टेरिटोरियल फोर्स जो केवल भारतीयों के लिए थी। अगस्त 1920 में प्रादेशिक भारतीय बल विधेयक पारित किया गया और जिसे चार्ल्स मॉन्ड्रेनो ने प्रस्तुत किया था। और अभी जो हमने आपको बताया कि 18 अगस्त 1948 को प्रादेशिक सेना अधिनियम पारित हुआ और 9 अक्टूबर यानी आज के दिन 1949 में पहला कैंप प्रादेशिक सेना का श्री सी राजगोपालाचार्य ने उद्घाटित किया था। श्रोताओं, इसमें होती हैं पैदल सेना, बख्तरबंद, तोपखाना यानी आर्टिलरी, एडी, इंजीनियर्स, सिग्नल, ईएमई, एएसई, एएमसी, कोस्ट बैटरी, और ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। 1972 तक अधिकांश इकाइयाँ नियमित सेना में सहमति समाहित कर दी गई और अभंग कर दी गई और केवल इन्फेंट्री बनी रही। वर्तमान में प्रादेशिक सेना की जो बल की संख्या वो है लगभग 50,000 कर्मी इसमें भाग लिए हुए हैं। इसकी जो नवीनतम इकाई है वो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए समग्र पारिस्थितिकी कार्यबल यानी CETF जो प्रयागराज में गठित की गई है। श्रोताओं, प्रादेशिक सेना ने 1962, 1965 और 1971 और 1999 जो कारगिल युद्ध था उस युद्ध में भी भाग लिया। प्राकृतिक आपदाओं में ये सेना हमेशा सहायता करती है, लातूर के भूकंप में, उत्तरकाशी का भूकंप हो या कोई भी जो अभी तक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसमें ये सेना तत्काल रूप से भाग लेती है। श्रीलंकाई गृह युद्ध के दौरान 1987 में भारतीय शांति सेना द्वारा लिट्टे तमिल टाइगर्स ने श्रीलंकाई जाफना प्रायद्वीप पर नियंत्रण पाने के लिए भी एक सैन्य कार्रवाई जो की गई थी उसमें भी इस सेना ने भाग लिया। और भी बहुत सारी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं इन सब पर, पूर्वोत्तर में ऑपरेशन राइनो हो, ऑपरेशन बजरंग हो, इन सब में इन सेनाओं ने भाग लिया है। कीर्ति चक्र, अति विशिष्ट सेवा पदक, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा पदक और सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक, ये सभी पदक इस सेना हेतु प्रदान किए जाते हैं। तो ये तो थी बात हमारी प्रादेशिक सेना की। और श्रोताओं, इसमें हम एक आपको ख़ास बात बताएं कि यदि हम लोग भी इसमें भाग लेना चाहें तो एक कहना चाहिए कि पार्ट टाइम रूप से हम इसमें भाग ले सकते हैं।

हमारे देश की रक्षा के लिए। श्रोताओं, बहुत सारे लोग आगे आकर कार्य करना चाहते हैं और प्रादेशिक सेना उसमें से एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम आगे आकर भाग ले सकते हैं, जिसमें हमने बताया था आपको भी फिल्म संगीत के दौरान कि नाना पाटेकर जी ने भी इस सेना में भाग लिया था। कारगिल युद्ध के दौरान मराठा रेजिमेंट में वो शामिल हुए थे और इसी प्रकार से कई सारे जो महेंद्र सिंह धोनी हैं और जिनको मानद उपाधि दी जाती है प्रादेशिक

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: देश प्रेम और देश सेवा की बात हम कर रहे थे और आज ही के दिन 1877 में एक और देश रत्न ने जन्म लिया था। जी हाँ, गोपाल दास बंधु, ओडिशा के एक सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ये साहित्यकार थे। इन्हें उत्कल मणि के नाम से भी जाना जाता है। ओडिशा में राष्ट्रीयता और स्वाधीनता संग्राम की बात चलाने पर लोग गोप बंधु दास का नाम सबसे पहले लेते हैं। उड़ीसावासी इनको दरिद्र सखा यानी दरिद्र सखा के रूप में भी स्मरण करते हैं। उड़ीसा के पुण्य क्षेत्र पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के उत्तरी पार्श्व में चौक के सामने इनकी एक संगमरमर की मूर्ति भी स्थापित है। श्रोताओं, उत्कल के विभिन्न अंचलों को संगठित कर पूर्णांग उड़ीसा बनाने के लिए इन्होंने प्राणपण से चेष्टा की और उत्कल के विशिष्ट दैनिक पत्र समाज के ये संस्थापक रहे। श्रोताओं, गोप बंधु दास का जन्म 9 अक्टूबर 1877 में पुरी जिले के सत्यवादी थाना के अंतर्गत सुआंडो नामक एक क्षुद्र पल्ली गांव में हुआ था। जून सन 1928 में केवल 53 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया। यद्यपि जीविका अर्जन के लिए इन्होंने वकालत की, तथापि शिक्षक के जीवन को वे सदा अपना आदर्श जीवन मानते थे। कुछ दिनों तक उन्होंने शिक्षक कार्य भी किया। अंग्रेजी शासन में पराधीन रहकर भी इन्होंने स्वाधीन शिक्षा पद्धति अपनाई थी। बंगाल के शांति निकेतन की तरह उड़ीसा के सत्यवादी नामक स्थान में खुले आकाश के नीचे एक वन विद्यालय इन्होंने खोला और बकुल वन में छात्रों को स्वाधीन ढंग से शिक्षा ये दिया करते थे। श्रोताओं, इन्हीं की प्रेरणा से उड़ीसा के विशिष्ट जन नेता और कवि स्वर्गीय गोदावरीश मिश्र और उत्कल विधानसभा के वाचस्पति पंडित नीलकंठ दास ने इस वन विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य किया। सत्यवादी वन विद्यालय के 5 प्रतिष्ठापक गोप बंधु, नीलकंठ, गोदावरीश, आचार्य हरिहर और कृपा सिंधु दास आधुनिक उड़ीसा के पंच सखा भी कहे जाते हैं। श्रोताओं, बचपन से ही गोप बंधु में कवित्व का भी लक्षण स्पष्ट देखा गया था। स्कूल में पढ़ते समय ही ये सुंदर कविताएँ लिखा करते थे। सरल और भाषा में मर्मस्पर्शी कविता लिखने की शैली उनसे ही आरंभ हुई। उड़िया साहित्य में वे एक नए युग के सृष्टा कहे गए। उसी युग का नाम सत्यवादी युग कहा जाता है। सरलता और राष्ट्रीयता इस युग की विशेषताएं हैं। अवकाश की चिंता, बंदिर आत्मकथा और धर्मपद प्रभृति पुस्तकों में से प्रत्येक ग्रंथ एक उज्ज्वल मणि है इन्हीं के नाम की तरह। धर्मपद पुस्तक में कोणार्क मंदिर के निर्माण पर लिखे गए वर्णन को पढ़कर उड़िया लोग विशेष गौरव का अनुभव करते हैं और यद्यपि ये सब छोटी छोटी पुस्तकें, तथापि इनका प्रभाव अनेक काव्यों से भी बढ़कर है। तो ऐसे थे गोप बंधु दास उत्कलमणि। जी हाँ, इस देश ने बहुत सारे रत्नों को जन्म दिया है, उनमें से एक ये भी थे और हम सभी इनको नमन करते हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोताओं, हमने कहा था आज का दिन बहुत खास है, बिल्कुल बहुत खास है, क्योंकि आज एक और दिवस की चर्चा हम करने वाले हैं। बहुत ही खास दिवस है, ये है विश्व डाक दिवस। अभी खास क्यों है श्रोताओं? मुझे लगता है कि हम सभी ने अपने जीवन में चिट्ठियों को बहुत महत्व दिया होगा और बहुत सारी चिट्ठियां आज भी संभाल के रखी होंगी। इस मोबाइल के युग में जहां हम संदेशों को इतनी आसानी से भेज देते हैं कि हमने बस टाइप किया और मोबाइल से तुरंत एक सेकंड के अंदर वो संदेश पहुंच जाता है जहां हमें पहुंचाना होता है।

लेकिन एक समय ऐसा भी था कि अपनी बात कहने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता था और चिट्ठियों का विशेष इंतज़ार रहा करता था कि आज इसकी चिट्ठी आने वाली है या इसकी चिट्ठी आएगी तब हमें पता चलेगा कि उसका हाल कैसा है। आज तो हम तुरंत कैसे हैं आप फ़ोन लगाते ही पूछ लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या हाल है। लेकिन वो जो एक मज़ा था इंतज़ार का, तो ये जो इंतज़ार का मज़ा याद दिलाता है हमारा विश्व डाक दिवस। श्रोताओं, इस दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू की स्थापना 1874 में स्विट्ज़रलैंड के बर्न शहर में हुई थी। इसे 1969 में जापान के टोक्यो में आयोजित यूपीयू कांग्रेस द्वारा विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। श्रोताओं, इस वर्ष की थीम यानी 2026 की जो थीम है वो है विश्व डाक दिवस, एक डाक नेटवर्क अनंत संभावना यानी वर्ल्ड पोस्ट डे, वन पोस्टल नेटवर्क इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। और भारत में 9 से 15 अक्टूबर 2026 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है जिसका शुभारंभ आज से होने जा रहा है। तो ये तो एक मोटी मोटी जानकारी, लेकिन हम आपको और कुछ भी बताना चाहते हैं आज के दिवस के बारे में कि जैसा हमने बताया कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की गठन ये स्विट्ज़रलैंड से हुआ था, 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था और इसी कारण विश्व डाक दिवस मनाने के लिए दिन चुना गया है। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों और व्यवसायों के रोज़मर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका के साथ साथ वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के लिए जागरूकता लाना। यूपीयू पूरी दुनिया में संचार क्रांति के उद्देश्यों पर यह ध्यान में रखते हुए केंद्रित रहता है कि लोग एक दूसरे को पत्र लिखें और विचारों को साझा कर सकें। यूपीयू के सदस्य देशों को इस समारोह का जश्न मनाने के लिए अपनी खुद की राष्ट्रीय गतिविधियों को आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें डाकघरों, मेल केंद्रों, डाक संग्रहालयों में खुले दिनों के संगठन के लिए नए डाक उत्पादों और सेवाओं के परिचय या प्रसार का सब कुछ शामिल रहता है। 1 जुलाई 1876 में भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। इस सदस्यता को लेने वाला भारत एशिया का पहला देश है। 1 अक्टूबर 1854 में भारत सरकार ने डाक के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में 1774 में खोला गया था। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में की गई थी। भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम की भी शुरुआत 1880 में हुई। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका भारत का पहला डाकघर है जो भारतीय सीमा के बाहर है और जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। तो ये कुछ चीज़ें जो हमारे भारत को बताती हैं, भारत के इतिहास के बारे में बताती हैं। और श्रोताओं, 10 अक्टूबर को यानी कल के दिन राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है। नेशनल पोस्ट डे जो मनाया जाता है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो सबको आज का दिन जो है वो हमें याद दिलाता है कि हम खतों को किस तरह लिखा करते थे, किस तरह वो जो लाल कलर का पोस्टल बॉक्स हुआ करता था उसमें डालते थे, वो आज भी है। आज भी सभी डाकखानों के बाहर वो पोस्टल बॉक्स मिल जाता है और उसमें जब चिट्ठी डालते थे तो मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद इसके अंदर से कहीं वो चिट्ठी पहुंच जाती है। तब बहुत छोटे थे तो नहीं पता था कि किस तरह से सारी कार्रवाई होती है कि एक डाकिया आता है, सारी चिट्ठियां निकालता है, फिर उसको छांटता है, उसको गंतव्य तक पहुंचाता है और कितना बड़ा हाथ होता है, कितने सारे लोग होते हैं उस चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने में। लेकिन वो जो चिट्ठी का इंतज़ार हुआ करता था वो आज भी जब हम पुरानी चिट्ठियाँ निकाल के अगर पढ़ें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम भावनाओं का जो एक कहना चाहिए, भावनाओं को हम जो समझा पाते हैं लिखने के द्वारा जितना अच्छा समझा पाते हैं वो हम कहकर शायद ना समझा पाएं। जब हम लिखते हैं तो हमारे जो दिल है वो कहीं ना कहीं उस दिल का तार उस शब्दों से जुड़ जाता है और वो शब्द बुनते बुनते बुनते बुनते इस तरह तक पहुँच जाते हैं कि हम अपनी सभी संवेदनाओं को, सभी भावनाओं को उसमें समेट कर रख देते हैं।

0: ईटा किया बाबू
1: क्या री
2: चिट्ठियों की इन प्यारी प्यारी यादों के साथ अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, कार्यक्रम को यहीं समेटने का समय हो गया है। तो इजाज़त दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दिव्या अग्रवाल को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर हरिचरण वर्मा का गायन। इनके गायन में हम सुनते हैं इनसे राग नट भैरव।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरिचरण वर्मा का गाया राग नट भैरव। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दिव्या अग्रवाल का नमस्कार। हाजिर हैं आपके पसंद के गीतों को लेकर कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।
1: की चिट्ठी
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया से लिखी चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी, वाचन स्वर दीपा सिंह। दतिया जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। जिले में बारिश थमने के बाद मौसम सुहावना हो गया है, ठंडक पड़ने लगी है। जिले में इस मॉनसून सीजन में 690.65 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य औसत से करीब 20% कम है। फिलहाल अधिकतम तापमान 36.2 और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जिले में सेवा संकल्प अभियान के तहत अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। किला चौक पर विकसित भारत संकल्प सभा में भिंड दतिया सांसद संध्या राय ने सेवा ज्योति प्रज्वलित की और जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा और सुना गया। जवाहर नवोदय विद्यालय बीकर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्र ने विद्यार्थियों को मेहनत और अनुशासन के साथ लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निधि पिंटो ने बच्चों को पॉक्सो कानून और सुरक्षित असुरक्षित व्यवहार के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए गए। इनमें 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के साथ साथ 1 जनवरी 2027 तक 18 साल के होने वाले युवाओं से भी आवेदन लिए गए। युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शासकीय कन्या महाविद्यालय में फिट इंडिया खेल सत्र आयोजित किया गया। कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता में रक्षा यादव ने पहला, कनिका राय ने दूसरा और हेमू अहिरवार ने तीसरा स्थान हासिल किया। छात्राओं से नियमित खेल गतिविधियों में भाग लेने और नशा मुक्त समाज बनाने में योगदान देने की अपील की गई। इसी क्रम में आपदा से निपटने की तैयारी के लिए होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र में 100 स्वयंसेवकों को 7 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने आपदा के समय युवाओं की भूमिका और राहत बचाव कार्यों के महत्व के बारे में बताया। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सिंधवारी गांव में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच कराई और निःशुल्क दवाएं प्राप्त की। शिविर में संतुलित आहार, योग और नियमित दिनचर्या के महत्व की जानकारी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत उदयगवां गांव में जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। कलेक्टर ने 130 से ज्यादा आवेदनों पर सुनवाई कर अधिकारियों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर भवन का काम शीघ्र पूरा करने को भी कहा। शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए दतिया में भारी वाहनों की आवाजाही और बाजार क्षेत्रों में माल की लोडिंग अनलोडिंग को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए हैं। 1 अक्टूबर से प्रभावी इस आदेश का यातायात पुलिस पालन करा रही है ताकि जाम और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम की जा सके। इसके अलावा बीड़ी खदान और सिनेमा श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए किए जा सकते हैं। योजना के तहत परिवार की अधिकतम आय सीमा भी बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर दतिया के रेडक्रॉस भवन और आनंद घर डे केयर सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। अधिकारियों

ने बुजुर्गों से बातचीत कर उनकी जरूरतों समस्याओं की जानकारी ली। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। अंत में बात कुछ ऐसे लोगों की जिनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सही अवसर और थोड़े से सहयोग से मेहनत के दम पर अपनी जिंदगी बदली जा सकती है। दतिया के अनिल शिवहरे ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 9 लाख रुपए की सहायता लेकर हार्डवेयर और बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार शुरू किया है। अपनी पूंजी मिलाकर उन्होंने 20 से 25 हजार रुपए का निवेश किया और आज इस व्यवसाय से सालाना 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं। अनिल के मुताबिक इस कारोबार से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है, दूसरे लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। वहीं जिले के सेवड़ा निवासी दिव्यांग दंपति प्रवेश और पूजा कुशवाहा को दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता मिली है। इस राशि से प्रवेश ने सेवड़ा मंडी में सब्जी का कारोबार शुरू किया है, जिससे अब वे नियमित कमाई कर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का था, वाचन था दीपा सिंह का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: भोपाल केंद्र से अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। हमारे श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित यह कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपके दोस्त दिव्या अग्रवाल।

कन्यादान फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। नीरज के लिखे गीत को संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। फरमाइश थी हमारे इन श्रोताओं की। कंवर कॉलोनी बड़वाहा ज़िला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, चंडीगढ़ से खत संदेश भेजा था सतीश अनेजा विमला अनेजा ने। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई। चंडीगढ़ सिटी से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। नाई वाला ज़िला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा। इन सबकी पसंद पर यह गीत आपने सुना। श्रोताओं, आज विश्व डाक दिवस है और बात करते हैं कुछ खतों की। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चिट्ठी और खतों से, संदेशों से जुड़े कुछ गीत। श्रोताओं, आज भी आकाशवाणी में आप सभी के खत ही हमारे लिए आपके प्यार का माध्यम हैं। आपकी फरमाइश हम व्हाट्सएप फरमाइश से भी सुनाते हैं, व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से भी सुनाते हैं, लेकिन जो एक कहते हैं कि जो एक मज़ा है चिट्ठियों का, वो और किसी में नहीं। तो हमारे श्रोताओं की कुछ चिट्ठियां भी आज हमने शामिल की हैं। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से फरमाइश भेजी है बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। अजीत नगर मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप और रौनकदीप कौर। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। और छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली और शमीम बानो। इन सब के अनुरोध पर अब लीजिए सुनिए शक्ति फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत है आनंद बख्शी का और संगीत आरडी बर्मन का।

व्हाट्सअप फरमाइश फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खतों से चिट्ठियों से जुड़े कुछ गीत। लीजिए अब सुनिए सरस्वती चंद्र फिल्म का ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में। इंदिवर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। काफ़ी है मेरे दिल की तसल्ली को यही बात, आप आ न सके आपका पैगाम तो आया है। और बहुत सारे पैगाम हमारे श्रोताओं के भी आए हैं, जिसमें रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से संदेश हमें भेजा है विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, देवराज, सपना, शिवी, सलोनी, अनय, अनाया और पेंटर बाबू महोबिया ने। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन अरहान और परिवार के सभी सदस्य। रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से फरमाइश भेजी है रेशमा अंसारी, शकीला, रेहान, वीरमगाम सिटी से उस्मान और शहनाज बोहरा, राजकोट गुजरात से प्रमिला जाटव और जीता जाटव। और चिट्ठियों में अगर हम बात करें, चिट्ठियों में हमें फरमाइश भेजी है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने। इन सबकी पसंद पर लीजिए सुनिए सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में आपका फिर से स्वागत है इन संदेशों के बाद। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। लीजिए अब सुनिए हमारे इन श्रोताओं की पसंद। ग्राम बोराला खुर्द, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से आकाश कुमार जाधव, वैभव, प्रशांत जाधव, प्रमोद जाधव। भागलपुर बिहार से अंजलि कुमार राजपूत, रुचि कुमारी राजपूत, काजल, श्वेता कुमारी राजपूत। दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से फरमाइश भेजी है भाई प्रेम सिंह बड़वाल, सुखवीर लखवीर बड़वाल, रानो कृष्ण, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, निशान, अनमोल और चटकू मटकू। महाराष्ट्र बीड शहर से खत हमें भेजा है प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप और केशव पटेल, रामनिवास अग्रवाल ने। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और समस्त राजावत परिवार, इन सब ने फरमाइश की है आए दिन बहार के इस फिल्म के।

गीत की। आशा भोसले के स्वर में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तेरा खत आने से दिल को मेरे आराम क्या होगा, तेरा खत आने से दिल को मेरे आराम क्या होगा, खुदा जाने कि इस आगाज़ का अंजाम क्या होगा।

और लीजिए अब सुनिए हमारे उन श्रोताओं की पसंद। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, भावना, लक्ष्य, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोनिका और डुगू सिक्का, गुना मध्य प्रदेश से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत फातिमा कौर, सुरजीत और रेशमा कौर, रीवा मध्य प्रदेश से याकूब आसमा फ़कीर, यूसुफ सईद आसमा, दिलावर तुलसी एम फ़कीर, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश प्रदेश और पूरा संघई परिवार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से सुभाष चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, इन सबकी पसंद पर लीजिए अब सुनिए खेल फिल्म का ये गीत जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ ने। जावेद अख्तर के बोल और संगीत है राजेश रोशन का। खत पर लिखा ये एक और खूबसूरत गीत। श्रोताओं खत कोरे कागज़ पर लिखे कुछ अल्फाज, कहीं प्यार तो कहीं तन्हाइयाँ, कहीं बताया अपना हाल तो कहीं परिवार की परेशानियाँ। इन खतों ने हर जज्बात को बयां किया है, लेकिन कई बार कुछ जज्बात ये भी होते हैं कि हम कैसे लिखें, कैसे अपने जज्बातों को बयां कर दें कि वो कहीं हमारे हाल को समझ ना जाए। खतों की कहानियाँ बहुत अजीब हैं।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खतों से जुड़े कुछ गीत। इसी क्रम में फरमाइश अब हमें भेजी है ज़िला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, देवाश्री, मधु, माधुरी किरण, चक 5MD, पत्रोड़ा, अनूपगढ़, ज़िला श्री गंगानगर, राजस्थान से मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, सुनील, हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्नौर बुजुर्ग, पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा ने। ग्राम ममना, ज़िला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंद

वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, इन सबकी पसंद पर एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल जगजीत सिंह के स्वर में हम आपको सुनवा रहे हैं। गज़ल के गज़लकार हैं रजेंद्रनाथ रहबर और संगीत है जगजीत सिंह का।

और लीजिए अब सुनिए हिना फिल्म का गीत। लता मंगेशकर के स्वर में, नक्श लालपुरी के इस गीत को संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने। सुनने की फरमाइश हमसे की है पप्पू श्रोता क्लब मेन रोड फारविसगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार बिमल, नवरतन हाता बाड़ीहाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी, छवि अनोखी अर्पिता, दीक्षा देव देवांशी और डब्लू जी, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक, मोहम्मद शकीर, अलकमा खत्री मोहम्मद अलतमश खत्री, शादाब, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक मोहम्मद उमर कासमी मोहम्मद शादाब खत्री। संदलपुर आंतरी ग्वालियर से फरमाइश भेजी कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव और समस्त परिवार ने। सुनते हैं इन सब की पसंद पर हिना फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही व्हाट्सएप फरमाइश का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यदि आप भी अपने फरमाइशी गीत इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो हमें फरमाइश लिखकर भेज दीजिए 9425702768 9425702768 इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से। और अब इजाज़त दीजिए हमें, अब से लेकर के सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम हम मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे, तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक के लिए किए गए फैसलों का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा है कि इनसे कर व्यवस्था सरल, पारदर्शी और कारोबार के अनुकूल बनेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज हरदा में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों, युवाओं, किसानों और आम लोगों से संवाद करेंगे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव समाधान ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा भी करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में श्री शुक्ल ने 27 जिला अस्पतालों में नए पद की प्रक्रिया पूरी करने और 5 मेडिकल कॉलेजों में कैंसर की जांच और इलाज की सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की बिक्री पर मार्जिन की अधिकतम सीमा MRP का 30% तय की है। इस फैसले से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आ सकती है। विश्व डाक दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के डाकघरों में

0: जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि आज इंटरनेट और मोबाइल के दौर में भी डाक विभाग पत्रों, पार्सल, बैंकिंग, बीमा और सरकारी सेवाओं के जरिए लोगों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। और भोपाल के न्यू मार्केट में कल दोपहर बालाजी छोले भटूरे की दुकान से शुरू हुई आग आसपास की 5 से 6 दुकानों और 10 से 12 रेहड़ियों तक फैल गई, जिससे भारी नुकसान का अनुमान है। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
2: श्रोताओं नमस्कार। हमारे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और कीजिए हमसे बात, सुनिए अपने मनपसंद गीत। हमें आपके फोन कॉल्स का बेसब्री से है इंतजार। हेलो,
3: मध्य प्रदेश जिला सीनी ग्राम पातरपुरी से राहुल ध्रुवे बात कर रहा था।
2: राहुल ध्रुवे जी, आपने कब कॉल किया था इसके पहले?
3: इससे पहले 15 दिन से अधिक होगा, लगभग 20 दिन।
2: चलिए फिर तो ठीक है, हम आपका कॉल ले सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते के पहले अगर कोई कॉल करता है तो उसका कॉल नहीं लिया जाता है।
3: तो मैंने तो इससे पहले जो बात हुई थी आपके मैम से, तो मैंने बोला कम से कम 15 दिन के बाद ही फोन लगाएं तो बेहतर।
2: बिल्कुल, बहुत सही बात है ये, लेकिन है ना, कम से कम एक हफ्ते का मार्जिन रखना तो फिर भी जरूरी है। चलिए राहुल जी, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया हैं।
2: अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
3: अनोखा अंदाज का।
2: अनोखा अंदाज, अरे वाह क्या बात है, मतलब ये गीत भी आपका सच में अनोखा ही है, क्योंकि ये अनोखा अंदाज का तो हमने आज तक नहीं बजाया, 22 सालों में कभी नहीं बजाया। कौन सा गीत सुनना है आपको?
3: मैं पागल दीवाना।
2: मैं पागल दीवाना या तू दीवाना पागल है इस पे?
3: हाँ, तू दीवाना पागल।
2: वही कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। चलिए तो ये गीत आप बिल्कुल सुनिएगा, ठीक है? कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।
3: बात हो रही है
2: मेरी, आपकी बात कविता रावत से हो रही है?
3: वैसे लग तो रहा था मुझे।
2: चलो कोई बात नहीं, ठीक है राहुल जी।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
1: मैडम मोहम्मद सलमान बोल रहा हूँ, शहडोल से।
0: शहडोल से मोहम्मद सलमान, कितने दिन पहले कॉल किया था?
1: मेरा फोन लगे मैडम, फिर एक हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं मैडम। आप कैसी
0: चलिए,
1: हो?
0: हम बहुत बढ़िया हैं। और अगर आपने एक हफ्ते के पहले कॉल किया होगा तो फिर हम आपका कॉल नहीं ले पाएंगे।
1: नहीं मैडम, एक हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं।
0: ठीक है ठीक है, चलिए
1: जी,
0: और सुनाइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मेरे वो गाना सुनना है मैडम, मैंने प्यार किया फिल्म का, जा कबूतर जा सलमान खान की।
0: ठीक है, तो ये
1: जी
0: गीत तो
1: मैडम,
0: आपको ज़रूर मिलेगा, आप सुन सकेंगे
1: हेलो,
0: अपना गीत। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ हमें आवाज़ आ रही है आपकी।
1: तो
0: हेलो,
1: फिर क्या कहते हैं, फिर आप कैसी हैं मैडम?
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं मैडम, आपके सारे प्रोग्राम सुनते हैं मैडम, हमको
0: अरे
1: बहुत
0: वाह,
1: पसंद आते हैं।
0: सच में कितने
1: जी
0: टाइम से
1: मैडम,
0: सुन रहे हैं आप हमारे प्रोग्राम?
1: हम आपके प्रोग्राम बहुत समय हो गए मैडम, हमको फिर 8-10 साल हो गए मैडम।
0: अरे वाह, क्या करते हैं आप सलमान जी?
1: हमारी दुकान है मैडम हार्डवेयर की।
0: अच्छा, तो बढ़िया है, दुकान पर बैठे बैठे रेडियो चला लेते होंगे।
1: हाँ मैडम, दुकान भी चलती है और आपके प्रोग्राम भी आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मैडम।
0: चलिए, बहुत खुशी हुई हमें, आप हमारे रेडियो से जुड़े हुए हैं, और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा, ठीक है सलमान जी?

0: हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी, अंबेडकर चौक टेगरवाड खोरई से, जिला सागर मध्य प्रदेश से, राम सखी परमानंद।
0: राम सतीश।
1: परमानंद
0: अच्छा जी, कब कॉल किया था आपने?
1: अब देख लो मैडम, 15-20 दिन हो गए। ऐसे तो 8-10 दिन के बाद हमने बैलेंडर आसू के पहले लगभग 20 दिन हो गए घर
0: चलिए कोई
1: वालों को।
0: बात नहीं।
1: हाँ
0: और कैसे हैं आप
1: जी,
0: परमानंद जी? आप कैसे हैं?
1: बढ़िया है मैम, बढ़िया।
0: क्या
1: आप
0: काम
1: सुनाओ। काम
0: करते हैं?
1: करते, बिल्डिंग वर्क काम नहीं कर पाते हैं,
0: अच्छा अच्छा
1: घर में
0: अच्छा
1: रहते हैं, घर का काम थोड़ा बहुत है, करते
0: हाँ हाँ हाँ हाँ
1: रहते हैं।
0: चलो बढ़िया है। रेडियो का प्रोग्राम सुनते रहते हैं आप, है ना?
1: हाँ, रेडियो के प्रोग्राम सुनते रहते हैं, आपके कार्यक्रम
0: चलिए, पसंद आते हैं आपको हमारे कार्यक्रम?
1: बढ़िया, बहुत पसंद आ रहा है। आपकी हेलो, वो राति ग्राम सभा और भी कार्यक्रम सब
0: चलिए
1: सुनते
0: बहुत बहुत
1: रहते हैं।
0: धन्यवाद। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? कौन सा
1: नफरत की दुनिया,
0: है? नफरत की दुनिया।
1: हाँ नफरत की दुनिया छोड़ के। जी
0: अच्छा, हाथी मेरे साथी। गाना सच में बहुत अच्छा है ये।
1: जी परिवार
0: और परिवार में कौन कौन है आपके?
1: में मेरी, अच्छा मिस्टर जी, जिसका नाम राम सखी है,
0: हाँ
1: और अच्छा दो बच्चे हैं, एक का नाम सौरभ है, उसने बीटेक कर लिया सिविल से।
0: अरे
1: अच्छा,
0: वाह,
1: एक का
0: अरे
1: नाम गौरव है, छोटा वाला, उसने एमटेक कर लिया
0: वाह,
1: मैकेनिकल ब्रांच से। दोनों तैयारी करा रेलवे में।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो चलो, आप तो मतलब है ना, टेंशन फ्री हो गए,
1: शादी
0: है ना?
1: शादी तो करना है
0: हाँ, शादी
1: अभी
0: करना भी
1: आप।
0: एक बहुत बड़ा टेंशन है।
1: हाँ काम
0: सही लाइफ पार्टनर मिल जाए।
1: रेलवे में,
0: हाँ,
1: जूनियर इंजीनियर में हो गया है, देखो अगली ठंड में क्या होता है, मेडिकल वगैरह
0: हाँ चलिए, हो जाएगा बिल्कुल।
1: रह
0: चलिए तो
1: गया। फिर शादी करेंगे,
0: फिर
1: शादी के बाद टेंशन फ्री
0: बिल्कुल
1: होंगे।
0: ठीक है परमानंद जी, आप है ना अपना प्रोग्राम में ये गीत सुनिएगा, हम आपको ज़रूर
1: धन्यवाद
0: सुनवाएंगे। ठीक है,
1: धन्यवाद मैम,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो जी,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्ते। प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ
0: प्रेम सिंह सिसोदिया
1: जी,
0: कहाँ से?
1: उज्जैन नागदा तहसील और गांव बछोड़ा से।
0: अच्छा, कैसे हैं, क्या हाल हैं आपके?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए, आप कैसे हो
0: हम भी अच्छे हैं। और उज्जैन का माहौल कैसा चल रहा है इस समय,
1: जी? माहौल तो
0: मौसम?
1: काफी अच्छा है क्योंकि अभी नवरात्र शुरू होने वाले हैं ना।
0: हाँ, तो तैयारियां शुरू हो गई होगी माता के आगमन
1: हाँ
0: की।
1: बिल्कुल, साफ सफाई तो मतलब हर घर में रोज होती ही
0: हाँ
1: है, और उसके अलावा जब मंदिर में भी मतलब स्पेशल पूजा होती है, नवदुर्गा के रूप में जब
0: हाँ
1: मूर्ति स्थापना की जाती है ना।
0: हाँ हाँ
1: हाँ, तो इस तरह से मतलब पांडाल भी लगाए जाते हैं और साथ में माता जी की एक प्रतिमा स्थापित करते हैं अलग से लाकर, और मतलब सभी लोग गरबा भी करते हैं और अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं सभी लोग अपने अपने कला और
0: बिल्कुल।
1: कौशल के।
0: आजकल ये लगभग हर शहर में, बल्कि हर गली मोहल्ले में इस चीज़ का प्रचलन हो गया है कि माता रानी की सब पंडाल लगाकर और 9 दिन तक बड़ी आस्था के साथ गरबा करके, आरती करके, महाआरती करके उनका स्मरण करते हैं ना।
1: जी, और आखिरी दिन मतलब कन्या भोज भी करते हैं और
0: बिल्कुल
1: सभी लोग
0: बिल्कुल
1: भंडारे भी मतलब सभी जगह
0: जी।
1: लगाते हैं, और इस तरह से मतलब

0: मतलब एक आस्था के प्रति मतलब लोगों का झुकाव बढ़ता ही जा रहा है
1: बिल्कुल
0: प्रतिदिन।
1: बिल्कुल, और ये अब निरंतर लोगों के बीच में ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है और बड़ा सुंदर माहौल हो जाता है उन 9 दिनों में। बिल्कुल
0: हाँ
1: आस्था
0: बिल्कुल
1: से
0: बड़ा
1: ओतप्रोत सब लोग, है ना
0: जी हाँ हो जाता है। और
1: जी।
0: खेती किसानी में मतलब खेत भी खाली हो जाते हैं, नई फसल की भी
1: हाँ
0: तैयारी करते हैं ना सभी लोग,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: मतलब दोगुना उत्साह बना रहता है।
1: बिल्कुल। अच्छा गीत तो बताइए, आप कौन से गीत सुनना चाहते हैं?
0: हाँ तो आप अवतार फिल्म का ही सुनवा दीजिएगा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया
1: अरे
0: है
1: वाह क्या बात है,
0: जी।
1: ठीक है चलिए, तो ये गीत बिल्कुल सुनिएगा आप, ठीक है। कॉल
0: जी
1: करने के लिए
0: धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और मैं मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम भी सुनता हूँ
1: बिल्कुल सुनिएगा, चलिए
0: जी।
1: नमस्ते।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते। गायत्री
0: कौन बोल रहे हैं?
1: माल कनवाली जिला महोबा तत्वदेशी सुनराम पांच साल बात कर रहे हैं मैडम जी।
0: आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं सुनाई दी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: गायत्री महाल पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से शिव नारायण पांचाल बोल रहे हैं हम मैडम
0: अच्छा, शिव नारायण पांचाल।
1: जी।
0: उत्तर प्रदेश महोबा से।
1: हाँ, काफी दिनों में बात हो रही है, कम से कम 1.5 या 2 वर्ष हो चुके हैं जब बात हुई थी।
0: ओ भाई, 1.5 या 2 वर्ष, इतना
1: हाँ,
0: लंबा समय क्यों लगा दिया आपने कॉल करने में?
1: अब ऐसा है ना, अब थोड़ी

0: बस व्यवस्था थोड़ी बहुत हो गई, कुछ ऐसी कि नहीं हो पाई बात।
1: अच्छा चलिए, बाकी सब राजी खुशी?
0: हाँ सब और सब बढ़िया।
1: चलिए अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म का नाम है किस्मत।
1: किस्मत,
0: किस्मत।
1: अच्छा एक सेकेंड हम देखते हैं किस्मत का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। किस्मत का,
0: किस्मत का है हम हैं दीवाने। देखी
1: अच्छा किस्मत का हम हैं, हमें दीवाने तो नहीं है, हम हैं मस्त मौला है।
0: नई वाली है।
1: अच्छा, नई वाली का सुनना है या पुरानी वाली का?
0: नई वाली का, नई
1: तो
0: वाली
1: नई
0: का।
1: वाली में जो 2004 में रिलीज हुई थी उसका अभिजीत का गाया हुआ है हम हैं मस्त मौला, और दिल तेरी दीवानगी में, ये हैं गाने। बताइए कौन सा गीत सुनना है आपको। कौन सा?
0: हम हैं मस्त मौला।
1: जी चलिए बिल्कुल ये गीत सुनिएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है शिव नारायण जी, ठीक है, नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते
0: नमस्ते।
1: मैडम।
0: जी नमस्ते,
1: जगदीश चौहान पेंटर, मुखर्जी नगर, इंदौर से बोल रहा हूँ मैं
0: जगदीश चौहान जी।
1: जी। मेरे
0: कैसे?
1: को माता जी की आरती सुनना है। चलो,
0: माता जी की आरती? कौन सी मूवी की? कोई सी भी सुना दे।
1: बुलावा आया है, माता ने बुलाया है,
0: ये
1: नरेन
0: तो
1: चंचल जी का।
0: बिल्कुल, लेकिन ये हमारे एक जो श्रोता हैं प्रेम सिंह जी उज्जैन से, उन्होंने इसकी फरमाइश पहले से ही कर दी है, तो ये गीत तो हमारा बजेगा ही बजेगा। इसके अलावा आप कुछ और सुनना चाहते हो तो वो बताइए।
1: दूसरी फिल्म का गाना, दूसरी
0: हाँ
1: फिल्म का गाना तो फिर जय संतोषी माता को सुना दीजिए मैडम।
0: जय संतोषी माता का
1: आरती
0: आरती, ठीक है। हम एक मिनट चेक कर
1: मैडम।
0: लेते हैं ये वाला गीत हम पर है कि नहीं है, ना?
1: जी मैडम,
0: और
1: धन्यवाद।
0: क्या
1: आप,
0: काम करते हैं आप?
1: मैं पेंटर का काम करता हूँ मैडम,
0: अच्छा,
1: स्प्रे पेंटिंग मशीन कलर करता हूँ।
0: ठीक। चलिए, तो ये आरती हम आपको कल के प्रोग्राम में ज़रूर सुनिएगा, ठीक है जगदीश जी? कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी मैडम, आपको भी धन्यवाद।
0: जी।
1: थैंक
0: नमस्ते।
1: यू। जी।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते
1: नमस्ते
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैम। मैं शिवपुरी जिले से बात कर रहा हूँ जी,
0: कौन?
1: मोतीलाल परिहार
0: मोतीलाल परिहार।
1: जी।
0: कितने दिन पहले कॉल किया था आपने?
1: मोतीलाल परिहार बोल रहा हूँ, रामगढ़ी से
0: वो मैं समझ गई, लेकिन कॉल कितने दिन पहले किया था?
1: दीदी। मेरा फोन लगाया करीबन एक डेढ़ महीना आगे भी मेरा
0: चलिए
1: फोन
0: कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात नहीं है। अच्छा बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये सिर्फ तुमका टाइटल सॉन्ग सुनना है।
0: अच्छा सिर्फ तुम, ये आपकी चॉइस है या कोई और है आपके पीछे?
1: नहीं जी, हमारी पसंद है, हम ऐसे काम में लग जाते हैं तो फोन नहीं लगा दे, आपके प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, मतलब ये नई नई चॉइस है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा लगा।
1: हाय, क्या टमाटर नहीं तोड़े तो बैठे थे कुआं पे, बढ़िया आम के
0: हाँ
1: पेड़ के नीचे, तो मैंने कहा आज फोन

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते। किशोरी
1: जी, नमस्ते। झिरनिया जिला खरगोन से किशोरी गोले बोल रहा था मैडम।
0: गोरे
1: हाँ, गोले गोले जी,
0: गोले।
1: प्रजापत।
0: कहाँ से? उज्जैन से?
1: नहीं, झिरनिया, झिरनिया से।
0: झिरनिया।
1: हाँ, झिरनिया जिला खरगोन
0: अच्छा।
1: जी।
0: और
1: गाना सुनना था मैडम
0: बताइए ना, कौन सी फिल्म का गाना सुनना है?
1: जी, जहरीला इंसान का है वो, मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली।
0: ओहो,
1: ये
0: बड़ा अच्छा गाना है ये तो, किशोर कुमार का गाया हुआ
1: किशोर कुमार की आवाज में
0: है ना।
1: जी, किशोर कुमार का। हाँ, अभी पुण्यतिथि भी आ रही है 13 तारीख को,
0: हाँ
1: और ये हमारे पास में ही है, खंडवा में रहते हैं। खंडवा से हमारा जितना 50 किलोमीटर पड़ता है,
0: अच्छा।
1: वहाँ भी 13 तारीख को कार्यक्रम भी है वहाँ पे हुई, इसी खंडवा
0: अच्छा।
1: में, किशोर कुमार के उसमें
0: अरे वाह,
1: जी।
0: चलिए बढ़िया है। तो ठीक है, ये अपनी पसंद का ये गीत हम आपको अवश्य सुनवाएंगे, ठीक है
1: जी
0: किशोर
1: मैडम
0: जी,
1: जी,
0: गोले जी? जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। अब अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर आयोजित 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों से आए मंत्रियों और महिला अधिकारियों द्वारा शिक्षा, पोषण, बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज हरदा में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान कार्यक्रम में उद्यमियों, युवाओं, किसानों, आम लोगों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज आगरमालवा के नवीन कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। यहां मुख्यमंत्री उपस्थित किसानों से संवाद भी करेंगे। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट 2026 के दूसरे दिन कल मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने देश विदेश से आए ऑपरेटर्स, व्यवसायियों और संचालकों से संवाद किया। यहां 177 ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी स्टॉल लगाए गए हैं। इस आयोजन से प्रदेश के पर्यटन को वैश्विक पहचान मिलेगी। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कल भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 60 में करीब 42 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसमें सीसी सड़क निर्माण और दीप नगर पार्क में शेड बनाया जाना शामिल है। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज रांची में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबसे पहले हमने ली है आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं एयरपोर्ट रोड इंदौर से मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, संजना मालती, स्वाति प्रयाग और ललिता नारायण। आप सभी ने ये हमें ख़त भेजा है एयरपोर्ट रोड इंदौर से। जयराज राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ से जगमाल सिंह डामल, हैप्पी डामल और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांधी चौक रोपण से हरदेव, बलविंदर और मीका। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आइए अब आपको सुनवाते हैं तोहफा फिल्म का नगमा, आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल सुरों में। सुनना चाहा आप सभी ने पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और बबलू मंसूरी, मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप, शुभचंद्र, साहिल और बिट्टा ने, बक्सर से मंजू, पूनम, कविता, संजना और सानवी गुप्ता, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, आसमा, सालिया, शोएब, साइमा, मुस्ताब, आफिया, रऊफ और शहीद। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी नंदा हनुमान बोखड़े, सपना संगीता रोड से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। शेरकोट ज़िला बिजनौर से वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सोम्या और इनके मम्मी पापा। आप सभी ने सुनना चाहा है बलमा फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और आशा भोसले ने। गीत समीर का है, तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर बलमा फिल्म का ये नगमा।

आइए आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और श्रीमती शीतल। गौरी नगर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सभी ने सुनना चाहा है कुदरत फिल्म का नगमा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को आदि बर्मन की तर्ज पर।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

वचन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा।

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

शादी और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का आठवां भाग।
1: तुमने ये खिलौने कहां से पाए?
2: शारदा की घिग्गी बन गई। मारे भय के थरथर कांपने लगी। मुंह से एक शब्द भी ना निकला।
1: बोलती क्यों नहीं? तुझे किसने दिए ये खिलौने?
2: शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसलाकर कहा,
1: रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं। तुझे तुझसे इतना ही पूछते हैं, तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहां से पाए? पता?
2: इस तरह दो चार बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। एक अनर्थ हो गया। इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती, पर होनी को कौन टाल सकता है? श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वो धम धम करते हुए ऊपर गए और देवी के कंधे दोनों हाथों से झिंझोड़कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है कि नहीं? साफ साफ कह दो।
3: तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी उब गया है तो जहर दे दो। जला जला कर क्यों मारना चाहते हो? सफाई वाले से बातें करना तो क्या ऐसा अपराध नहीं है? जब उसने आकर पुकारा तो मैंने आकर द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर से ही दुत्कार देती।
1: जी चाहता है तालू से जबान खींच लूं। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे, अब बाकी क्या रहा है?
3: क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़क रहे हो? एक अबला की जान लेकर कुछ नहीं पाओगे।
1: मैं झूठ कहता हूँ?
3: हाँ झूठ कहते हो तुम।
1: ये खिलौने कहाँ से आए?
2: देवी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। समझ गई इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं। सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने ना जाने किस बुरी साइत में आए हैं। मैंने लिए ही क्यों, उसी वक्त क्यों ना लौटा दिए? बात बनाकर बोली,
3: आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए। अरे बच्चों को कोई कैसे रोके? किसी की मानते ही नहीं। कहती रही मैं कि मत ले मत ले, अरे मगर मानी ही नहीं तो मैं क्या करती?
1: इनके साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं? भला चाहती हो तो अभी दिखाओ, इसी वक्त।
3: जो कुछ आया होगा इसी घर में होगा ना, देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि चार दिन लगे खोजने में।
1: मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीजें आई हैं वो लाकर सामने रख दो। ये तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात नहीं आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो भी मुझे विश्वास ना होगा।
3: तो घर में देख क्यों नहीं लेते?
1: कह दिया मुझे फुर्सत नहीं है। सीधे से सारी चीजें लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा।
3: हाँ मारना हो तो मार डालो। जो चीजें आई ही नहीं तो मैं दिखा कहां से दूं?
2: श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़ी और फिर उसके गले पर हाथ रखकर बोले,
1: दबा दूं गला? नहीं दिखाएगी तू? इन चीजों को नहीं दिखाएगी?
3: जो अरमान हो तो पूरा कर लो।
1: खून पी जाऊंगा, तूने समझा क्या है?
3: अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ।
1: है? अब फिर उस सफाई वाले से बातें करोगी? अगर अब कभी मुन्नू या उसके शोधे को द्वार पर देखा तो गला काट डालूंगा।
2: ये कहकर श्याम बाबू ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेश मात्र भी ना था। उसका अंतःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज इस झोंके से प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना ना रही। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए उनके पीछे पीछे घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ नहीं बोले। अब उसे किसी की चिंता, किसी का कोई भय नहीं रहा। अब वो क्यों ना अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार

पर खड़ी थी। शारदा उसे ही खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी, सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ था। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वो खिलौने लेकर दौड़ी। वो क्या जानती थी कि मृत्यु उसी तरह प्राणों का खिलौना लेकर खेलने के लिए दौड़ी चली आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई थी, दूसरी ओर से एक बग्घी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाए। मोटर ने हॉर्न बजाया, शारदा ने जोर मारा कि सामने निकल जाए, पर गोली को कौन टाल सकता था। मोटर बालिका को रोनती हुई चली गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी नहीं टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया।

0: चारों ओर से लोग दौड़ पड़े।
1: अरे यह तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। मैं सूचना देता हूं, बाबूजी, बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही थी, जरा नीचे तो आइए।
0: देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा खून से लथपथ पड़ी थी। चीख मारकर बेतहाशा दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया। रोना भी नहीं आया।
1: बाबूजी कहां गए हैं? उनको कैसे बुलाया जाए?
0: देवी क्या जवाब देती? वो तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हो,
2: क्या सारी विपत्तियां मुझे पर?
0: अंधेरा होता जाता था, पर बाबूजी का पता नहीं, कुछ मालूम भी नहीं, वो कहां गए हैं। 11 बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई, समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ आया और वो रोती हुई बाहर आई, पर ये बाबूजी ना थे, ये तो पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी, तहकीकात होने लगी रात 11 बजे। घंटे भर तक तहकीकात होती रही। जब सबके बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा,
2: आप उस मोटर का पता लगाएंगे?
3: अब तो शायद ही उसका पता लगे।
2: तो उसको कुछ भी सजा नहीं होगी?
3: मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो नहीं मालूम।
2: सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती? अरे गरीबों के बच्चे इसी तरह कुचले जाते रहेंगे।
0: बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे। उन्हें ये खबर रस्ते में ही मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी, सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर। पर उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया, खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदयों को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ उनमें फिर पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है। प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो
4: तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा?
2: तुम 10-5 दिन की छुट्टी ना ले सकोगे?
4: यही तो मैं भी सोच रहा हूं, 15 दिन की छुट्टी ले लूं।
0: श्याम बाबू दफ्तर से छुट्टी लेने चले गए। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर पर ही थे कि मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज में पूछा,
5: ये क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहां आया करते हो?
6: मालिक, क्या बताऊं मालिक, कल की बात जो भी सुनता है उसी को रंज होता है। अरे मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं हो तो क्या, सरकार का नमक तो खा चुका हूं, भला वो कभी हड्डियों से निकल सकता है? कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता हूं मालिक, जब से कल वाली बात

0: सुनी है, ऐसा दुख हो रहा है, ऐसा दुख हो रहा है मालिक की क्या कहूं। कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी, फूल सी बच्ची, देखकर दुख दूर हो जाता था। अरे मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ी चली आती थी। अरे जब गैरों का ये हाल है तो हुजूर के दिल पर जो कुछ बीत रही होगी हुजूर ही जानते होंगे।
1: ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा।
0: मालकिन तो और भी बेहाल होंगी हुजूर, मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था, माँ तो दिन भर साथ रहती थी। मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊंगा, वो कहाँ भूल सकती हैं, उनको तो सारी जिंदगी कर रोना है।
1: पति को मुन्नू से बातें करते सुनकर देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा। मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेअख्तियार आंसू भर आए।
2: मुन्नू, मैं तो लुट गई।
0: हुजूर, हुजूर अब सबर कीजिए हुजूर, रोने धोने से क्या फायदा। अरे जो बेईमान हैं, दूसरों का गला काटते फिरते हैं, उनसे तो ऊपर वाला कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता उनको। और जो सीधे सच्चे हैं उन्हीं पर आफत आती है। अरे वाह रे तेरा करम।
1: मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे। जब वो चला गया तो
3: आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता।
2: मोहब्बती आदमी है, रंज ना होता तो यहाँ क्यों आता।

0: 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगे। मुन्नू इस बीच में फिर कभी ना आया। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती। प्रायः सारा दिन रोते ही कटता था। मोहल्ले की औरतें आती थीं, लेकिन देवी का मन उनसे नहीं मिलता था। वे झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थीं। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू आया और आंगन में खड़ा होकर बोला,
1: मालकिन मालकिन मालकिन, मैं हूं मुन्नू, जरा नीचे आइए।
2: क्या काम है कहो तो।
1: मालकिन जरा नीचे तो आइए।
2: अच्छा।
0: देवी नीचे आती है।
1: मालकिन, रजा मियां बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातम पुरसी करने आए हैं।
2: जाकर कह दो कि ईश्वर की जो मर्जी थी वही हुआ।
0: रजा दरवाजे पर खड़ा था। ये बातें उसने साफ सुनी और बाहर से ही बोला,
3: बहू जी,
4: खुदा जानता है, जब से बिटिया की खबर सुनी है दिल दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौटा हूं। अगर मेरी मौजूदगी में यह वारदात हुई होती तो मोटर वाले को बिना सजा कराए नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो मोटर किसी राजा की ही क्यों ना होती, सारा शहर छान डालता। इतना बड़ा हादसा हो गया और बाबूजी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, ये भी कोई बात है? ऐसे मोटर चला के क्या कोई किसी को भी मार डालेगा? फूल सी मासूम बच्ची को जालिमों ने मार डाला और मैं बिटिया के लिए खिलौने लेकर आया था। मुझे क्या मालूम था यहां आप पर यह सितम टूट पड़ा है। मुन्नू, ये तावीज ले जाकर बहू जी को दे दे, इसे वो अपने जूड़े में बांध ले। अल्लाह ने चाहा तो इन्हें किसी तरह की कोई दहशत कोई खटका नहीं रहेगा। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं बहू जी को बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे, रातों की नींद उचट जाती होगी, दिल घबराता होगा। ये सारी शिकायतें इस तावीज से दूर हो जाएंगी। मैंने एक बहुत पहुंचे हुए फकीर से यह तावीज हासिल किया है, ले ये दे दे बहू जी को।
0: इसी तरह से रजा और मुन्नू उस वक्त

0: देखना एक बहाने से द्वार से तब तक न टले जब तक बाबू साहब आते दिखाई नहीं दिए। श्याम किशोर ने जब उन दोनों को जाते देख लिया तो ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले,
1: राजा क्या करने आया था?
2: यूं ही मातमपुर से करने आया था, आज ही

0: मिलने मैं थोड़ी जा रही हूँ।
1: तो रजा क्या मेरा साला है या ससुरा?
0: तुम तो जरा जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो।
1: ये जरा सी बात है? एक भले घर की स्त्री एक शोहदे से बातें करे, ये जरा सी बात है? तो बड़ी सी बात किसे कहते हैं? ये जरा सी बात नहीं है कि यदि मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूं या गला घोट दूं तो भी मुझे पाप नहीं लगेगा। देख रहा हूं फिर तुमने वही रंग पकड़ा है। इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अब कि क्या मुझे मारना चाहती हो?
2: देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शोक और उस पर ये अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप। उसके सिर में चक्कर सा आ गया। बैठकर रोने लगी।
0: इस जीवन से तो मौत ही अच्छी।
1: यही होगा, मत घबराओ, मत घबराओ, यही होगा। तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्दी तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा है। कुल में कलंक तो नहीं लगेगा?
0: क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती?
1: मैं कहता हूँ चुप रहो।
0: क्यों चुप रहूं? क्या किसी की जबान बंद कर दोगे?
1: फिर बोले जाती हो, मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा।
0: तो सिर तोड़ दो। अरे सिर क्यों तोड़ दोगे? कोई जबरदस्ती है?
1: अच्छा तो बुला, देखे तेरा कौन हिमायती है।
2: ये कहते हुए बाबू साहब झल्ला कर उठे और देवी को कई थप्पड़ और घूंसे लगा दिए। मगर वो न रोई न चिल्लाई न जबान से एक शब्द निकाला, केवल अर्थ शून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो ये निश्चय करना चाहती थी कि ये आदमी है या कुछ और। जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा,
0: दिल के अरमान अभी न निकले हों तो और निकाल लो, फिर शायद ये अवसर न मिले।
1: देवी सिर काट लूंगा, सिर। तू है किस फेर में?
2: ये कहते हुए नीचे चले गए। झटके के साथ किवाड़ खोले और धमाके के साथ बंद कर दिए और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए पर श्याम किशोर घर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज आईं। कहते हैं क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञात होता है कि श्याम किशोर को उसके साथ कभी प्रेम ही ना था। हां कुछ दिनों वो उसका मुंह अवश्य जोहते थे, लेकिन वो बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटने के लिए ही उससे मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थी। उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। वो सब दिखावा था, स्वांग था। उसे याद ही ना आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया गया हो। देवी को ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही आते सचमुच उसका गला ना दबा दे या छुरी ना भोंक दे। वो समाचार पत्रों में ऐसी कई हरजाइयों की खबरें पड़ चुकी थी। शहर में ही ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी, मारे भय के थरथरा रही थी। यहां रहने से प्राणों की कुशलता ना थी। देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बकुची बांधी और सोचने लगी कि यहां से कैसे निकलूं, और फिर यहां से निकलकर जाऊं तो जाऊं कहां? कहीं इसी वक्त मुन्नू का पता लग जाता तो बड़ा काम निकलता। वो मुझे क्या मैके ना पहुंचा देता? एक बार मैके पहुंच भर जाती फिर तो लाला सिर पटक पटक कर रह जाते, भूल कर भी ना आऊं। देवी ने जाकर नीचे के किवाड़ बंद कर दिए, फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपए निकालकर बकुची में बांध लिए। सबके सब करेंसी नोट थे, विशेष बोझ भी ना हुआ। एकाएक सदर दरवाजे में किसी ने जोर से धक्का मारा। देवी सहम उठी, ऊपर से झांक कर देखा, श्याम बाबू थे। उसकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे। फिर बाबू साहब ने इतने जोर से धक्के मारने शुरू किए मानो किवाड़ ही तोड़ डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था। देवी शेर के मुंह में जाने का साहस न कर सकी। देवी की रही सही हिम्मत जाती रही।
3: श्याम किशोर नशे में चूर थे, होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पीकर आए थे।

0: किवाड़ तो ना खोलूंगी, अरे चाहे तोड़ ही डालो, अब तुम मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं तो मारोगे कहां से? अरे तुम्हें खूब पहचान गई मैं।
1: श्याम किशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद उल जुलूल बकते चले गए और 2-4 पड़ोसियों ने जब फटकारें लगाना शुरू किया।
2: आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं।
3: नींद ही तो है, नहीं खुलती तो क्या कीजिएगा, जाइए किसी यार दोस्त के घर लेटे रहिए, सवेरे आइएगा।
1: श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बकुची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खड़े तो नहीं है। जब विश्वास हो गया कि वो चले गए तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल आई। उसे जरा भी क्षोभ नहीं था, जरा भी दुख नहीं था, बस केवल एक इच्छा थी, यहां से बचकर कहां जाऊं। कोई ऐसा आदमी ना था जिस पर वो भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके। था तो बस यही मुन्नू सफाई वाला। मैके जाने का अब उसका इरादा नहीं था। उसे भय होता था कि मैके में श्याम किशोर से वो अपनी जान नहीं बचा सकेगी। उसे यहां ना पाकर वो अवश्य उसके मैके जाएगा और उसे जबरदस्ती खींच लाएगा। वो सारी यातनाएं, सारे अपमान सहने को तैयार थी, केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। थोड़ी दूर पर चौराहा था, कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और उससे स्टेशन चलने को कहा। फिर देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने एक तांगा किराए पर किया और पर्दे पर बैठ चौक जा पहुंची। अभी दुकानें ना खुली थी, लेकिन पूछने पर रजा मियां का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लड़का झाड़ू दे रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जाकर रजा मियां से कह दे कि शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई है, अभी चलिए। 10 मिनट में रजा और मुन्नू वहां आ पहुंचे।
0: तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वो मैं फिर कहूंगी। मुझे कहीं एक घर दिला दो, घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता न मिले, नहीं तो वो मुझे जीती ना छोड़ेंगे।
1: रजा ने मुन्नू की ओर देखा, मानो बोल रहा हो।
4: देखा अपनी चाल कितनी सही पड़ी। बहू जी आप फिक्र न करें, ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को पता नहीं चलेगा और आपको वहां किसी तरह की कोई तकलीफ भी नहीं होगी। हमें आप अपना ही समझिएगा, आपके पसीने की जगह हम अपना खून बहा देंगे। बुरा मत मानना बहूजी, सच तो यह है कि बाबू साहब आपके लायक तो थे ही नहीं।
5: हाँ ये बात बिल्कुल सही है, और हुजूर मानती ही नहीं तो क्या करूं। अच्छा कभी दिखा दूंगा तब तो मानिएगा।
4: अच्छा अच्छा आप दिखाना बाद में, अभी बहू जी को मेरे घर पहुंचा दे और देख ऊपर ले जाना, तब तक मैं एक मकान देख कर आता हूं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
0: आपके घर में बहुत सी औरतें होंगी?
4: कोई नहीं, ज्यादा नहीं बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है, वो आपके लिए कहारन बुला देगी, बस आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप चलिए मैं मकान देख कर आता हूँ।
0: जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आइएगा, देखना घर आए कि नहीं।
4: बाबू साहब के नाम से तो मुझे चिढ़ हो गई है, अगर मेरे सामने आ गए तो फालतू मेरा उनसे झगड़ा हो जाएगा। जो मर्द आप जैसी हुस्न परी की कदर न कर सके वो क्या आदमी है?
5: बहुत ठीक कहते हो भैया, बिल्कुल ठीक कहते हो। ऐसी शरीफ जादी को ना जाने किस मुंह से डांटते हैं। अरे मुझे तो इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए, कभी भी एक बात ना कही।
1: रजा मकान देखने गया और तांगा रजा के घर की तरफ चला। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच शोहदे तो नहीं है।

0: लेकिन कैसे मालूम हो? यह सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा था। अकेली एक घर में कैसे रहेगी, बैठी बैठी क्या करेगी, ये कुछ उसकी समझ में नहीं आता था।
1: क्यों ना घर लौट चलूं, ईश्वर करे वो अभी घर ना आए हो। मुन्नू, तुम जरा दौड़ कर देखो तो बाबूजी घर आए कि नहीं।
2: अरे अरे हुजूर, आप चलकर आराम से बैठे, मैं देखाता हूँ।
1: मैं अंदर नहीं जाऊंगी।
2: अरे मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ हजूर कि घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर शक करती हैं। अरे हम वो लोग हैं कि आपका हुक्म पाए तो आग में कूद पड़े।
0: देवी इक्के से उतरकर अंदर चली गई। चिड़िया एक बार पकड़े जाने पर फड़फड़ाई भी, किंतु पैरों में लासा लगे होने से उड़ ना सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत अभी आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की 8वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:58 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में महिला और बाल विकास पर आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इस सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों से आए मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण पर चर्चा की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हरदा जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों, युवाओं, किसानों और आम लोगों से संवाद करेंगे। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव समाधान ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज आगरमालवा के नवीन कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में उपस्थित किसानों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। केंद्र सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की बिक्री पर मार्जिन की अधिकतम सीमा MRP का 30% तय कर दिया है। इस फैसले से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आ सकती है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण दवाओं की सूची तय होने के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। विश्व डाक दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के डाकघरों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि आज इंटरनेट और मोबाइल के दौर में भी डाक विभाग पत्रों, पार्सल, बैंकिंग, बीमा और सरकारी सेवाओं के जरिए लोगों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। ग्वालियर में जिला प्रशासन ने 19 पटवारियों को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व, EKYC और CM हेल्पलाइन की शिकायतें लंबित रहने और न्यायालयीन मामलों में देरी के चलते की गई है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज रांची में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:01 हैं। लीजिए प्रस्तुत हैं महिला कार्यक्रम। आज का ये महिला कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

हर मंजर, हर दौर, हर हालात खूबसूरत होंगे, खुद पर भरोसा भी कुछ इस तरह होना चाहिए। तो चलिए, आपकी मौजूदगी के एहसास के भरोसे पर ही आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा सफर। तो स्वीकार कीजिए महिला सभा से हिमलता खरे का प्यार भरा नमस्कार। जब चिट्ठी अपनों का संदेशा लाती थी, संग में अपने ढेर सारी खुशियां भी ले आती थी। बहनों, हमारी भावनाओं, हमारे एहसासों और जज्बातों को खतों के माध्यम से अपनों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है डाक विभाग। एक जमाना था जब हर किसी को बेसब्री से डाक का इंतजार होता था। जब डाकघर से होकर कोई पत्र आता था, बातें कम होती थीं उसमें, मगर एहसास ज्यादा था। यही वजह है कि आम जन को भारतीय डाक विभाग के योगदान से अवगत कराने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष संगठन विश्व डाक संघ की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जो 1874 में स्थापित किया गया था। बहनों, विश्व डाक दिवस का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और डाक सेवाओं के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को जोड़ने की भूमिका को पहचानना है। बहनों, यह गौरव की बात है कि हमारे देश की डाक व्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था है। यह दिवस डाक सेवाओं के इतिहास, उनकी प्रगति और समाज में उनके योगदान को मनाने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन विभिन्न देशों में अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इनमें डाक टिकटों की प्रदर्शनी, डाक सेवाओं से जुड़े लोगों को सम्मानित करना और डाक सेवाओं के बारे में जागरूकता अभियान शामिल हैं। बहनों, डाक सेवा ने दशकों से देश के कोने कोने को जोड़ा है। पत्र, पार्सल और संदेशों के माध्यम से यह जन जन के भावनात्मक एवं सामाजिक रिश्तों की डोर बनी रही है। डिजिटल युग में भी डाक विभाग अपनी विश्वसनीयता, पारदर्शिता और सेवा भावना के साथ जनता की सेवा में निरंतर अग्रसर है। आज का दिन हमें सेवा, समयबद्धता और विश्वास की उस परंपरा को नमन करने का अवसर देता है जिसने विश्व को जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाई है। विश्व डाक दिवस पर डाक व्यवस्था से जुड़े सभी डाक कर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी चिट्ठियां, कभी राखी, कभी मनी ऑर्डर आते थे। वो दिन और थे जब डाकिया भी खुशियां लाते थे। कभी फिक्र की वो याद क्यों करेंगे हमें, कभी ख्याल कि खत का जवाब जरूर आएगा।

0: अभी बहनें सुन रही थी आशा भोसले के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और फिल्म थी आए दिन बहार के। शूरवीरों की धड़कन और चंदेलों की शान है, कालिंजर का किला बुंदेलखंड की आन बान और शान है। हाँ बहनों, बुंदेलखंड के ऐतिहासिक स्थलों में से एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है कालिंजर का किला, जिसे दूर दूर से देखने लोग यहाँ आते हैं। कालिंजर का किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला पर स्थित एक अत्यंत प्राचीन अभेद और ऐतिहासिक दुर्ग है। वक्त के सैलाब में कितने ही तूफान आए गए, बड़े बड़े सूरमा भी यहाँ आकर हार गए। बुलंदियों पर आज भी सीना ताने खड़ा है इतिहास के पन्नों से वो कालिंजर का किला है। कालिंजर का शाब्दिक अर्थ है जो काल को भी जीत ले। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने यहीं विष पान कर काल पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसे अमरता का प्रतीक भी माना जाता है। इस किले का सुनियोजित इतिहास मुख्य रूप से 9वीं से 13वीं शताब्दी तक बुंदेलखंड के चंदेल वंश के शासनकाल से जुड़ा है। चंदेल राजाओं ने इसे अपनी शक्ति का मुख्य केंद्र बनाया था। गुप्त चंदेल प्रतिहार और नागर स्थापत्य शैली के प्रमाण आज भी इस किले की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। अपनी रणनीति और मजबूत बनावट के कारण इस किले को जीतना लगभग असंभव माना जाता था। 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया, मगर जीतने में असफल रहा। इस किले के मुख्य आकर्षण में किले के भीतर भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। किले की सुरक्षा के लिए गणेश द्वार और बड़ा दरवाजा सहित 7 विशाल प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इसके अलावा रानी महल, राजा अमान सिंह का महल और कोट तीर्थ पर गंगा सागर जैसे प्राचीन जलकुंड इस दुर्ग की भव्यता और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली को बयां करते हैं। बहनों, यहाँ का प्राकृतिक वैभव इस स्थान को तप करने, ध्यान लगाने जैसे आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी एक आदर्श स्थान बनाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला मेला यहाँ का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। तो बहनों, जरूर सैर कीजिए कालिंजर के इस किले की और गर्व कीजिए बुंदेलखंड की इस अमूल्य धरोहर पर। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। अगर फलक पर हों आंसू, अगर फलक पर हों आंसू तो ये नहीं काफी, उन्हें शब्दों में पिरोने का हुनर भी आना चाहिए और अपने इसी हुनर से अपने मन के भावों को, अपने एहसासों को काव्य पाठ के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हैं कवित्री बहन। तो लीजिए सुनिए ये काव्य पाठ। कवित्री बहन है प्रेमलता नीलम।
1: दुर्गे दुर्गति दूर कर जन मन

0: गए।
1: अभी बहनें सुन रही थी काव्य पाठ। कवयित्री बहन थी प्रेमलता नीलम। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं।

अभी बहनें सुन रही थी साथी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत लिखा था मजरूह ने और संगीत दिया था नौशाद ने। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। हाँ बहनों, अपने आप में गौरवशाली इतिहास संजोए हुए बुंदेलखंड हमारा गौरव है और उसी गौरवशाली इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नाम है महोबा जिले का, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और महोबा चंदेल राजाओं की राजधानी रहा है। यहाँ के चंदेलकालीन तालाब और मंदिर अनूठी स्थापत्य कला और जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। महोबा के राजाओं ने जल संरक्षण की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए कई विशाल कृत्रिम झीलों और तालाबों का निर्माण कराया। इनमें से प्रमुख मदन सागर झील का निर्माण मदन वर्मन ने 1129 से 1165 ईस्वी के बीच कराया था। इस तालाब के बीचों बीच ऐतिहासिक खकरा मठ मंदिर स्थित है। इसके अलावा कीरत सागर का निर्माण कीर्ति वर्मन ने 11वीं शताब्दी में कराया था। यह ऐतिहासिक स्थल आल्हा उदल की गाथाओं और स्मारक से भी जुड़ा है। रहिल सागर का निर्माण रहिल देव वर्मन ने कराया था, जिसके तट पर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। विजय सागर यह भी चंदेल काल का एक प्रमुख जल स्रोत और सुंदर झील है, जो पक्षी अभयारण्य के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा चंदेलकालीन मंदिरों में खकरा मठ मंदिर, यह मदन सागर झील के बीच के छोटे से द्वीप पर ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। यह 1000 वर्ष पुराना शिव मंदिर है। इसकी वास्तुकला खजुराहो शैली से मिलती जुलती है। रहिलिया सूर मंदिर, यह रहिल सागर तट पर ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। यह 19वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। इसे चंदेल राजा रहिल देव वर्मन ने बनवाया था। इसकी वास्तुकला और नक्काशी अत्यंत मनमोहक है। बहनों, चंदेलकालीन ये तालाब और मंदिर बुंदेलखंड की समृद्ध वास्तुकला, प्राचीन इंजीनियरिंग और ऐतिहासिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। तो बहनों, जरूर पधारिए हमारे बुंदेलखंड की पावन धरा पर और जानिए महोबा के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। रगों में जिनके बुंदेली खून बहता है, वो गर्व से खुद को महोबा का कहता है। यहाँ के किलों और तालाबों में छुपा वो दौर है, जो इतिहास के पन्नों में आज भी अमर रहता है। तिथियां लौट आती हैं, तारीखें भी लौट आती हैं, तिथियां भी लौट आती हैं, तारीखें भी लौट आती हैं, जो चले गए दुनिया छोड़कर, काश वो भी लौट कर आ पाते फिर एक बार। हाँ बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति की समृद्ध और गौरवशाली परंपरा है श्राद्ध पक्ष, जिसमें हम अपने पितरों को याद करते हैं। इसीलिए जो आज हमारे साथ हैं, उनके साथ मधुर संबंध बनाए

रखिए, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, क्योंकि मौजूदगी की कदर किसी को नहीं, मौजूदगी की कदर किसी को नहीं। बाद में तस्वीर देखकर रोते हैं लोग, और कल हमारे पितर हमसे विदा हो जाएंगे और छोड़ जाएंगे आशीर्वादों की दौलत हमारे लिए। इसीलिए हमेशा याद रखिए, चीज टूटे तो उसे सजाना सीखो, चीज टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, इसीलिए उन्हें हर हाल में निभाना सीखो। और फिलहाल अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अगली मुलाकात तक के लिए अब अनुमति दीजिए हेमलता खरे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। एक बजकर 27 मिनट हुए हैं, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं चंद्रभूषण पाठक और साथी, इनसे आप सुनेंगे देवी गीत और इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे मीता।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति। कलाकार थे चंद्रभूषण पाठक और उनके साथी, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं मिताली मुखर्जी के गाए गीत और गजल। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गाना जिसको हमने लिया है फिल्म संतोष से। ये लता मंगेशकर की ही आवाज़ है, दूसरी आवाज़ इसमें नहीं है, संतोष आनंद का लिखा हुआ है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, सुनिए ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करना है। सम्मेलन में पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण जैसे चार प्रमुख विषयों पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, सफल कार्यप्रणालियों को साझा करने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर भी विचार विमर्श हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के तात्याटोपे स्टेडियम में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सेवा के रंग राष्ट्र के संग विशाल रंगोली कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव से शुरू हुए सेवा संकल्प महोत्सव और उनके 25 वर्ष के राजनीतिक जीवन का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रंगोली के माध्यम से प्रधानमंत्री के प्रति आभार और भावनाओं की अभिव्यक्ति की जा रही है। उन्होंने एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव से लगा करके सेवा संकल्प महोत्सव का पूरा महीना, उनके सफलतम राजनीतिक जीवन के 25 वर्ष और इस अवसर पर रंगोली के माध्यम से और ये युवा शक्ति, हम सब परमात्मा से कामना करें जैसे एशियाड में गोल्ड मेडल जीत के लाए।

0: मध्य प्रदेश के 11 पदक जीत के लाए, पूरा देश बदल गया है, आने वाले समय में और आगे बढ़े, आप सबका वंदन अभिनंदन।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हरदा जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी संवाद, यशस्वी संवाद, अग्रणी कृषि संवाद और आमजनों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही वे जिले की समीक्षा बैठक और समाधान ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जनसेवा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रही है। श्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करता आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़ें, ताकि फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में EDAR, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। इनके जुड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और इंश्योरेंस के रिकॉर्ड और पहले के क्लेम का इतिहास आसानी से शेयर किया जा सकेगा। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा और करीब 27,500 दर्शकों के स्टेडियम में पहुंचने की उम्मीद है। स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश के लिए रेलिंग लगाने और कुर्सियों की सफाई सहित तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सुरक्षा के लिए स्टेडियम में करीब 160 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और फेस रिकॉग्निशन तकनीक से भी निगरानी की जाएगी। वहीं श्रृंखला का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच आज रांची में खेला जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में विद्युत वितरण कंपनी के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान CTI नयागांव में PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। नर्मदापुरम कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने खरीफ फसल की कटाई के दौरान किसानों से पराली न जलाने और वैकल्पिक उपयोग अपनाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों को किसानों तक तकनीकी जानकारी पहुंचाने और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। नीमच और शिवपुरी जिले में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के उद्देश्य से मतदान केंद्रों पर 3 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है और झाबुआ के ग्राम गढ़वाड़ा देवझिरी में सेवा संकल्प अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत 225 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,12,500 पौधे रोपित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है।

0: और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्टोरेंट में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
4: 550 million users. भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के

0: प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
1: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: केंद्रीय

0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया अनार कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म इनकलाब का एक गाना। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और ये फिल्म 1984 में रिलीज हुई थी। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है घंटा घर चौक खंडवा से लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से लिखने वाले हैं W अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सरीमपुर बक्सर से राज SD अंसारी और अस्मा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से स्टार रेडियो श्रोता संघ से लिखने वाले हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। और थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी, इन सभी की फरमाइश में हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म मेरा नाम जोकर से, आवाज़ें मुकेश और साथियों की हैं, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना है, शंकर जी किशन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आए है, लिखने वाले हैं दुर्गई सेल से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, छत्तीसगढ़।

भाटापारा दत्तरंग से लिखने वाले हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है धामड़ी मनोरा महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। ये है मसाजी डेरे, लक्ष्मी डेरे, चंद्र भागाबाई डेरे और समस्त डेरे परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है हसन हसीना बी मंसूरी, आमना बी मंसूरी और बबलू मंसूरी के पालदा नाका इंदौर से। और ये ख़त है लिखने वाले हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गायकवाड़ राही, सरिता गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़, सिद्धांत गायकवाड़, प्रणीता गायकवाड़, अर्जुन गायकवाड़, टुक टुक श्वेता, सुमित गायकवाड़ और बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गायकवाड़ और कुमारी ध्वनि गायकवाड़ ने पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत।

जंगली, ये फिल्म का नाम है। इस फिल्म में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गाना। शंकर जय किशन का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। सिंहपुर बड़ा से लिखने वाले हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। इसी गाने के लिए पसंद किया है।

महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, स्वीटी बेबी प्रियांशी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने के लिए ये खत है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार अफरीदी, वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी, हिना कौसर और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। गोवर्धन जिला वाशिम से लिखने वाले हैं रविंद्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत, एकनाथ काले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत, फिल्म का नाम चकली।

दस से इसी गाने को पसंद किया है छवड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने। और ये ख़त है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीएस मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल भट्टा बजाज और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से, लिखने वाले हैं नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश कार्चिक, कार्तिक खर्चे, देविका कुमारी चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, खुशी वाणी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए फरमाइश भेजी है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गायकवाड़, राही सरिता गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़ और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और ये ख़त है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों का। सुनते हैं ये गीत मन्ना डे की आवाज़, फिल्म का नाम सफ़र।

अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं ना छोटे संसार का, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इसको पसंद करने के लिए हमारे पास में ये सादुल शहर राजस्थान से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नोपुर, ऋषिका और रॉबिन की। और इसी खत ये खत आया है तिवर्ता हबरी छत्तीसगढ़ से है, शायद ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लिखने वाले हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, तिवर्ता छत्तीसगढ़ से इन्होंने ये खत लिखा है। महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र सिंह मरकाम, गजेंद्र सिंह मरकाम, जयंती मरकाम, ममता, मनीषा, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहद्री, मंजूबाई, मानशी, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

0: आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हम से बढ़कर कौन, फिल्म का गीत आवाज़ आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी और साथियों की है, रविंद्र रवेल का लिखा हुआ गाना है और संगीत है राम लक्ष्मण का। इस गाने को पसंद किया है कोरबाई जिला विदिशा से महेश कुमार, संतोष कुमार, राजीव कुमार और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने।
1: Please leave me alone. You know, I hate you.
2: Oh no, dear Tina, I love you.

0: इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बजने को हैं। दो बजकर 58 मिनट हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के तात्याटोपे स्टेडियम में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सेवा के रंग राष्ट्र के संग विशाल रंगोली कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव से शुरू हुए सेवा संकल्प महोत्सव और उनके 25 वर्ष के राजनीतिक जीवन का उल्लेख किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हरदा जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी संवाद, यशस्वी संवाद, अग्रणी कृषि संवाद और आमजनों से संवाद करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जनसेवा है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्तों के अंदर आपस में जोड़ें ताकि फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। और इंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3रा T20 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा। वहीं दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। डीटीएच के ऑडियो चैनल मीडियम वेव और वेब से ओटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। और अब हम आपको बता दें आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। आज की युवाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। 5:33 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 5:40 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:00 और 6:30 पर फिल्म संगीत। किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा 7:21 पर होगा। विशेष कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 8:00 जनसेवा से देश सेवा, ये विषय होगा। 8:35 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेल जगत, इसमें आप सुनेंगे वार्ता एशियन गेम्स में भारत की उपलब्धियां और खिलाड़ियों का प्रदर्शन। वार्ताकार है नवेद इशरत। 9:45 यानी 9:45 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत और आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा 10:00 और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत।

संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे विदुषी शुभा मुद्गल का गाया ख्याल गायन, राग होगा बिहार। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का कार्यक्रम। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:02 होने को है। अब हमारा मीडिया वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:02 पर आप हमारा मीडियम वेव का प्रसारण पुनः सुन सकते हैं। इस बीच डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर से यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं मीडियम वेव पर, अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से कल नई दिल्ली में किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष पीएम स्मृति चिन्ह संग्रह में आंध्र प्रदेश से 18 से अधिक स्मृति चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं। ये उपहार मूल रूप से प्रधानमंत्री को भेंट किए गए थे और अब इनकी सार्वजनिक नीलामी की जा रही है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए आज नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। मध्य प्रदेश शासन ने राज्य पुलिस सेवा SPS संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके दीर्घ सेवाकाल एवं सेवाओं के अनुरूप उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत 18 वरिष्ठ अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान उद्योगपति और पद्म विभूषण से सम्मानित श्री रतन टाटा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने संदेश में कहा कि देश के औद्योगिक विकास में श्री रतन टाटा का योगदान अमूल्य रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवाजन सुने कार्यक्रम युव वाणी, योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का है।

सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। ऐसा मैं नहीं बल्कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे। आइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इस सुविचार के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम युवाणी में। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवांगी तिवारी। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं। आप सभी के मनोरंजन के लिए होंगे बहुत सारे गीत संगीत। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली महत्वपूर्ण चर्चा से। साथियों अगर आज हम पेड़ काटते हैं पानी बर्बाद करते हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? जवाब है कि आज के युवाओं और आने वाली पीढ़ियों पर। पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधों और जंगलों का नाम नहीं है। स्वच्छ हवा साफ पानी मिट्टी नदियाँ वन्य जीव और हमारे आसपास का प्राकृतिक संतुलन इन सभी से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। आज बढ़ता प्रदूषण प्लास्टिक कचरा जल संकट और तेजी से बदलता मौसम हमारे सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। ऐसे समय में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आखिर युवा ही वो वर्ग है जो नई सोच को अपनाने लोगों को जागरूक करने और बड़े स्तर पर बदलाव लाने की क्षमता रखता है। लेकिन सवाल है क्या पर्यावरण बचाने के लिए सिर्फ बड़े बड़े अभियान चलाना जरूरी है? नहीं, बदलाव छोटी आदतों से भी शुरू हो सकता है। युवा सिंगल यूज प्लास्टिक का कम इस्तेमाल पानी और बिजली की बचत सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का उपयोग पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना तथा कचरे को सही तरीके से अलग करना जैसी छोटी छोटी कोशिशों से शुरुआत कर सकते हैं। आज युवाओं के पास एक और बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। एक युवा अपनी पोस्ट वीडियो या अभियान के जरिए हजारों लोगों तक पर्यावरण से जुड़ा संदेश पहुंचा सकता है। लेकिन केवल पोस्ट करने से नहीं बल्कि खुद उस बदलाव को अपनाने से वास्तविक प्रभाव पैदा होता है। कल्पना कीजिए अगर एक कॉलेज के 100 युवा तय कर लें कि वे हर साल कुछ पेड़ों की देखभाल करेंगे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे तो छोटी सी कोशिश मिलकर बड़ा बदलाव बन सकती है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं ये हम सभी की जिम्मेदारी है और युवाओं की इसमें विशेष भूमिका है। तो अभी हम बात कर रहे थे पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका की। साथियों चर्चा के बाद सुनवा देते हैं आप सभी को एक प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे इकबाल फिल्म से प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी के और सलीम मर्चेंट की, गीतकार थे इरफान सिद्दीकी और संगीत से सजाया था सलीम सुलेमान ने। आइए अब ले चलते हैं कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण चर्चा की ओर। दोस्तों, परीक्षा का नाम सुनते ही कई विद्यार्थियों के मन में एक ही सवाल आता है, इतना सारा पढ़ना है, समय कम है, तैयारी पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, और यहीं से शुरू होता है परीक्षा का तनाव। लेकिन सवाल ये है कि क्या तनाव हमेशा बुरा होता है, या फिर थोड़ी सी चिंता हमें बेहतर तैयारी के लिए प्रेरित भी कर सकती है। दरअसल, परीक्षा के समय तनाव होना बिल्कुल सामान्य है। समस्या तब शुरू होती है जब तनाव इतना बढ़ जाए कि पढ़ाई करने के बजाय हमारा ध्यान बार बार परिणाम, नंबर और असफलता के डर पर जाने लगे। कई विद्यार्थी घंटों किताब सामने रखकर बैठे रहते हैं, लेकिन पढ़ाई कम और मोबाइल या चिंता ज्यादा करते हैं। इसीलिए परीक्षा की तैयारी में सबसे जरूरी है सही रणनीति, ना कि केवल ज्यादा घंटे पढ़ना। सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस को देखकर घबराने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। आज क्या पढ़ना है, कल क्या दोहराना है और किस विषय को ज्यादा समय देना है, इसकी छोटी सी योजना बनाइए। दूसरी जरूरी बात, दूसरों से तुलना नहीं करिए। किसी दोस्त ने आपसे ज्यादा पढ़ लिया, किसी के ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी क्षमता कम है। आपकी असली प्रतियोगिता आपके कल से है। तीसरी बात, नींद और आराम को पढ़ाई का दुश्मन ना समझें। लगातार जागकर पढ़ने से याददाश्त और एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। थोड़े थोड़े अंतराल पर ब्रेक लेना, पर्याप्त नींद लेना और कुछ समय शारीरिक गतिविधि करना भी तैयारी का हिस्सा है। और जब परीक्षा से पहले घबराहट बहुत बढ़ जाए तो कुछ मिनट किताब बंद करके गहरी सांस लें, खुद को शांत करें और फिर दोबारा शुरुआत करें। खुद से कहें कि मुझे पूरी किताब एक साथ नहीं पढ़नी, मुझे सिर्फ अगला छोटा लक्ष्य पूरा करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, परीक्षा आपकी मेहनत को परखती है, आपकी पूरी जिंदगी को नहीं। अच्छे नंबर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन एक परीक्षा का परिणाम आपकी पूरी पहचान या भविष्य तय नहीं करता। तो अगली बार जब परीक्षा का तनाव सताए, खुद से एक सवाल पूछिए कि मैं डर के बारे में सोचकर समय गवाऊं या उसी समय का इस्तेमाल अपनी तैयारी बेहतर करने में करूं। क्योंकि परीक्षा में सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि शांत दिमाग और सही रणनीति से भी जीत हासिल होती है। तो साथियों, अभी हम बात कर रहे थे परीक्षा की तैयारी में तनाव को कैसे संभालें विषय पर। हमने तनाव की बात की, परीक्षा की तैयारी की बात की, लेकिन अब जरा किताबों और परीक्षाओं की दुनिया से बाहर निकलते हैं और चलते हैं उस दौर में जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लेकिन किसी अपने का हाल जानने के लिए एक चिट्ठी काफी हुआ करती थी। सोचिए, डाकिया दरवाजे पर आया और हाथ में आपका नाम लिखा एक लिफाफा है। उस लिफाफे को खोलने से पहले दिल में कितने सवाल होंगे, किसकी चिट्ठी है, क्या लिखा होगा, कोई खुशखबरी है या कोई याद, और शायद यही इंतजार चिट्ठियों की सबसे खूबसूरत कहानी था। तो आइए आज बात करते हैं उन चिट्ठियों की, उन डाकियों की और उन यादों की जो कागज के एक छोटे से टुकड़े में पूरा रिश्ता समेट लिया करती थी। मौका है विश्व डाक दिवस का और आज की हमारी खास चर्चा है चिट्ठियों से डिजिटल संदेशों तक कितना बदल गया संवाद का अंदाज। हम आगे बात करें उसके पहले सुनते हैं हम एक प्यारा सा गीत।

साथियों, आज हम एक मैसेज लिखते हैं, भेजते हैं और कुछ सेकंड में सामने वाले तक पहुंच जाता है। लेकिन एक समय था जब चिट्ठी लिखने के बाद शुरू होता था इंतजार, कब पहुंचेगी, कब जवाब आएगा और जवाब आएगा भी या नहीं। एक एक शब्द लिखने में समय लगता था और हर शब्द के पीछे एक भावना होती थी। कहते हैं कागज की खुशबू में रिश्ता मिला करते थे, लिफाफों में कितने किस्से छुपा करते थे। आज संदेश तो हजारों आते हैं, मगर वो अपनापन कहाँ जो एक खत में मिला करते थे। एक समय था जब गांव की गलियों में डाकिये का इंतजार कई परिवारों को रहता था। किसी के बेटे की चिट्ठी, किसी की बेटी का हाल, किसी जवान का घर वालों के नाम संदेश या किसी अपने की कुशल क्षेम। डाकिया सिर्फ पत्र नहीं पहुंचाता था, वो लोगों के बीच दूरी कम करने का काम करता था। और कई बार तो घर के लोग दूर से डाकिये को देखते ही समझ जाते थे आज शायद कोई खबर आई है। आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

साथियों, अब एक सवाल आपसे। अगर आज आपके पास अचानक 10 या 20 साल पुरानी कोई चिट्ठी आ जाए जिसे आपके किसी बेहद खास इंसान ने अपने हाथ से लिखा हो, तो क्या आप उसे सिर्फ एक पुराना कागज समझेंगे या फिर उसे संभाल कर रखेंगे? शायद जवाब होगा कि संभाल कर रखेंगे, क्योंकि चिट्ठी में सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें लिखने वाले की लिखावट होती है, उसकी याद होती है और उस समय की पूरी कहानी छुपी होती है। आज हमारे पास व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, ईमेल है और सोशल मीडिया है। दुनिया सचमुच हमारी हथेली में आ गई। लेकिन कभी कभी सोचिए, मोबाइल पर आए हजारों संदेशों में से कितने संदेश हम सालों बाद भी संभाल कर रखते हैं, और एक पुरानी चिट्ठी कई साल बाद भी मिल जाए तो हम उसे पढ़ने बैठ जाते हैं। यही फर्क है सुविधा और यादों का। तकनीक ने संवाद को तेज कर दिया, लेकिन चिट्ठियों ने संवाद को शायद थोड़ा ज्यादा महसूस करना सिखाया था। कहते हैं, खत पुराने हो सकते हैं, जज्बात पुराने नहीं होते। दूरियां चाहे कितनी हो, रिश्ते अनजाने नहीं होते। वक्त बदल गया, तरीका बदल गया, मगर अपनों की यादों के सिलसिले कभी पुराने नहीं होते। बदलते समय के साथ डाक व्यवस्था ने भी खुद को बदला है। आज डाक सिर्फ चिट्ठियों तक सीमित नहीं है, पार्सल, डिलीवरी, अलग अलग सेवाओं के जरिए डाक व्यवस्था आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है। यानी चिट्ठियां कम हुई हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचने का सफर जारी है। कल संदेश कागज पर जाता था, आज डिजिटल माध्यम से जाता है, लेकिन मकसद आज भी वही है, एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ना। और अब जरा उस दौर को याद कीजिए, जब कोई चिट्ठी आती थी तो उसे खोलने की भी एक अलग खुशी होती थी। पहले नाम देखा जाता था, फिर लिफाफा खोला जाता था और फिर हर शब्द पढ़ा जाता था, और कई बार तो वो चिट्ठी बार बार पढ़ी जाती थी।

मेरे मित्रों, अगर आपको आज अपने किसी ऐसे व्यक्ति को चिट्ठी लिखने का मौका मिले जिससे आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कभी कह नहीं पाए, तो आप क्या लिखेंगे? शायद सिर्फ इतना कि आप कैसे हैं, या फिर आपकी बहुत याद आती है। कभी कभी रिश्तों में बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस कुछ सच्चे शब्द ही काफी होते हैं। आज की युवा पीढ़ी के पास संवाद के इतने साधन हैं कि किसी से जुड़ना मुश्किल नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वास्तव में जुड़े हुए हैं? हमारे फोन में सैकड़ों नंबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे हम बिना किसी वजह के सिर्फ ये कह सकें कि आज तुम्हारी याद आई? शायद विश्व डाक दिवस हमें यही याद दिलाता है कि संवाद सिर्फ संदेश भेजना नहीं, संवाद है अपनी भावनाओं को किसी तक पहुंचाना। वो खत भी क्या खूब हुआ करते थे जिनमें रिश्ते महफूज हुआ करते थे, आज उंगलियों से संदेश चले जाते हैं, कभी शब्द दिल से निकला करते थे। तो आज विश्व डाक दिवस पर आइए उस दौर को याद करते हैं जब एक चिट्ठी के आने से चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, जब डाकिया सिर्फ डाक नहीं लाता था, किसी की खुशी, किसी की चिंता, किसी का हाल और किसी की याद लेकर आता था। समय बदला, तकनीक बदली, संदेश भेजने का तरीका बदला, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, अपनों से जुड़े रहने की चाह। क्योंकि चाहे चिट्ठी हो, फोन हो या डिजिटल संदेश, आखिरकार हर संदेश के पीछे एक ही भावना होती है कि तुम याद आते हो। तो साथियों, चिट्ठियों और यादों के इस खूबसूरत सफर को हम यहीं विराम देते हैं और अब बात करते हैं उन रोजगार के अवसरों की जो आपके लिए बन सकते हैं आपके करियर की नई शुरुआत। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है, सिर्फ पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में जान होती है। तो आइए अब बता देते हैं आज के कार्यक्रम की महत्वपूर्ण रोजगार सूचना। SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है CPO SI, पदों की संख्या है 1871। शैक्षणिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। आयु सीमा न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनके आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। साथियों, आप सभी से बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और घड़ी इशारा कर रही है मुझे आप सभी से विदा ले।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे छतरपुर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है अंतराल का।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए आज़ाद फिल्म का गीत अमित त्रिवेदी और मृणाल जैन की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और संगीतकार अमित त्रिवेदी।

और लीजिए अब सुनिए 1942 ए लव स्टोरी फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। विषय है अंतरिक्ष में भारत का परचम, चंद्रमा से सूर्य और गगन की ओर। विशेषज्ञ हैं श्री साकेत सिंह कौरव, प्रधान क्यूरेटर और केंद्र प्रमुख, आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल। भेंटकर्ता अभिषेक कटियार।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, पिछले एक दशक में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उन्होंने न केवल हमारी वैज्ञानिक सीमाओं का विस्तार किया है, बल्कि हर भारतीय के दिल में एक नया आत्मविश्वास भी भरा है। चांद के अनोखे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने से लेकर सूर्य के आंगन में आदित्य L1 की तैनाती तक, और अब गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहकर आम जनमानस की आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत का नया आधार बन चुका है। इसी विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल के प्रधान क्यूरेटर एवं केंद्र प्रमुख साकेत सिंह कौरव जी। साकेत जी, आकाशवाणी भोपाल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: आकाशवाणी परिवार और सभी श्रोताओं को आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
1: तो चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। साकेत जी, पिछले 12 वर्षों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने पारंपरिक वैज्ञानिक दायरे से निकलकर आम जनमानस और वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बनाई है। इस पूरे बदलाव और विश्वास, विकास और जनकल्याण की इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं?
2: ये महती बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा। जिस तरीके से आज अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो पूरे वैश्विक पटल पे अपनी छाप छोड़ चुका है, इसकी शुरुआती दौर से लेकर अभी तक की यात्राओं में इसने जिस तरीके से कीर्तिमान स्थापित किए, नई चुनौतियों के बावजूद भी अपने आप को जो वैश्विक परिवेश में जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है उन पे खरा उतरने के साथ साथ सामाजिक सरोकार रखते हुए हमारे राष्ट्र के सबसे पहले जो सोशल एप्लीकेशन है हमारे जनमानस के लिए, आम जनमानस के लिए जो बेहतरी हो सकती है, उसमें इनका काफी योगदान और सक्रियता के साथ बदलाव भी आए हैं। हमने नए जनरेशन के रॉकेट इसरो ने बनाने शुरू किए हैं, आपने देखा है, सबने महसूस भी किया है। पूरे देश की एक राष्ट्रीय लहर बन के उभरा Chandrayaan-3 का सफलतापूर्वक लैंडिंग हो, या Chandrayaan के पहले जो मंगलयान मंगल पे जो पहुंचा था, ऐसे बहुत से मिशन हैं। और बाकी फिर हमारा खुद का रिमोट सेंसिंग सिस्टम का बेहतरी होना, या आप कहें हमारे खुद के GPS सिस्टम को बहुत पावरफुल जिसको नाविक कहा गया है
1: जी,
2: कि भारत इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहा है, और सैटेलाइट डिजाइन टेक्नोलॉजी में एक नया कीर्तिमान स्थापित करना काफी प्रशंसा की बात है। कि विज्ञान सिर्फ अब प्रयोगशालाओं या इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं है, उसके जो सदुपयोग हैं या अनुप्रयोग हम ज़्यादा बेहतर कहें, वो जनमानस को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहे हैं, और अंतरिक्ष विज्ञान समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

0: इसरो ने पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस के क्षेत्र में काफ़ी ऐसे कार्यक्रम करते आ रहा है, वो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं सोसाइटी में, पब्लिक बच्चों को लेके, विद्यार्थियों को लेके। तो
1: जी
0: धीरे धीरे ये पिछले कुछ विगत वर्षों में, दशक में आप देखेंगे कि किस तरीके से पब्लिक परसेप्शन और
1: जी
0: पार्टिसिपेशन
1: जी
0: दोनों बढ़े हैं, और उसमें कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जो आम होना है, लोगों से जुड़ना है,
1: जी
0: इंटरनेट की कनेक्टिविटी दूर दराज के गांव तक पहुंचना है,
1: जी
0: ये भी इस क्रांति का एक हिस्सा रहा है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सही मायने में जो संचार की बात होती है, कोई भी संचार कितने प्रभावी तरीके से आम जनमानस तक पहुंचता है, तभी उसका फीडबैक आम जनमानस की तरफ से भी आ सकता है। और हमारे आज के जो डिजिटल परिदृश्य में पिछले 12-14 वर्षों में जो कुछ प्रसार हुआ है हमारे देश में, उसके चलते कहीं ना कहीं अब हर एक अभियान हमारे देश का राष्ट्रीय अभियान बनता है और उसमें लोग सहभागिता भी करते हैं। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हुई, उससे पूरे विश्व में भारत का डंका बजा। इस सफलता ने वैश्विक अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के कद को कितना और ऊंचा कर दिया है, और आने वाले समय में आप इसका क्या भविष्य देखते हैं?
0: ये बात को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम सिर्फ चांद पे गए नहीं हैं।
1: जी
0: ये पहला प्रयास था। पहली बार जब किसी कार्य को किया जाता है तो
1: जी
0: उसमें सिर्फ वैज्ञानिक लक्ष्य या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के वो लक्ष्य मात्र ही केंद्रित नहीं होते हैं, पूरी की पूरी वो स्पेस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का विकास और उसकी टेस्टिंग भी होती है और
1: जी
0: डिमॉन्स्ट्रेशन भी होता है
1: जी
0: कि आपने जो चीज़ें बनाई हैं वो महज उसी लक्ष्य के लिए कार्य कर रही हैं, उनमें कुछ बदलाव की आवश्यकता होगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल अभियान भी होते हैं। जब
1: जी
0: आप पहले प्रयास करते हैं तो कई चीज़ें आप सिर्फ, अभी आपने साइंटिफिक तरीके से अगर सोचें तो
1: जी
0: आपने बहुत सिमुलेशन ट्राई किए होंगे, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन किए होंगे, पर जब वाकई में ये घटना घटती है
1: जी
0: तो वो जो अनुभव होता है, वो आत्मविश्वास होता है कि किस तरीके से हमारा जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है
1: जी
0: GSLV Mark 3, जिसे LVM कहा जाता है,
1: जी
0: जो चंद्रयान 3 को लगभग उतने वजनी, आप देखेंगे लगभग 6 से 8 हज़ार किलोग्राम की अगर कंबाइंड कैपेसिटी को ले जाने की क्षमता रखने वाले इस रॉकेट में अगर हम चंद्रयान 3 के पूरे कंबाइंड और सिस्टम को भेज रहे हैं, वो पृथ्वी की कक्षा में रह रहा है, फिर धीरे से वो कुछ दिनों बाद चांद पे पहुंच रहा है, चांद की ऑर्बिट में जाने के बाद, कैप्चर होने के बाद,
1: जी
0: फिर वो दक्षिणी ध्रुव पे उतर रहा है और सफलतापूर्वक उतर रहा है। कहने या सुनने में बड़ा सहज और सरल लग सकता है,
1: जी
0: परंतु ये जो स्पेस इंजीनियरिंग है
1: जी
0: ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है,
1: जी
0: क्योंकि चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी के साथ वो ग्रेविटेशनली लॉक है, पृथ्वी अपनी अक्ष पे धुरी पे घूम रही है। आप
1: जी
0: इमेजिन करिए जब आप रॉकेट्स को लॉन्च कर रहे हैं तो रॉकेट से एक जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसको हम माध्यमिक उस गति दे रहे हैं हम उस स्पेसक्राफ्ट को, आप देखिए उसको कितना अच्छा ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग करने की आवश्यकता है, यानी आम भाषा में कहें कि पृथ्वी की कक्षाओं में इतनी गतिज ऊर्जा उसकी धीरे धीरे एनर्जी बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, कि एक समय जब बिल्कुल चांद और पृथ्वी इस तरीके से एक दूसरे से सटीक ऑर्बिटल अरेंजमेंट में आ जाए कि जब इसको यहां से भेजा जाए तो चांद के करीब पहुंचे और चांद उसको कैप्चर भी कर ले, नहीं तो हम सीधा भी निकल सकते हैं या
1: जी
0: क्रैश भी, लैंडिंग भी हो सकती है।
1: जी
0: तो इन सब पेचीदगियों के बावजूद भी चीजों को बेहतर करने का जो कमाल है इंजीनियरिंग का,
1: जी
0: दैट इज कॉल्ड अप्लाइड साइंस।
1: जी
0: तो अब ये विज्ञान भी पहली बार भारत अपने दम पे टेस्ट कर रहा था।
1: जी
0: तो ये सिर्फ हमारे सफलतापूर्वक पहुंचना नहीं है, इसके
1: जी
0: पीछे उस कमाल की इंजीनियरिंग की विकास गाथा भी है
1: जी
0: कि भारत उस युग में भी पदार्पण कर रहा है जो भारत के पास पहले वो टेक्नोलॉजी
1: नहीं थी
0: नहीं थी कि
1: जी
0: हम अपने बनाए हुए स्पेसक्राफ्ट को खुद ही लैंड कराएं। ये
1: जी
0: पहला अभियान था भारत का चंद्रयान के माध्यम से,
1: जी जी
0: ये भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ,
1: जी
0: चाहे नासा हो अमेरिकन या रशियन स्पेस एजेंसी हो या यूरोपियन स्पेस एजेंसी या जापानीज, उन
1: जी
0: सब ने इस बात का लोहा माना, इवन चाइनीज स्पेस एजेंसी ने,
1: जी
0: कि भारत ने आत्मनिर्भर तरीके से किस इस अभियान को अंजाम दिया। तो ये देखिए उसके बाद तो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट हुए,
1: जी
0: लेकिन पहुंचना अपने आप में सबसे बड़ा है इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट था,
1: जी
0: जो भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत करता है कि हम अंतरिक्ष को और आगे कैसे एक्सेस कर पाएंगे।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ही जो अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के कद की हमने बात की, बहुत ऊंचा उठ गया है और लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए भेजा गया देश का पहला सौर मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और बहुत बड़ा कदम है। इससे मिलने वाले आंकड़े और सौर अध्ययन देश और दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। किस रूप में देखते हैं इस उपलब्धि को?
0: ये भारत के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि भारत अब सिर्फ पृथ्वी की निम्न कक्षाओं या चंद्रयान की बात कर लें या मंगलयान, पहली और मिशन हमारा सक्सेसफुली पहुंचा मंगल ग्रह की कक्षा में, हमने सूर्य हमारा पड़ोसी तारा है,
1: जी
0: और अगर पृथ्वी पर जीवन फल फूल रहा है
1: जी
0: तो पूरा का पूरा हम श्रेय किसको देते हैं? हमारे सूर्य
1: सूर्य
0: को।
1: को जी
0: अब सूर्य अध्ययन बहुत गंभीर विषय है, पूरी दुनिया इस पर गंभीरता से काम कर रही है, और आपको जान के इस बात से गौरव और गर्व भी महसूस होगा कि अभी

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ही मिशन है चंद जो वर्किंग है एट दिस मोमेंट जो सूर्य की अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आदित्य यानी सूरज का संस्कृत नाम है, L1 वो बिंदु है जो सूर्य की ओर पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, उसको लैग्रेंजियन 1 यानी

0: जी
1: है ना, सोलर विंड जिन्हें कहते हैं, उससे निकलने वाले मटेरियल और उससे सूर्य के बाहरी वायुमंडल की बनावट को समझना, और वैज्ञानिक कारणों के साथ साथ आने वाले समय में जो सूरज से जो तूफान उठते हैं उससे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के जो स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं उनको नुकसान जो पहुंचता है,
0: जी
1: तो सूर्य के वेदर को यानी स्पेस वेदर को समझने में सूर्य को समझना बहुत ज़्यादा
0: जी
1: जरूरी है।
0: जी
1: इसलिए भारत अब अंतरिक्ष से भी सूर्य का अध्ययन कर रहा है। पहले हमारे पास ग्राउंड वेस
0: जी
1: एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैं, भारत में कोडाईकनाल में भी है, कुछ चीज़ें हमारे PRL भी इसको कर रहा है। IAEA बैंगलोर ने अभी इस साल, आपने सुना होगा कि बजट में फरवरी मंथ में प्रपोज़ किया है भारत सरकार ने
0: जी
1: कि हिमालय के हमारे लद्दाख में
0: जी
1: आई थिंक हल्ले के पास
0: जी
1: अगली जनरेशन का सोलर टेलीस्कोप आने वाला है जो IAEA बैंगलोर नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा उसको
0: जी
1: बनाने में। तो आप सोचिए, हम जब सूर्य को इतना अध्ययन कर रहे हैं तो जो अगली पीढ़ी उस समय हमारे इस कार्यक्रम को सुन रही है,
0: जी
1: कोई उसमें से एक वैज्ञानिक इंजीनियर इस फील्ड में आगे जाके काम करेगा।
0: जी बिल्कुल डेफिनेटली सर। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान की चर्चा भी हम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की पहुंच और आने वाले समय में भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष अभियानों के लिए कितनी मजबूत आधारशिला बन रहे हैं।
1: ये बहुत गहन सवाल है, और चंद्रयान 1 ने पहली बार भारत को वो ताकत दी कि हम अपनी कक्षाओं को छोड़ के जा सके
0: जी
1: और पहली बार में चंद्रमा पे पहुंच गए।
0: जी
1: चंद्रयान 2 ने हमें उतरने के करीब पहुंचाया,
0: जी
1: यानी अंतरग्रही की बात अगर करें तो हमारा उपग्रह चांद है, उसको
0: जी
1: हमने अपनी पहुंच के अंदर लाए। 3 में हमने सफलतापूर्वक उतर के दिखाया।
0: जी
1: अब ये टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस ने हमें आत्मविश्वास दिया, और बीच में फिर मंगलयान जब आया, मंगलयान ने हमें दूसरे ग्रह पे पहुंचने का अनुभव दिया।
0: जी
1: तो अब भारत अगली पीढ़ी स्टेज में
0: जी
1: इंसान के साथ
0: जी
1: पृथ्वी की निम्न कक्षा में जाने की टेक्नोलॉजी का विकास करना बहुत आवश्यक, इसलिए भी आवश्यक है
0: जी
1: कि भारत को आगे की यात्रा अगर कंधे से कंधे मिलाकर करना है तो भारत सरकार का लक्ष्य है, इसरो भी इस मिशन में बड़ा गंभीरता से गगनयान प्रोग्राम में लगा है कि हम अपने ही स्वदेशी बनाए हुए स्पेस क्राफ्ट यानी गगनयान जिसे नाम दिया गया है
0: जी
1: उसके द्वारा हमारे 3 से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को हम चंद्र कक्षा में भेज सकें, अपनी पृथ्वी की कक्षा में भेज सकें
0: जी
1: और कुछ दिन रखने के बाद उनको वापस लाएं, तो हम वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को डेवलप करने की दिशा में हैं। अगर आपको पृथ्वी की कक्षा में रहना है, कल आपको आने वाले 2035 तक जो एक प्रस्तावित लक्ष्य रखा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बेस को निर्माण किया जाना है, तो आप सोचिए उसके पहले हमें वो अनुभव चाहिए होगा। हमें स्पेस में जाना, एस्ट्रोनॉट्स के साथ सफलतापूर्वक जाने आने की प्रणाली में महारत हासिल करना कि लॉन्च भी कर सकें बिठाल के एस्ट्रोनॉट्स को हमारे रॉकेट्स पे, वापस उनको लैंडिंग भी करा सकें सफलतापूर्वक, ये बे ऑफ बंगाल में होगा मान लीजिए, है ना, या उसका अगर दिशा भी बदलते तो अरेबियन सी में भी उतारना हो, जो भी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है इंजीनियरिंग पे, ये विकास करना बहुत महती जरूरी है। हाल ही फिलहाल में शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन जो है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये लगभग 16 देशों के कोलैबोरेशन से चलती है, नासा उसमें वन ऑफ द लीडिंग पार्टनर है और रसिया, आप देखिए उसमें भी एक्जियम प्रोग्राम के माध्यम से भारत ने अपने शुभांशु शुक्ला जी को भेजा ताकि वो अनुभव अर्जित कर सकें, वो पायलट थे उस मिशन के, डैगन क्रू जो स्पेस क्राफ्ट है स्पेस एक्स कंपनी का, उसके माध्यम से वो ISS पे गए और लगभग लगभग उनका भी एक लंबा कार्यक्रम रहा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वो अनुभव हमारे इसरो को आगे चंद्रयान के बाद अब जो हम इंसान के साथ जा रहे हैं उसमें देगा, और कल को जो हमारी स्टेशन होगी तो ये पूरा का पूरा एक विकास क्रम को एक नया बल और एक दिशा देगा ताकि हम अपने भारतीय अंतरिक्ष यात्री, हम खुद, आप अगर उन्हें इंडियनॉट कहें या जो भी कहें, उनके लिए एक विशाल तैयारी है उस आधारशिला को रखने की जिससे हम अपने दम पे स्वयं ये कार्यक्रम आगे कर पाएं।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अब अगर हम हाल के वर्षों में जो अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए भी खोला गया है हमारे देश में, वर्ष 2014 तक जहां कुछ गिने चुने स्टार्टअप ही थे वहीं अब इनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच चुकी है, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के इस विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भर भारत की गूंज को किस प्रकार से आप समझते हैं?
1: स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन के जो स्टार्टअप्स कंपनीज आ रही हैं, स्टार्टअप्स के माध्यम से जो नए वेंचर्स आ रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में स्काई रूट ने जो सफलतापूर्वक भारत की धरती से इसरो की सहायता से ही उस कंपनी ने अपना पहला रॉकेट विक्रम 1 आई थिंक लॉन्च किया सफलता के साथ, जो कि भारत के उस युग की शुरुआत हो रही है जब हम अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं
0: जी।
1: और ये महत ही जरूरी ही नहीं बहुत ही आवश्यक है आत्मनिर्भर बनने के उस लक्ष्य में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इवॉल्व होंगे
0: जी,
1: और छोटी छोटी कंपनियां भी आएंगी जी, तो उस प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे दायरे बढ़ जाएंगे
0: बिल्कुल।
1: और जब हमारा इकोसिस्टम बड़ा होगा तो हम सिर्फ भारत की जरूरतें ही नहीं, हम दुनिया के उन वैश्विक देशों की जरूरतों को बहुत ज्यादा वेटिंग समय में ना देते हुए उनके लिए हम हमारी अर्थव्यवस्था के

0: माध्यम से उनके सर्विसेज को हम प्रोवाइड कर पाएंगे, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज करें या इसरो के द्वारा हो। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को एक नया बल मिलेगा, जो इसे हम भारतीय स्पेस इकोनॉमी का बड़ा होना समझ सकते हैं। ये इसरो उसमें सेंट्रल पिवोटल रोल प्ले करेगा और प्राइवेट कंपनीज़ धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा के कारण कॉस्टिंग भी कम होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी और आप देखिए उस समय की डिमांड भी कम होने लगेगी कि हम किसी भी राष्ट्र के मिशंस को एक प्रतिस्पर्धा के आधार पर लॉन्च कर पाएंगे। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस इकोनॉमी की फील्ड में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर हो रहा है और ये सिस्टम उस भाव को भी जोर देता है कि भारत का प्रतिनिधित्व सिर्फ हाजिरी मात्र ना होकर एक शक्तिशाली सक्षम रूप से वो अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बन सके।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, सिर्फ एक हाजिरी नहीं बल्कि एक सकारात्मक दखल है हमारा और हमारी आवाज़ अब सुनी जाती है। कमर्शियल लॉन्च बाजार में भारत की इस साख का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है और आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हम न सिर्फ अपने देश के बल्कि दूसरे देशों के उपग्रहों को भी अपने माध्यम से हम लॉन्च कर रहे हैं और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल स्पेस बाजार है वो सुदृढ़ होता चला जा रहा है।
2: जी जी
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, कहीं ना कहीं भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की सफलता ही होगी कि जो कुछ समय तक हम फिल्मों के गानों में सुनते थे कि चांद और तारे तोड़कर लाऊं, तो हम चांद और तारों पर पहुंच रहे हैं। एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। निश्चित रूप से आगामी वर्षों के लिए स्पेस विजन 2047 का जो खाका खींचा गया है उसे देखकर ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष अब केवल वैज्ञानिकों का क्षेत्र नहीं बल्कि आम नागरिकों के जीवन को संवारने का एक जरिया भी है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं और युवाओं के लिए एक प्रेरक कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: अभी आपने सुना क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है अंतराल का।

कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है खरीफ फसलों में कटाई उपरांत कार्य एवं फसल अवशेष प्रबंधन। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर्स 2660902 या 2660903 पर फ़ोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर्स एक बार पुनः सुन लीजिए। दिनांक 11 अक्टूबर 2026 समय है शाम 7:30 से 8 बजे के बीच और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।

0: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। हर शनिवार शाम 7:00
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00 आकाशवाणी भोपाल पर।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के युवा प्रतिभागियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन युवाओं ने प्रतियोगिताओं

में शानदार प्रदर्शन किया है और इन्होंने टीम के सदस्यों से बातचीत कर उनकी उपलब्धियों के लिए उनको बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज आगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में सहभागिता करते हुए किसानों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कृषक कल्याण वर्ष के तहत आयोजित कार्यक्रमों में किसानों से कृषि गतिविधियों, शासन की किसान हितैषी योजनाओं से मिल रहे लाभ, कृषि के क्षेत्र में नवाचार तथा किसानों की आवश्यकताओं के संबंध में संवाद किया। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति एवं यूनिसेफ के सहयोग से कल नई दिल्ली में किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारतीय मूल की दक्षिण अमेरिकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्ले को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मध्य प्रदेश शासन ने राज्य पुलिस सेवा SPS संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके दीर्घ सेवाकाल एवं सेवाओं के अनुरूप उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत 18 वरिष्ठ अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान एवं वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
3: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
2: जी।
3: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताजा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
2: जी। आपने आगे लिखा है, दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ पांची के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
2: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में।

0: विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
0: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
1: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
0: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
1: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
0: जी बिल्कुल। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
1: विमलेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है।
0: जी,
1: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं।
0: जी, यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
0: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
1: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
0: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
1: जी जरूर। हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं।
0: जी, तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
1: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था।
0: जी,
1: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
0: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
1: श्रोता, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
0: आपने कहा वाग्देवी की प्रतिमा, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा?
1: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है।
0: जी,
1: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग्देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
0: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओं, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
0: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
1: जी हाँ बिल्कुल। तो आइए श्रोताओं, हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं।
0: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है श्रोताओं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
1: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT।

0: सीआरटी बुक्स पीडीएफ वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
0: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
1: सीखो, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
1: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
1: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना
1: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्धवीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे।

0: जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
0: सन 1962, जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई? हाँ,
0: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
0: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
3: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
4: जी सुबेदार साहब।
3: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
4: जी सुबेदार साहब।
3: बोले सोनिहा
4: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
5: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
6: हां साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहाँ हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
2: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
3: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।

0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
1: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आपने सुना एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत रैन फिल्म से है। कुणाल गांजावाला ने इस गीत को गाया है। प्रवीण भारद्वाज के बोल हैं और संगीतकार हैं सतीश अजय।

अगला गीत सरगम फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर, आनंद बख्शी की शब्द रचना और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

तेरे इश्क में। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए एआर रहमान की आवाज़ में। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत दिया है एआर रहमान ने।

सोनू निगम के गाए परे फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।

सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशन पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद न करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसेट वन वेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। तमिलनाडु की दारापुरम में टीवीके ने जीत हासिल की, जबकि मधुरांतकम सीट पर टीवीके आगे चल रही है। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने जीत हासिल की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर ने आज अदीस अबाबा में इथियोपिया के विदेश मंत्री घिदियोन तिमोथिओस हेजेबोन के साथ अदीस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और

0: समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले जानिए आज के शेष कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे सुनिए विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। 9:30 पर खेल जगत में सुनेंगे नावेद इशरत की वार्ता, एशियन गेम्स में भारत की उपलब्धियां और खिलाड़ियों का प्रदर्शन। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय है 10 बजे। 10:30 पर राग रजनी में सुनिए विदुषी शुभा मुदगल का ख्याल गायन, राग है बिहाग।

आज शाम 7:21 पर भोपाल से प्रसारित ग्राम सभा में आकर्षण रहेगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर आप सुनेंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर होगा विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। रजनी वर्मा के और साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे 9:15 पर लोक संगीत में। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वरिष्ठ शायर डॉक्टर अंजुम बाराबंकी से मेहताब आलम की बातचीत। समय रहेगा 9:30। जिले की चिट्ठी सुनवाएंगे 10:00। 10:05 पर होगा फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम गीत सागर। रागमाला में 10:30 पर आप सुनेंगे मनोहर कासलीकर का ख्याल गायन, राग होगा जौनपुरी। यह थे आकाशवाणी भोपाल से सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। ग्यारह बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11:00 सुनिए फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश का समय है 12:00। मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का 9वां भाग हम आपको सुनवाएंगे संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत 12:30 पर। हमारे रीवा केंद्र की प्रस्तुतियों में सुनिए दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रसारित किया जाएगा 6:30 पर। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी।

विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा प्रसारित करेंगे कल रात्रि 8 बजे। संस्कृति भारती कार्यक्रम 9:30 पर दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। 10:30 पर राग रजनी कार्यक्रम में

कल हम आपको सुनवाएंगे अर्चना जी उपाध्याय का कर्नाटक गायन। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ ये कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारतीय युवाओं से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज हरदा में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, देश में सैटेलाइट संचार के क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने वाले कानून को असंवैधानिक ठहराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय प्रतिभागियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता के अपने अनुभव साझा किए। वहीं प्रधानमंत्री ने युवाओं के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने जीवन में कौशल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सफलता के लिए कौशल का होना बेहद आवश्यक है।
2: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अब ढालना पड़ता है। पहले के जमाने में एक टेक्नोलॉजी 100-100 साल तक वही चलता था, आज 100 घंटे में नई टेक्नोलॉजी आने की संभावना है। और इसके लिए स्किल, रीस्किल, अपस्किल ये बहुत अनिवार्य होगा। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, उसका महत्व नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आपको आता क्या है उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: गौरतलब है कि चीन के शंघाई में 22 से 27 सितंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के 20 पदक हासिल किए। इसके साथ ही भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर रहा। इस बातचीत के दौरान युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई तकनीकों, सॉफ्टवेयर और कार्यप्रणालियों को सीखने के अनुभव भी साझा किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज हरदा जिले में सेवा संकल्प और जन विश्वास अभियान के अंतर्गत जिला चिकित्सालय पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से चर्चा कर उनके उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्राओं को निःशुल्क

0: शुल्क चश्मे भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनविश्वास अभियान के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आगरमालवा जिले में 3800 करोड़ रुपए की मैकेन फूड परियोजना शुरू होगी, जिससे करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आज आगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली किसानों से संवाद करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लालूखेड़ी में 200 करोड़ रुपए की लागत से आलू प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में आलू की खेती को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2027 तक गेहूँ की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले 2019 के कानून को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। आज सुनाए गए फैसले में न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने 27% आरक्षण की मांग से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने सरकारी भर्तियों में 13% आरक्षण के तहत रोके गए पदों पर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 महीने के भीतर नियुक्ति देने का निर्देश भी दिया है। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के अनुसार अदालत को आरक्षण की 50% सीमा पार करने के लिए विशेष परिस्थितियां नहीं मिली। वहीं ओबीसी महासभा ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसेट वनवेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित सुरक्षा मानदंडों और अन्य नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही ऑपरेटरों को सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएंगी। वहीं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने कहा कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
2: भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
0: भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 7 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को शिविर में आने वाले नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता से त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए आज नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडौरी में सेवा संकल्प अभियान के तहत कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कलेक्टर परिसर से नशा मुक्ति जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनूपपुर में शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लगभग 400 विद्यार्थियों ने विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर मानव श्रृंखला बनाई। नीमच में दिव्यांगजनों को कौशल विकास, रोजगार एवं स्वरोजगार के उद्देश्य से जोड़ने के उद्देश्य से रेडक्रॉस भवन नीमच में कार्यशाला का आयोजन किया गया। मैहर संगीत महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में शास्त्रीय गायन की 3 दिवसीय कार्यशाला के समापन पर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शिवपुरी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदसौर में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया और कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने भानपुरा क्षेत्र की शासकीय संस्थाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। रीवा के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में वन्य जीव सप्ताह के तहत वनस्पति शास्त्र विज्ञान विभाग द्वारा वन्य जीव संरक्षण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। खंडवा के पीएम श्री कन्या विद्यालय सूरजकुंड में होमगार्ड और एसडीईआरएफ द्वारा विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा और

सीपीआर का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं सीहोर जिले में संचालित सेवा संकल्प अभियान के तहत आज विभिन्न दुग्ध समितियों में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजगढ़ जिले के नगर परिषद छापीहेड़ा में आयोजित भर्ती कैंप में युवाओं का सुरक्षा जवान पद हेतु चयन किया गया और झाबुआ जिले के मेघनगर विकासखंड के नौगांवा क्लस्टर में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारतीय युवाओं से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज हरदा में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, देश में सैटेलाइट संचार के क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने वाले कानून को असंवैधानिक ठहराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम। भैयारों, अब अपनो आसमान बादल से ढको नहीं दिख रहा है और नीलो दिखन लगो है, और सुबह शाम हवा में हल्की सिरहन होने लगी है और दिन में धूप भी खिल रही है, यानी मानसून विदा हो चुका है और रबी का मौसम आ रहा है। तो खेतों में सरसों और चने की बुवाई के लाने हल चलन लगे हैं। तो जो भैयार धान, तिल या बाजरा कर रहे हैं, वे अपनी कटी हुई फसल को खेत में अच्छी तरह सुखाकर सुरक्षित स्थान पर रख लें, ताकि क्या है कि अचानक ओस से बा में नमी न बढ़े। और जिन खेतों की कटाई हो चुकी है, उनकी गहरी जुताई कर लें, ताकि मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट और फफूंद तेज धूप में नष्ट हो जाएं। सरसों और चने की बुवाई के लाने अब समय अनुकूल है। जाके अलावा अपन को अपने कहा है कि पालतू पशुओं को भी ध्यान रखना है। अपने जो पालतू पशु हैं, बिन को अपन को खुले में नहीं रखना, बिन्हें ऐसी जगह बांधें जहाँ से सीधी ठंडी हवा ना लगे, और उन्हें ठंडा पानी न पिलाएं, दोपहर की धूप में ताज़ा पानी पिलाएं, और दिन के समय बिन्हें छांव वाले स्थान में जरूर बांधें, जिससे कहा है कि भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और जाके अलावा अपन देख ही रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, दिन में पसीना आता है, रात में ठंड होती है, जाके वजह से कहा है कि वायरल बुखार होने की संभावना बनी रहता है। तो जा में अपन को अपना विशेष ध्यान रखना है, और साथ ही साथ जा समय डेंगू और मलेरिया भी बढ़ जाता है। तो अपने आसपास अपन साफ सफाई रखें, जो कूड़ा कचरा है वहाँ को पूर्ण तरह से निदान करें, और अपनी जो नालियाँ हैं बिन में पानी जमा ना होने दें। साथ ही साथ अपने घर के जो कूलर हैं और जो टंकी हैं, बिन्हें भी अपन समय समय पर साफ करते रहें, बिन को पानी निकालते रहें। कहा है कि जमा पानी में मच्छर अपने लार्वा देते हैं, और बासे कहा है कि डेंगू और मलेरिया फैलने की संभावनाएँ ज़्यादा बनी रहते हैं। जाके अलावा अपने जो कुआं हैं, हैंडपम्प हैं, बिन के आसपास भी अपन को साफ सफाई रखने हैं, बिन के आसपास अपन को पानी जमा नहीं होने देना है। और जाके अलावा अगर अपने कोई नल ख़राब है, अपन देखते हैं ना कि बाहर अगर कोई टंकी को नल ख़राब है तो सुधरवा लें, जिससे पानी भी व्यर्थ ना बहे, और अगर अपन इन बातों को ध्यान रखेंगे तो अपन बीमारी से भी बच सकते हैं। जाके अलावा अपन दिन में तो काम करते हैं, तो जब काम करें तो अपन पर्याप्त पानी पियत रहें, जैसे कहा है कि अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। भैया वो चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सो विराम।
1: तो

भैया रहूँ, आज 9 अक्टूबर है और पूरी दुनिया आज के दिन विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। अपन लोग सोचते हैं कि भाई आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट के समय में डाक दिवस मनाने की क्या ज़रूरत है, अब कौन खत लिखता है और कौन डाकिए बाबू का इंतजार कराता है। लेकिन डाकघर आज के समय में अपने साथ कदम से कदम मिलाकर और अधिक मजबूत और आधुनिक और भरोसेमंद हो गया है। भैया रो, पहले जब डाकिया आते थे तो पूरा मोहल्ला बाहर निकल आता था, कोई चिट्ठी का इंतजार करता था, कोई फौजी बेटे के मनी ऑर्डर की राह देखता था, तो कोई डाकिया बाबू से ही चिट्ठी पढ़वाता था और लिखवाता था। तो भैया रो, डाकिया जो थे वो हमारे परिवार के एक सदस्य होते थे और आज समय बदल गए हैं, हाथ में स्मार्टफोन आ गए। अपन कहा है कि आज के समय में अपन यहाँ से संदेश भेजें तो दूसरी जगह सेकंडों में संदेश पहुँच जाते हैं। लेकिन जो डाक विभाग है वह ने अपने अंदर बहुत बदलाव लिया है। भैया रो, आज उनके हाथ में स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक फिंगर मशीन है और दिल में वही पुराना सेवा का भाव है। अब अपने गांव के कई बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको पेंशन का इंतजार रहता है और किसान भैयाओं को सम्मान निधि के पैसे का इंतजार रहता है और बाकी पैसे के लाने अब उनको शहर जाना पड़ता था। 10-15 किलोमीटर बस को सफ़र करते थे, फिर 50-100 रुपया किराया देते थे और दिन भर की धूप में परेशान होकर अपन अपने पेंशन का पैसा लाते थे। लेकिन अब ये सब बंद हो चुका है। अब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए आपका खाता चाहे किसी भी बैंक में हो, डाकिया बाबू आपकी चौखट पर आएंगे और सिर्फ आधार नंबर दर्ज करेंगे और आपका अंगूठा लगाएंगे और 2 मिनट में आपका पैसा आपके हाथ में देगा। ना कोई फॉर्म भरना है, ना कोई पासबुक की चिंता है। भैया रो, जाके अलावा अपन ये सोचा था ना कि अपनी बेटी हैं, बाकी शादी कैसे होगी, बाकी शादी के लाने पैसा कहाँ से लाएंगे, पढ़ाई के लाने पैसा कैसे लाएंगे, तो जई के लाने डाकघर ने अपनी एक योजना शुरू करी है, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर अपने घर में 10 साल से कम उम्र की बिटिया है तो अपन उसका खाता खुलवा सकते हैं और केवल 250 रुपये से अपन जाके शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ में जो ब्याज मिलते हैं वो सभी आम बैंकों से बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ जो रकम है वो पूरी टैक्स फ्री है। और जब अपनी बेटी 21 साल की होगी तो बाकी पढ़ाई के लाने या शादी के लाने अपन को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। जाके अलावा अपनी जो माताएं हैं, बहनें हैं और ये महिला सम्मान बचत पत्र जो होता है, बाकी जरिए छोटी छोटी कमाई के लाने अपन RD खाता खुलवा सकते हैं जहां अपन महीना में 100-200 रुपये बचा कर एक सुरक्षित भविष्य भी बना सकते हैं। भैया रो, जाके अलावा अपनी खेती किसानी मजदूरी में जोखिम रहते हैं और जो प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं वे बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन उनको प्रीमियम बहुत महंगा होता है, तो अपन जो आम ग्रामीण हैं बाय नहीं भर सकते। तो डाक विभाग की ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना भी चालू करी गई है और ये योजना अपने गांव के भैया बहनों के लाने बनाई गई है, जहाँ में कहा है बेहद कम किस्त भरनी है, सरकारी गारंटी है और संकट के समय अपने पूरे परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है। तो भैया रो, हम तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहेंगे कि आज विश्व डाक दिवस के मौके पर हम सब ये संकल्प लें कि अपन सभी डाकघर की इन आधुनिक सुविधाओं को लाभ उठाएंगे, अपनी गाड़ी कमाई को सुरक्षित जगह लगाएंगे और अपनी बेटियों के लाने सुकन्या खाता खुलवाएंगे। भैया रो, चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब तनक मनोरंजन हो जाए तो सुनते हैं ये लोकगीत।

0: भैयारों, अभी अपन ने सुना ये प्यारा सा लोकगीत। और भैयारों, अपन देखा थे ना कि अपन अपन खेती किसानी में कई प्रकार की खादों का उपयोग कराते हैं, और आज के आधुनिक युग में नई नई तकनीकें भी आ रही हैं, और उसी तकनीक में एक खाद है जिसे बोलते हैं नैनो खाद, जो आधुनिक कृषि तकनीक से तैयार की गई एक तरल खाद है, जिसमें पौधों के लाने आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि आदि सूक्ष्म कणों के रूप में रहते हैं। और इसे अपन जो पारंपरिक जो दानेदार खाद होती है जैसे यूरिया या DAP होती है, उसको अपन मिट्टी में डालते हैं, लेकिन जबकि नैनो खाद को पानी में घोलकर सीधे पौधों की पत्तियों पर छिड़का जाता है। और आज अपनी जो भेंट वार्ता का विषय है वो भी यही है, फसलों में नैनो खादों का उपयोग। और इसके बारे में जानकारी देंगे श्री RK महुलिया, और भेंट करता है श्री सोहन सिंह। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों, खरीफ की फसलें पककर कटने को तैयार हैं और कहीं कहीं पर कटाई आरंभ भी हो गई है। खरीफ की फसलों के बाद रबी की फसलों की बुवाई आरंभ हो जाती है। कहीं कहीं पर फसलों की बुवाई की शुरुआत कर दी गई है। फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोषक तत्वों का विशेष महत्व होता है। पोषक तत्वों के रूप में हमारे किसान भाई आजकल जैविक खादों का प्रयोग बहुत कम कर पा रहे हैं, इसलिए रासायनिक खादों के ऊपर निर्भरता बढ़ती जा रही है। रासायनिक खादों में विशेष रूप से यूरिया, DAP, पोटाश, इनका ही प्रयोग करते हैं। आजकल फसलों में पोषक तत्व प्रदाय करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया है, नैनो खादों के माध्यम से किस तरह फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति की जाए। ये नैनो खाद क्या होते हैं और इनका हमारे किसान भाई किस तरह प्रयोग कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं IFFCO प्रबंधक श्री RK महुलिया। महुलिया साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। महुलिया साहब, ज़्यादातर हमारे किसान भाई रासायनिक खादों का प्रयोग करते थे तो या तो छिड़काव के रूप में करते थे, या सीड ड्रिल के साथ करते थे, या कहीं कहीं पर हमारे किसान भाई जो बीज बोते थे उनके साथ मिलाकर भी खादों का प्रयोग करते थे। आप जो नैनो खादों का प्रयोग बता रहे हैं, ये पहले तो बताइए कि नैनो खादें क्या होती हैं और इनको हमारे किसान भाई किस तरह प्रयोग करके फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
2: किसान भाइयों, जो रासायनिक उर्वरक हम लोग आज के समय में पैदावार के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं, ये आज लगातार हम लोग इसकी मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, परंतु हमारी पैदावार उतनी नहीं बढ़ पा रही है जितनी हमारे को चाहिए। इसके कारण हमारा मृदा का स्वास्थ्य, हमारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और भारत सरकार और कृषि के वैज्ञानिकों की सभी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है कि इसी प्रकार से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अगर हम आगामी 20 से 25 साल तक करते चले गए तो हमारा जो मृदा का स्वास्थ्य है वो इतना बिगड़ जाएगा कि हम उससे पैदावार लेना भी हमारे लिए संभव नहीं होगा, और हमारी जो धरती माता है वो बंजर होती चली जाएगी। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण जो हमारी ज़मीन के अंदर जो उर्वरक शक्ति है वो भी लगातार क्षीण होती जा रही है। नैनो उर्वरक ऐसे उर्वरक हैं जो केवल और केवल पौधे के पत्तों पर छिड़काव करके पौधे के पोषण की पूर्ति करते हैं, और उससे केवल पैदावार ही हमारी अधिक नहीं आती बल्कि हमारा जो मृदा का स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ने से बचता है, हमारा जल प्रदूषण भी बचता है और वायु प्रदूषण भी बचता है। नैनो उर्वरकों के अंदर आज IFFCO ने बहुत से ऐसे उत्पाद बनाए हैं जिसमें नैनो यूरिया है,

0: और DAP है, नैनो जिंक है, नैनो कॉपर है और आगामी समय में नैनो NPK भी हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ ही महीनों के अंदर उपलब्ध होने वाला है।
1: आप बता रहे हैं नैनो खादें हमारी मार्केट में क्या उपलब्ध हैं?
0: नैनो यूरिया, नैनो DAP, नैनो जिंक और नैनो कॉपर आज सभी किसान भाइयों के लिए जो भी विक्रय केंद्र हैं उन पे सभी पे विद्यमान है। सहकारिता के माध्यम से हों चाहे निजी क्षेत्र के माध्यम से हों, किसान भाई वहाँ से जब इच्छा हो तो खरीद सकते हैं।
1: मौलिया साहब, जहाँ पर जो संस्थाएँ हैं वहाँ से हमारे किसान भाई नैनो खाद अगर खरीद लेते हैं तो उनका जो प्रयोग है वो किस तरह करें?
0: आज के समय में अगर किसान भाई नैनो उर्वरकों का उपयोग सही तरीके से नहीं करेगा तो उसका पूरा जो लाभ है वो किसान भाई नहीं ले पाएंगे। अभी जो आगामी रबी की जो फसलें हैं, चाहे उसमें आप गेहूं लगाना चाहते हों, चना लगाना चाहते हों, सरसों लगाना चाहते हों, जो भी फसल आप लगाएंगे सबसे पहले नैनो DAP से बीज शोधन करना अति आवश्यक है। 5 ml प्रति किलो मात्रा के हिसाब से बीज का शोधन करना है। 1 क्विंटल बीज के लिए 500 ml की जो नैनो DAP की जो बोतल है वो पूरी की पूरी बोतल 1 क्विंटल बीज के लिए पर्याप्त है। जब बुआई के समय हम लोग बीज को लेके जाते हैं खेत में, उस समय बीज को एक तरपाल के ऊपर बिछा करके और नैनो DAP की छिड़काव करके 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको हल्के हाथों से मल लें और उसके बाद में उसको फैला करके छायादार स्थान पर करीब 25 से 30 मिनट के लिए उसको रख दें ताकि वो पूरा बीज है उसको अवशोषित कर लें। उसके बाद में हम उसको बुआई के लिए काम में लें। तो जो नैनो DAP है उसका 2 प्रकार से उपयोग होगा कि एक बार हमें बीज का शोधन करना है, उसके बाद जब फसल हमारी 30 से 35 दिन की हो जाए उस समय इसका एक बार हमें छिड़काव भी फसल के ऊपर करना होगा। क्योंकि इसका जब तक पत्तों पर छिड़काव नहीं करेंगे, पत्तों के माध्यम से अवशोषित नहीं होगा, तब तक हमारा पौधा उसको ले नहीं पाएगा। और पत्ते फसल में पर्याप्त होने आवश्यक हैं। अगर हम फसल की ऐसी अवस्था में छिड़काव करते हैं नैनो उर्वरकों का जब हमारे खेत में पत्ते पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो इसके छिड़काव का जो असर है वो हमारे फसल को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो छिड़काव हम करेंगे वो ज़मीन पे ज़्यादा गिरेगा और पौधों के पत्तों पर कम गिरेगा, जिसके कारण जो पौधा है उसका अवशोषण उतना नहीं हो पाएगा नैनो उर्वरकों का और पौधे को लाभ उतना नहीं मिलेगा।
1: मौलिक साहब, पोटास पोषक तत्व भी फसल उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, तो पोटास का हमारे किसान भाई किस तरह उपयोग कर सकते हैं?
0: पोटास के लिए लगातार किसान जो हैं आज के समय में अपने क्षेत्र में केवल यूरिया और DAP का ही उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर वो NPK की तरफ जाते हैं, चाहे वो 12-32-16 हो, चाहे 15-15-15 हो, चाहे 16-16-16 हो, तो इनके अंदर पोटास अवेलेबल है जिसके कारण उनमें पौधे को पोटास की पूर्ति होगी। और पोटास की कमी आज अपने क्षेत्र में चारों तरफ देखने को मिल रही है और पोटास की कमी की वजह से ही जब हमारी फसल पकने की अवस्था में आती है तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो हमारा खेत पूरा ज़मीन में लेट जाता है। उसके अंदर अत्यधिक मात्रा में यूरिया खाद का उपयोग करना और पोटास का बिल्कुल उपयोग न करना कारण है। इसके अलावा भारत सरकार ने अभी कुछ नेचुरल पोटास भी बनाए हैं जो PDM के माध्यम से जाने जाते हैं, तो हम इसका भी उपयोग किसान भाइयों को सलाह दे सकते हैं। जो नेचुरल जो पोटास है जो शुगर केन के मोलासेस से बने हैं उसका भी उपयोग करके किसान भाई पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। और नेचुरल या जैविक इस प्रकार के उत्पादों का किसान भाई उपयोग में लाते हैं तो जो हमारे मृदा के अंदर जो लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी हमारी ज़मीन में कम होगा।
1: मौली साहब, आपने DAP के बारे में बताया, पोटास के बारे में बताया, यूरिया की पूर्ति तो हमारे किसान भाई ज़्यादातर उसी समय करते हैं जब फसल बर्बाद की स्थिति में होती है, या हमारी गेहूं की फसल तो विशेषकर 20-25 दिन की सिंचाई हो जाती है उसके बाद प्रयोग करते हैं। जो नैनो यूरिया है इसका कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और सिंचाई के पहले भी कर सकते हैं कि सिंचाई के बाद ही उपयोग करना चाहिए?
0: नैनो उर्वरकों का जो उपयोग है, आपकी गेहूं की जब फसल एक बार आपने बीज उपचार जब नैनो DAP से कर लिया तो जो रासायनिक उर्वरक जो DAP या फॉस्फोरस से संबंधित जो भी उर्वरक आप डालना चाहते हैं उसकी मात्रा आपको आधी या आधी से कम करनी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। जब आपकी फसल करीब 20 से 25 दिन की अवस्था में आती है गेहूं की, उस समय आप पहला पानी खेत में देते हैं और पहले पानी के बाद में हमारे किसान भाई यूरिया का छिड़काव करते हैं। उस समय किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि उस समय जितना भी यूरिया किसान भाई डालते हैं उसकी मात्रा भी आधी या आधी से कम कर लें। उसके उपरांत जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की अवस्था में आती है उस समय किसान भाई नैनो यूरिया और नैनो DAP दोनों को मिलाकर के एक जो बोतल है 500 ml की वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है और दोनों को मिलाकर के किसान भाई 1 एकड़ में उसका छिड़काव कर सकता है। क्योंकि जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की अवस्था में आती है तो उस समय जो है पत्ते भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं और अगर उस समय किसी भी प्रकार की अगर घास हमारे खरपतवार हमारे खेत में है तो खरपतवार की दवाई भी आप उसमें मिला करके 2,4-D या जो भी आप मिलाना चाहते हैं मिला करके इन नैनो उर्वरकों के साथ स्प्रे कर सकते हैं। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो हमारी खरपतवार है वो जल्दी मरेगी और दूसरा जो

0: पौधा जो कई बार उससे प्रभावित होता है, जो हर्बिसाइड जो हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से कई बार पौधा थोड़ा दबा दबा फील होता है, तो वो भी उससे प्रभावित नहीं होगा और हमारी फसल अच्छी ग्रोथ में आएगी।
1: मौलवी साहब, आजकल धीरे धीरे भूमि में जिंक की भी कमी होती जा रही है, जिंक का भी हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं, तो जिंक कितनी मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए और किस तरह प्रयोग करनी चाहिए?
0: जिंक का भी बहुत अधिक उपयोग करने के लिए अभी जो है लगभग जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो 3 साल में एक बार उसको उपयोग करने की सलाह देते हैं 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। परंतु इसका भी विकल्प नैनो उर्वरकों के माध्यम से किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है कि नैनो जिंक का अगर किसान भाई उपयोग में लाते हैं तो नैनो जिंक जो है वो किसान भाइयों के लिए सस्ती है और लाभदायक भी ज़्यादा है। और किसान भाई उसका जब भी किसी भी पेस्टिसाइड का हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं तो उसमें मिला करके उसका भी स्प्रे एक जो बोतल 100 ml की सीसी है उसका 1 एकड़ में आराम से किसान भाई स्प्रे कर सकते हैं और जिंक की पूर्ति आराम से हमारे किसान भाई उसके माध्यम से अपनी फसल की कर सकते हैं।
1: मौलिया साहब, आप नैनो उर्वरकों की बात कर रहे हैं, इसके परिणाम कैसे मिल रहे हैं हमारे किसान भाइयों?
0: नैनो उर्वरक ऐसे लाभकारी और हितकारी जो उत्पाद हैं इनके परिणाम बहुत ही उत्साहजनक हैं और जिन जिन किसान भाइयों ने इसका उपयोग सही तरीके से किया है उसने इनका लाभ निश्चित रूप से लिया है और अपनी लागत भी कम करी है और उन्होंने लगभग 8 से 10% तक पैदावार भी अपनी बढ़ाई है और उसके साथ ही उनकी जो आय है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है और उनकी जो मृदा स्वास्थ्य है उसमें भी उनको सुधार देखने को मिला है।
1: मौली साहब, चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और क्या सलाह देना चाहेंगे, जिन्हें हमारे किसान भाई कृषि क्रियाओं में अपनाकर फसल उत्पादन लेते हैं तो उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सकता है?
0: किसान भाई जितना हो सके उतने गोबर की खाद का अवश्य उपयोग में लाएँ और अगर गोबर की खाद उनके पास में नहीं है तो हरी खाद अवश्य लगाएं, उसमें चाहे ढेंचा लगाएं चाहे सनई लगाएं, जिसके माध्यम से क्या है कि जब तक हमारा मृदा का स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा तो हम हमारी पैदावार को बढ़ाने में सहायक नहीं होंगे। चाहे हम कितना ही उसमें रासायनिक उर्वरक उपयोग में लाएँ, चाहे 1 बैग डालें, 2 बैग डालें, 3 बैग डालें, लेकिन जब तक उसके अंदर कार्बन कंटेंट नहीं होगा तब तक हम उसकी पैदावार को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप अधिक से अधिक जैविक की तरफ उपयोग में लाएँ, नैनो उर्वरकों का उपयोग करें और अपनी पैदावार को बढ़ाएँ, लागत को कम करें।
1: मौलिया साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को नैनो खादों का प्रयोग फसलों में किस तरह करना चाहिए और इनसे हमारे किसान भाइयों को किस तरह का लाभ हो सकता है इसके बारे में जानकारी दी और इस जानकारी को हमारे किसान भाई अपनी कृषि क्रिया में अपनाएंगे और फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया, अभी अपन सुन रहे थे भेंट वार्ता, चा का विषय था फसलों में नैनो खादों का उपयोग और चा के बारे में जानकारी दे रहे थे श्री आर के महोलिया और भेंटकर्ता थे सुहन सिंह। तो भैया, निश्चित तौर पर इस भेंट वार्ता से आपको लाभ होगा और आप भी अपनी खेती किसानी में नैनो खादों का उपयोग कर अच्छा और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। भैया, चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब लेते हैं तनक सु विराम और सुनते हैं ये संदेश।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: भैया अपन सभी ये चाहते हैं कि अपने जो गांव है वो साफ सुथरो हो, बामे पक्की सड़कें हो, पीवी के लाने साफ सुथरो पानी मिले, 24 घंटा बिजली रहे और बच्चन के लाने अच्छी शिक्षा मिले, जाके साथ साथ अच्छो अस्पताल हो जहाँ सेहत की सुविधा मिल सके। तो आज आप लोगों से अपन चर्चा करेंगे सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जो अपने गांव की दशा और दिशा बदल रही है, और ये योजना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। भैयारों ये योजना भारत सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, और जय योजना को जो उद्देश्य है उन गांवों को विकास करना है जहां अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या कुल आबादी के 50% से अधिक है। अपन लोग देखते हैं ना कि अपने गांव में कई गांव में विकास तो देरी से पहुंचता है, और जय योजना की सबसे बड़ी बात ये है कि जा को जो लक्ष्य है वो हर परिवार और हर गली को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाए। जय योजना से गांव की जो अंदर की सड़कें हैं बिना मुख्य सड़कों से जोड़ा जाता है और गांव की गलियों को पक्का किया जाता है।

आदि की व्यवस्था जय योजना के अंतर्गत करी जाती है। और जय योजना में सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने ग्रामीण भैया बहन हैं इनकी सीधी भूमिका रहती है। जय योजना में गांव में जो काम होने हैं, कहाँ खड़ंजा लगने हैं, कहाँ नाली बननी है और कहाँ लाइट लगनी है, तो ये सब अपन खुद ही तय करते हैं। जाके लाने कोई अफसर नहीं बुलाए जाते। और जाके लाने गांव में विशेष बैठक बुलाई जाती है जिसे ग्राम विकास योजना कहते हैं, और जहाँ हर कार्य की रूपरेखा तैयार होती है और जब कार्य पूरा हो जाता है तो बाकी गुणवत्ता की जाँच भी गाँव वालों की देख रेख में होता है। तो भैया रहो आज ही अपने गांव के ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव या सरपंच से अपन मिलें कि अपने गांव में प्रधानमंत्री, अपने जो गांव है वो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल है या इसकी सूची में आ सकता है। और जब भी ग्राम सभा की बैठक हो तो अपनी बात सबके सामने रखें, अपनी समस्याएं जरूर बात बताएं। याद रखें जब तक अपन जागरूक नहीं होंगे तो गांव वाले भी, तो तभी अपन जो अपने जो गांव है वो आदर्श गांव बन सकता है। तो अपन को कहा है कि जागरूक होना है और अपने गांव को आदर्श गांव बनाना है। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, आप तनक मनोरंजन हो जाए तो सुनाते जे लोकगीत।

भैया रहो, अभी अपन ने सुनो ये लोकगीत, और अपन जानते हैं कि भैया नवरात्रि भी आ रही है और साथ ही साथ दशहरा भी आ रहा है, और यही समय है कि दिन में कड़ी धूप रहते हैं, उमस रहते हैं, और जबकि सुबह शाम रात पहर हल्की ठंडक दस्तक देने लगाते हैं, और चाहे अपन बोलाते हैं मौसम को फेर बदल, और अक्सर कर यही समय में घर घर में खांसी, जुकाम, बदन दर्द, गले में खराश और मौसमी बुखार के मरीज बढ़न लगाते हैं। तो अपन भैया रोज देखते हैं कि खेती किसानी को काम में लगे रहते हैं, तो लेकिन अपन खेती किसानी के काम में लगे रहने के कारण अगर अपन अपनी सेहत की अनदेखी कर देंगे तो जैसे कहा है कि अपन स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा और अपन खेत खलिहान और घर परिवार को भी नहीं संभाल पाएंगे। तो बदलते मौसम में अपन कछु बातों को ध्यान रखें, जैसे जब मौसम में जमीन और कुओं को जल स्तर में बदलाव होते हैं जिससे पेट के कीड़े, पेचिस और टाइफाइड को खतरा बढ़ जाता है, तो अपन जो पानी पिए वो हमेशा उबाल कर पिए और हो सके तो गुनगुना पानी पिए। साथ ही साथ बासी खाना और जो खुले में रखा खाना है बाय खाने से बचें, और बाजार को खाना तो बिल्कुल ना खाएं। साथ ही साथ तुलसी की पत्तियां, अदरक, काली मिर्च और थोड़ी सी लौंग डालकर अपन चाय बना लें या काढ़ा बना लें, जैसे कहा है कि अपने फेफड़े भी साफ रहेंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहेगी। साथ ही साथ अमरूद, आंवला, नींबू जैसे फलों को अपन खा सकते हैं, जैसे कहा है कि विटामिन सी की जो कमी है वो अपने शरीर में पूरी हो जाएगी। जाके अलावा भैया रहो, अपन पूरे सुबह शाम पूरे कपड़े पहने और रात में खुले रहने से सोने से बचें, तो जैसे कहा है कि अपन मच्छरों से बच जाएंगे, और साथ ही साथ अपन जाना थे कि रात में ठंडक दो तीन बजे के बाद आसपास तापमान बदलता है, तो जैसे कहा ठंड लगाता है, तो अपन कोशिश करें कि अपन खुले में सोने से बचें। तो भैया रहो, अगर अपन इन बातों को ध्यान रखेंगे तो अपन कई प्रकार की बीमारियों और समस्याओं से बच सकते हैं। भैयारों अब हो गई चलबी की बेला, तो सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रही हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच चिनाब नदी के उफनते पानी से 359 मीटर ऊपर टिकी एक विशाल फौलादी मेहराब का, जहां कभी पहुंचना महज एक सपना था, वहां आज भारत की तरक्की की ट्रेन फर्राटा भर रही है। सोचिए पंबन के नीले समुद्र पर खड़े उस पुल के बारे में, जो जहाजों को रास्ता देने के लिए समुद्र के सीने पर किसी विशाल पंख की तरह हवा में ऊपर उठ जाता है, या कच्छ के रण से लेकर कन्याकुमारी तक फैले उन चमचमाते एक्सप्रेसवे का, जिन्होंने दूरियों को सिर्फ किलोमीटरों में नहीं वक्त के पैमाने में भी आधा कर दिया है। ये केवल कंक्रीट, क्रेन और स्टील की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अदम्य इच्छा शक्ति की, जिसने चुनौतियों को संभावनाओं में बदला, जिसने भारत के भूगोल को एक नए भारत के भविष्य से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज हम रुख कर रहे हैं एक ऐसी ही बदलाव की कहानी की ओर। प्रस्तुत है विशेष अंक, बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार।
2: ये फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां है, इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर आपस में मिलते हैं, यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा।
1: श्रोताओं, जब किसी राष्ट्र के महान बनने की गाथा लिखी जाती है तो उसकी न्यू में उसकी रीढ़ यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। पिछले वर्षों में भारत ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो गति, पैमाना और इंजीनियरिंग का चमत्कार देखा है, उसने न केवल देश की कनेक्टिविटी बदली है बल्कि हर नागरिक की आकांक्षाओं को नए पंख दिए हैं। इसी अभूतपूर्व कायाकल्प और इसके दूरगामी प्रभावों को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी, और इस पूरे विजन

0: के सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत प्रभावों के विश्लेषक, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी, आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी।
0: मिश्रा जी, आपके साथ शुरू करते हैं। और पिछले करीब एक दशक में भारत ने सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव देखा है। आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ये बदलाव सिर्फ इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्केल बढ़ा है, या प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का तरीका भी बदला है, खासकर पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के जरिए? क्या अब इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे से जोड़कर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह देखने की सोच बन रही है?
1: बिल्कुल आनंद जी, आपने सही कहा कि पहले हमारे लिए रोड रोड थी, रेल रेल थी, या हवाई अड्डे थे, जहाँ पे कुछ पैसेंजर जाते थे, कुछ गाड़ियां चलती थी, कहीं पे अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन पिछले 10-12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई सोच, जो शहरों को जोड़ करके, स्थानों को जोड़ करके, लोगों की मोबिलिटी को करके, फ्रीट के मूवमेंट को, अनेकल मूवमेंट ही नहीं बल्कि उसको कितने सस्ते, अफोर्डेबल तरीके से उसको कर सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा नया व्यवस्था बनाया है पिछले 10-12 सालों में कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी बुनियादी सुविधाएं एक नए स्वरूप ले रही हैं। और वो स्वरूप है हमारा विकसित भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। 2047 हम आजादी का 100वीं सदी मना रहे होंगे, 100वीं वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हमारा देश जो विकसित होगा उसके लिए पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एयरपोर्ट में ले लीजिए, जिस प्रकार से एयरपोर्ट की संख्या आज दूने से ज्यादा हो गई है, और केवल एयरपोर्ट की संख्या नहीं बढ़ी है बल्कि एयरपोर्ट पे चलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। एक साधारण सा आदमी जो कि कभी सोच नहीं सकता था, वो उड़ान इस योजना के तहत अब उसको कहीं से कहीं, देश में लगभग 95 ऐसे एयरपोर्ट है जहाँ पे उड़ान योजना के अंतर्गत वो चल के जा सकता है। तो उसको एक नई चीज, आप कभी एयरपोर्ट पे जाइए तो देखिए, देख करके लगता है कि ये क्या है, ये नया भारत है। आप रेलवे को देख लीजिए, रेलवे में जिस प्रकार से न केवल हमारे जितनी डबल ट्रैक उसको बनाया गया बल्कि लगभग 99% से ज्यादा, ऑलमोस्ट लाइक 100% ये सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, और उसमें स्पीड पे ध्यान दिया गया। आज काफी करीब 80% ट्रैक हमारे ऐसे जिसके ऊपर 110 किलोमीटर की रफ्तार से रेल चल सकती है, तो स्पीड पे ध्यान दिया गया, सुरक्षा पे ध्यान दिया गया, पीपल्स कन्वीनियंस जो हम कभी सोचते नहीं थे, चाहे शौचालय से लेकर के आपको पावर पॉइंट प्लग जिससे कि आप अपना मोबाइल को चार्ज कर सके, आपके जो है खाने पीने की सुविधा हो सके, सारी की सारी हर तरह से, और स्पीड तो है ही, अफोर्डेबिलिटी, जैसे एक आनंद हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें चली, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर उस पर ध्यान दिया गया, तो वंदे भारत ट्रेनें चली जिसको स्पीड के ऊपर ध्यान दिया गया, एक अमूल चूल परिवर्तन पूरा का पूरा, या फ्रीट कॉरिडोर में ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, तो मुझे लगता है कि पूरी सोच में बदलाव आया। आप मेट्रो का नेटवर्क का देख लीजिए, जो मेट्रो कभी थोड़े से शहरों में हुआ करता था, हम इस पर बाद में विस्तार में बात करेंगे, तो एक छोटे शहर में जो करके आज हमारे लगभग 30 शहरों में मेट्रो चल रही है और तमाम सारे शहरों में चल रही है। पहले बार हमारे देश में रैपिड रीजनल ट्रेन की जो शुरुआत हुई है, जो नमो भारत के नाम से जो पहली शुरुआत हुई, तो ये एक नई सोच है कि कैसे हम व्यक्तियों को, जो व्यक्तियों के जो हमारे काम करने के, चाहे कारखाने से लेकर के उत्पादन के केंद्रों से लेकर के व्यवसायिक केंद्रों से लेकर के विदेशों तक, क्योंकि आज हम अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे बल्कि हम दुनिया के लिए बना रहे, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, तो उसको कैसे हम जहाज रानी के माध्यम से उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक नई आर्थिक सोच जो पिछले 10-12 साल में बढ़ी है, और मुझे लगता है कि ये विकसित भारत का बहुत बड़ा एक बुनियाद, उसको आगे रंग देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए तैयार हुआ है।
0: रवि जी, अगर एक एक करके बिंदुओं पर आए, और सबसे पहले शुरुआत सड़क से करते हैं। नेशनल हाईवे नेटवर्क जो 91,287 किलोमीटर था, वो बढ़कर लगभग 146,572 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। फोर लेन हाईवेज की संख्या बढ़कर लगभग 45,000 किलोमीटर तक पहुंच गई है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि 2014 के बाद से जो ये परिवर्तन हुआ है आम नागरिक के जीवन में, ये जो आंकड़े हैं बढ़े हुए, इनका वास्तविक मतलब क्या है, और देश की प्रगति में इनके क्या मायने हैं?
3: आनंद जी, राष्ट्रीय राजमार्गों का जिस तरह से विकास हो रहा है, न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो जाहिर है कि इससे आम आदमी के दैनिक रोजमर्रा के जनजीवन पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है। दूरियां घटी हैं, कनेक्टिविटी बढ़ने से बहुत सारी चीजें हुई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से फसल को अच्छी मंडियों तक लाना ले जाना, इलाज के लिए अच्छे अस्पतालों तक पहुंच बढ़ना, और बहुत सारे स्तरों पर अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा कि देश में सड़कों का जाल एक तरह से बिछ रहा है। और जो आपने आंकड़ा बताया कि 2014 में जो भी प्रतिदिन सड़क

0: निर्माण का आंकड़ा था वो अब बढ़कर 28 से 30 किलोमीटर रोज हो गया है। उल्लेखनीय वृद्धि है, 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग थे देश में, उनकी कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी। अभी 2025-26 में ये आंकड़ा 146,572 किलोमीटर तक पहुंच गया है। ये करीब परसेंटेज में देखें तो ये 61% बढ़ोतरी है
1: जी।
0: ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। गति शक्ति मास्टर प्लान
1: जी,
0: इसका उल्लेख करना हमें यहाँ पर बहुत आवश्यक है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना में सड़क, रेल और दूसरे ट्रांसपोर्ट, जैसे दुर्गा शंकर जी ने कहा, साधनों को, सारे जो यातायात के साधन है उनको एकीकृत किया गया है और इसका बहुत बड़ा फायदा अलग अलग सेक्टर्स को बिल्कुल मिला है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात आई है, देश के चारों कोनों में हर जगह एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उनसे दूरियां बहुत घट गई हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ये। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसकी लंबाई 1,350 किलोमीटर है और दिल्ली से मुंबई जाएं या मुंबई से दिल्ली के बीच हम एक्सप्रेसवे के जरिए सफर करें बाय रोड तो 24 घंटे की बजाय 12 घंटे में ये सफर संभव है। अब ये कितना बड़ा अंतर है, जो यात्रा आप 24 घंटे में कर पाते थे वो अब करीब करीब आधे समय में आप कर सकते हैं, तो न केवल समय की बचत है बल्कि ऊर्जा की भी बचत है। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो इंजीनियरिंग के, भारतीय इंजीनियरिंग के जो अद्भुत चमत्कार हैं वो भी आप देखेंगे। इसी दौरान कुछ प्रोजेक्ट जो है संभव हुए, तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जो अंग्रेजों के शासनकाल में 1914 में शुरू हुआ था उसका बनना, और करीब करीब इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। जंग लगने की वजह से और कुछ पुराना पड़ने की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। अब जो नया पंबन ब्रिज बना है वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। अटल सेतु की बात कर ले, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है और ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दक्षिण मुंबई के सेवरी को नवी मुंबई से जोड़ता है ये। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो समुद्र पर इसका हिस्सा बना है उसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है और जमीन पर इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। ये 6 लेन का अटल सेतु है। मुंबई से नवी मुंबई तक 20 मिनट में इसके जरिए जो यात्रा करते हैं इसके माध्यम से, उसमें केवल अब आजकल 20 मिनट लगते हैं, पहले घंटों लगते थे क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत लंबे लंबे लगते थे और इसकी लागत थी 17,840 करोड़ रुपए। इसी तरह सुदर्शन सेतु को ले, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है ये। गुजरात के द्वारका जिले में अरब सागर पर ये सुदर्शन सेतु स्थित है। ओखा को बेठ द्वारका से ये जोड़ता है। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है, लागत आई थी करीब 979 करोड़ रुपए। ये 4 लेन का पुल है और दोनों किनारों पर लोगों की सुविधा के लिए 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है जिस पर वो चहलकदमी भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में सड़क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया गया है और इसका लाभ बहुत सारे सेक्टरों को मिल रहा है।
1: मिश्रा जी, अगर सड़क से सफर को आगे बढ़ाएं और रेल की तरफ चलें, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिक्र भी किया अमृत भारत स्टेशन का, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है। साथ ही साथ नमो भारत और वंदे भारत जो ट्रेनें चली हैं उससे यात्रा समय में तकरीबन 30-40% की समय की कमी आई है, जो आप स्पीड की भी बात कर रहे थे। सवाल यह है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने और देश की जीडीपी में इस आधुनिक कनेक्टिविटी का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं?
2: आनंद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इसके पहले इसको बात करूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो पराशर जी बोल रहे थे। देखिये, पहले दिल्ली से, मैं रहने वाला हूँ पूर्वांचल का, दिल्ली से अगर आपको बलिया या आजमगढ़ जाना हो तो बहुत टाइम लगता था। समझिए कि पूरा दिन भर आपको नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 20-22 घंटे लग जाते थे। और आज आप दिल्ली से लेके लखनऊ तक एक्सप्रेसवे है जो कि मुश्किल से 5 घंटे में आप लखनऊ पहुंच सकते हैं और वहां से अगले 3-3.5 घंटे में, 4 घंटे में आप हो जाते हैं। जो दूरी हम लगाते थे 20-20 घंटे लगा देते थे, वो हम 9 घंटे के भीतर भीतर वहां पहुंच जाते हैं। उसका क्या नतीजा निकला? आज जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था तो पहले पूर्वांचल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था क्योंकि वहां कोई सामान ले जाना अपने आप में बहुत दूर हुआ करता था। आज पूर्वांचल में तमाम सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बुंदेलखंड में काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को इस प्रकार से कनेक्टिविटी जोड़ा है, हाईवे के, नेशनल हाईवे के माध्यम से, एक्सप्रेसवे के माध्यम से, या तमाम सारे इंजीनियरिंग मार्बल जिसका भी जिक्र कर रहे थे, जैसे अटल सेतु की बात कर रहे थे, अटल सेतु में उसको सेतु नहीं

0: देता हूँ, मैं उसको समझता हूँ कि दो इकोनॉमिक सेंटर, दो ग्रोथ सेंटर, एक तरफ तो मुंबई है, दूसरा नवी मुंबई है, या आगे चलिए पूना का देख लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी को कम करके उसने एक बिल्कुल नया चीज ला दिया। मैंने आर्थिक विकास के लिए जो हम जब, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हमारा ये पाई, इकोनॉमिक पाई बढ़ेगा नहीं, तब तक हमारे देश के लोगों की समृद्धि, लोगों की जीवन की जो स्तर में, उसमें सुधार नहीं हो। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा काम हमारा एक्सप्रेसवे, हाईवेज और इसके माध्यम से भारत सरकार कर रही है, और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी इसके ऊपर काफी सारा, आज महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमाम सारे जगह इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब आपका जहां तक रेल का सवाल है, रेलवे देखिए कि पिछले 10-12 साल में टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उनका एक संदेश है कि पहले चीजों को स्केल अप करिए, पहले चीजों को नई टेक्नोलॉजी को लाइए, फिर स्पीड अप करिए, और फिर स्केल, बड़े ऐसे स्केल जो कि संभव ना हो, तो स्किल, स्पीड एंड देन स्केल। तो आज देखिए कि जिस प्रकार से रेलवे का ट्रैक हमारा लगभग 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया, रेलवे जो नए ट्रैक बने हैं, पिछले जो अगर हम देख रहे थे, जो एक मैं डाटा देख रहा था, जो पिछले 10 साल में बना थे उससे दूने से ज्यादा जो पिछले 10 साल में बना, यानी उस रफ्तार से बना, और उसमें रेल में वंदे भारत से जो चला, वंदे भारत से इतना सारा सारा जो जुड़ रहा है, बहुत हाई स्पीड। और सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है। इसकी जो वंदे भारत की जो ट्रेन है, वो हम विदेशों से, पहले तुम इस तरह की चीजें विदेशों से लाते थे, कितना हमारा पैसा खर्च होता था, कितना हमारा फॉरेन एक्सचेंज लगता था, आज सब कुछ चीजें हमारे देश बन रही है। न केवल हमारे जो कोचेज बन रहे हैं, बल्कि हमारी पूरी टेक्नोलॉजी, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, या सारा का सारा चीज हमारे यहाँ पे बन रहा है। अब एक तरफ तो हमने स्पीड लाई, दूसरे तरफ हमारे देश में इतने सारे लोग हैं जगह जगह अपनी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अफोर्डेबल ट्रेन, अफोर्डेबल, कंफर्टेबल, स्पीड भी और सारी फैसिलिटीज भी, सिक्योरिटी के लिए जो कवच ऑटोमेटिक सिस्टम, जो हमारा जो कवच का जो सिस्टम है, आज तेजी से कवच का पूरा पूरा प्रसार हो रहा है
1: जी।
0: अब ट्रेन का तो एक तो डिस्टेंस हो रहा है, अगर आप देखेंगे शहरों के भीतर एक जो नेटवर्क होता है मेट्रो का, अब मेट्रो नेटवर्क हम 2014 में तकरीबन 5 शहर में 250 किलोमीटर भी नहीं था, आज करीब 1150 किलोमीटर मेट्रो हमारे 26 शहरों में चल रहा है, और जो काम चल रहा अनदर 100,000 किलोमीटर पर काम चल रहा है, और लगभग हम पूरी तरह से इसमें आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मैं तो उस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रहा हूँ, जिस प्रकार से आज हम मेट्रो कोचेज जो ले रहे हैं, सारे के सारे हिंदुस्तान में बन रहे हैं, हम विदेशों में अपने कोचेज, यहाँ के हिंदुस्तान के बने कोचेज विदेशों में, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब कोई हमारे पास एक ट्वीट करता था, ब्रिस्बेन से ट्वीट कर रहा है, कोई जोहान्सबर्ग से कर रहा है, कोई कनाडा के शहर से कर रहा है, कि हम आज मेड इन इंडिया कोच में बैठे हुए, तो हम पूरी टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर कर रहे हैं। और जो पहला जो हमारा एक, पहले तो हम ये मेट्रो को लेकर के इतने सारे शहरों के भीतर कनेक्टिविटी किए, अब शहरों से शहरों के बीच में
1: जी,
0: जैसे दिल्ली से मेरठ के बीच में जो हमारा नमो भारत, अब 82-83 किलोमीटर की दूरी करीब 15 स्टेशनों पर रुकते हुए आप केवल 55 मिनट में कर लेते, कहां 3 घंटे पहले लगते थे, 55 मिनट में कर सकते हैं, और इससे उसका क्या फायदा हुआ, आज उसके बीच तमाम सारे ग्रोथ सेंटर बनने चालू हो गए, तमाम सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी पूरा का पूरा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, वो सोच कनेक्टिविटी तो एक बेसिस है, लेकिन कनेक्टिविटी के आधार पर आर्थिक उन्नयन
1: जी,
0: कैसे लोगों की, हम अपने बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग की, लोगों की अदर एक्टिविटी को बढ़ा करके कैसे लोगों का जीवन का स्तर को सुधार करें।
1: बिल्कुल ठीक बात है। रेल की चर्चा को थोड़ा रवि जी आपकी तरफ मोड़ते हैं, और दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज की बात करें, या देश के पहले केबल स्टेड अंजी खड ब्रिज, और भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण की बात करें, यह सिविल इंजीनियरिंग की उपलब्धि तो है ही, साथ ही यह सामरिक और भौगोलिक दुर्गमताओं पर भारत की तकनीकी विजय है। आपसे समझना चाहते हैं कि ऐसे कठिन प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग विल पार और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की गति को किस तरह साधा गया, और इसे देश में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला।
2: देखिए आनंद जी, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी योजना परियोजना हो, इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो वो पूरी नहीं हो सकती। अभी दुर्गा शंकर जी ने बताया कि दैनिक यात्रियों की रोजमर्रा की जीवन में मेट्रो रेल बहुत उपयोगी है, शहर टू शहर, छोटे शहर से छोटे शहर तक रैपिड रेल यानी नमो भारत जो सेवा शुरू की गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और देश के दुरूह और दुर्गम क्षेत्रों में भी रेलवे ने, रेलवे के इंजीनियरों ने बहुत कमाल दिखाए हैं। आपने चिनाब रेलवे ब्रिज का उल्लेख किया, पहले कितने लंबी यात्रा होती होगी जब ये रेलवे ब्रिज नहीं रहा होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर है, और ये एफिल टावर जो पेरिस में है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है, लागत

0: इसमें आई 1486 करोड़ रुपए की, और इसकी मजबूती इतनी है कि ये 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने वाली हवाओं और रिक्टर स्केल पर अगर कोई 8 की तीव्रता तक भूकंप आता है उसको भी ये सहज ही झेल सकता है। इसके अलावा आपने अंजी खड्ड ब्रिज का उल्लेख किया, इसकी विशेषता ये है कि ये भी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर बना भारत का पहला केबल के सहारे लटका हुआ पुल है। कटरा और रियासी को ये पुल आपस में जोड़ता है। ये उधमपुर श्रीनगर बारापुला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी लंबाई 725.5 मीटर है, ऊंचाई नदी तल से 331 मीटर है। इसमें 96 केबलों का इस्तेमाल किया गया है और मुख्य स्तंभ नींव से 193 मीटर ऊंचा है, और इसकी क्षमता है कि 213 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको ये झेल सकता है। वो इस रफ्तार से चलने वाली हवाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इस पर रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकती हैं। एक और दक्षिण भारत के ऐसे ही अद्भुत पुल की बात कर लें, ये है पाम्बन ब्रिज जो तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसको नया स्वरूप दिया गया, नया बनाया गया। जो अब नया पुल बना है ये पाम्बन ब्रिज तमिलनाडु में, वो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। ये आधुनिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक और ऑटोमेटेड सिस्टम पर काम करता है। डबल ट्रैक वाला ये ब्रिज, इस पर ट्रेनें 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकती हैं। जब आपने बताया, उल्लेख किया कि जब कोई जहाज निकलना होता है पुल के रास्ते से, तो ये अद्भुत तकनीकी क्षमता है इस पुल की कि 5 मिनट के अंदर पूरा पुल दो हिस्सों में विभाजित होकर ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो ऊंचे समुद्री जहाज हैं वो इसके रास्ते से निकल जाते हैं और फिर अगले 5 मिनट में इसको वापस पुल की शेप में लाया जा सकता है।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में प्रस्तुत है विशेष अंक बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर नीति को दिशा देने वाले पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार रवि पाराशर जी। रेलवे के बाद अगर एयरपोर्ट की चर्चा करें मिश्रा जी, तो और हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि जो धौलेरा एक्सप्रेसवे बना या जो धौलेरा एयरपोर्ट बना, उसको भारत के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन के नजरिए से विकसित किया गया। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कुछ समय पहले तक, अगर 2014 से पहले की बात करें, तो सरकारी लाल फीताशाही बहुत ज्यादा चरम पर थी, तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स किस तरीके से किए गए कि ये बड़े प्रोजेक्ट सफल हुए? साथ ही साथ ये जो धौलेरा एयरपोर्ट या फिर एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी, इससे भारत का वैश्विक स्तर पर कितना समृद्ध प्रभाव पड़ा? और जो हम निवेश की बात करते हैं कि विदेश से निवेश आए, उसमें एयरपोर्ट्स ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई?
2: बिल्कुल ठीक आपने कहा, धौलेरा एयरपोर्ट जो अभी बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है
1: जी।
2: धौलेरा एक ऐतिहासिक स्थान है, लोथल का आपने नाम सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है जुड़ा हुआ वो स्थान है। मुझे वहां भी जाने का सौभाग्य मिला। वहां किसी समय इतना बड़ा सी पोर्ट हुआ करता था, इतनी सारी समृद्धि उस जमाने में, बहुत सारे बीट्स के काम दुनिया भर से वहाँ का संबंध हुआ करते थे। आज वहाँ पहुँचना भी बड़ा मुश्किल था। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो वहाँ पे जाने के लिए अहमदाबाद से डायरेक्ट वहाँ के सड़क धौलेरा के लिए बन गई है,
1: धौलेरा एक्सप्रेसवे।
2: अभी हाल में जो कैबिनेट के डिसीजन के साथ एक अप्रूवल किया गया, एक वहाँ पे भी रेल लिंक भी, फास्ट रेल लिंक भी जो है अहमदाबाद से डायरेक्टली वहाँ धौलेरा से जोड़ने के लिए एक रेल लिंक भी सैंक्शन कर दी, और वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। अब धौलेरा जो है एक बहुत बड़ा स्पेशल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट सेंटर, जहाँ पे आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है, तमाम सारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मतलब कि जुड़ने का मतलब बहुत सारी किस्म की इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है
1: जी।
2: आज एक वो नया स्वरूप लेकर के आगे बढ़ रहा, और केवल धौलेरा की कहानी नहीं है बल्कि उसके जैसे आज देश में तमाम सारे जो नए नए एयरपोर्ट्स बने, जो 174 मैंने आपने बताया कि 64 से लेकर के 170-75-74 से बढ़ करके 160-170 के आसपास आज एयरपोर्ट बन गए हैं और सारे चालू हो गए हैं। उन एयरपोर्ट्स पे अब जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट है
1: जी,
2: या गुवाहाटी का जो नया एयरपोर्ट बना है
1: जी,
2: जेवर का जो नया एयरपोर्ट बना है, आपका चित्तूर का, वहाँ का साउथ का जो एयरपोर्ट बना, जो गोवा में एक अल्टरनेटिव एयरपोर्ट बना, मोपा का जो एयरपोर्ट बना
1: जी,
2: कैंपागोड़ा, हाँ, मैंने इतने सारे देश में जो एयरपोर्ट्स बने, एयरपोर्ट से हमने दुनिया से कनेक्टिविटी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी हैं, तो दुनिया से अपने आप को जोड़ा हमने, लॉजिस्टिक्स को बहुत सारा, इससे हमारा काफी सारा जो है इससे जो व्यापार होगा, व्यापार हमारे इसमें काम आएगा, और एक आम आदमी के लिए जिस प्रकार का जो एक एयर फेयर हो गया है आम आदमी को भी, क्योंकि समय बचाना उसको, उसके लिए भी उतना मत पड़े। तो वो जो आपने जो बात कही, एक हवाई चप्पल में चलने वाला आदमी हवाई सफर कर रहा है, एक देश का एक नई तस्वीर उभर करके सामने आई है।
1: रवि जी, अगर इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं, बतौर पत्रकार आप कितना बड़ा बदलाव देखते हैं? 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स इस देश में हैं और हम उड़ान योजना की बात कर रहे हैं, और अब उड़ान 2.0 की भी बात हो रही है जिसमें और सुविधाएं आम नागरिकों को मिले। हमने ये भी देखा कि सरकार ने एयरपोर्ट्स पर मिलने वाली सुविधाओं को भी आम नागरिक के ध्यान में रखकर बहुत बदलाव किए हैं, चाहे वो वहां पर फूड आइटम्स के प्राइस को कम करना हो या फिर पैसेंजर्स के लिए लाउंज की सुविधा उपलब्ध कराना हो। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर कितना बदलाव देखते हैं
0: आप? आनंद जी, जमीनी स्तर पर एक पत्रकार के तौर पर जो मेरे अनुभव हैं, मेरा करियर 1988-89 में पत्रकार के तौर पर शुरू हुआ था, और उस समय मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि जो मेरा वेतन था उससे मैं हवाई यात्रा कर सकूंगा। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है और जो मेरी स्थिति है, आज मैं जब चाहूं समय बचाने के लिए हवाई यात्रा मेरी सीमा में, मेरी जेब की सीमा में। तो ये फर्क बहुत धीरे धीरे आया है और पिछले 10-12 साल से बोहोत तेजी से हम देख रहे हैं। आपने बताया कि 2014 में हवाई अड्डे केवल 74 थे, अभी 165 हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, पहले क्या होता था कि आप घर के पास हवाई यात्रा करने के लिए भी आपको सड़क से बहुत लंबी चौड़ी यात्राएं करनी पड़ती थी, जो स्थिति आज नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया गया, 15 जून 2026 से यहां से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। हिंडन एयरपोर्ट से छोटे छोटे शहरों की हवाई कनेक्टिविटी बनाई गई है। तो दिल्ली NCR के जो लोग हैं उनके लिए, और दूर दराज विदेश से आने वाले और दूर दराज के क्षेत्रों से राजधानी NCR क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए हवाई यात्रा की कितनी सुगमता हो गई है, कितनी सुलभता हो गई है, ये आज देखने को हमें मिलता है। और हवाई अड्डों, जो पुराने हवाई अड्डे थे, इस सरकार ने केवल उनकी क्षमता ही नहीं बढ़ाई, उनकी साज सज्जा, उन पर जैसे आपने कहा कि खान पान की सुविधाएं, उनका जो लुक सत्य और भारतीय संस्कारों से जीवंत रहे, ऐसे प्रयास भी किए। हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए नए टर्मिनल भवन बनाए गए हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर पिछले 12 साल के अनुभव में ये कह सकता हूं कि जो लोग पहले हवाई यात्रा की कल्पना नहीं कर सकते थे अपने बजट के हिसाब से, वो आज हवाई यात्रा की कल्पना, अगर उन्हें कहीं अपेक्षाकृत जल्दी पहुंचना है, तो कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। कार्यक्रम में अब चर्चा करते हैं सागरमाला की। श्रोताओं, सागरमाला के 5 प्रमुख पिलर्स हैं: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोस्टल शिपिंग। लेकिन मिश्रा जी, जो मेरा आपसे सवाल है वो वाटर मेट्रो को लेकर है। 2026 में, यानी इसी वर्ष, नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी का ड्राफ्ट मसौदा पेश किया गया। सवाल ये है, और बहुत सारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं, कि जो वाटर मेट्रो की पहल है, एक तो उससे भूमि अधिग्रहण की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, उसमें भी हम कई सारे पेंच देखते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना वाइबल है भारत जैसे देश में? क्या इसको एक शहर से दूसरे शहर तक जोड़ा जा सकता है? क्या है इसकी वर्तमान स्थिति और वास्तविक धरातल पर कब हम इसे देखने वाले?
2: बहुत अच्छी बात कही आप आनंद जी आपने। ऐसा है, जैसे मेट्रो आया, मेट्रो का क्या मकसद है कि शहर में आप हर किलोमीटर पे आपके स्टेशन हो, 800 मीटर से लेकर के 1000 बाज़ है, कि कहीं से कहीं पहुंचना तो आप जो है 10-12 मिनट में आप एक मेट्रो स्टेशन में पहुंच सकते हैं
0: जी।
2: उससे पूरा शहर, आज दिल्ली में 400 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो का नेटवर्क बना हुआ है, तो दिल्ली में कितना आसान हो गया, ट्रेवल कितना आसान हो गया है, और भी बढ़ रहा है। अभी नए उसका जो फेज 5 का, उसके मेट्रो का काम चल रहा है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे शहर हमारे देश में है जहाँ पे या तो समुद्र या वहाँ पे पानी का नेटवर्क बना हुआ है
0: जी।
2: अब वहाँ पे पहले क्या होता था कि पुराने जमाने वाली जो बड़ी बड़ी बोट चलती थी और वो आराम से 3-4 किलोमीटर की रफ्तार से चली करती थी, आपको घंटों लग जाता था, कोई सुविधा नहीं होती थी धूप में और उसमें आप परेशान होते थे
0: जी।
2: मेट्रो ने क्या लाया? मेट्रो आपको कंफर्ट लाया, कनेक्टिविटी लाया, आपको जो पंक्चुअलिटी लाया
0: जी,
2: आपकी चीज़ों को आसान कर दिया, उसके पूरी तरह से जा सकते हैं। पहले जो इन शहरों में क्या होता था, कोची शहर में, क्योंकि मैं उस समय भारत सरकार का सेक्रेटरी था इसी मिनिस्ट्री का, और हमारी उसमें हमें सब सारा चीज डेवलपमेंट हो रहा था, तो आप कोची में अगर आप देखें तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दूरी तो मुश्किल से 2 किलोमीटर की होगी, 1.5 किलोमीटर की होगी, लेकिन आपको 2500-3000 किलोमीटर जाना पड़ता था, उसका समुद्र का जो अंदर गया उसे 30 किलोमीटर जाकर के आपको घंटों लग जाते थे
0: जी।
2: अगर इसको ऐसा आपको

0: महसूस हो जाए कि जो वहाँ पे स्टेशन बना हुआ वो स्टेशन मेट्रो स्टेशन टाइप का, एयर कंडीशन है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, सारी की सारी सुविधाएं हैं
1: जी
0: और आपको कंफर्ट है, अगर आप कुछ खाना पीना चाहे कुछ खरीदना चाहे सारी की सारी फैसिलिटीज है
1: जी।
0: ऐसा स्टेशन अगर आपको बन जाए तो आप कहीं से कहीं आप कनेक्ट कर सकते हैं
1: जी।
0: अब तो काफी कुछ चीजें हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं। उस समय इस चीज को कोची में डेवलपमेंट शुरू किया गया और आज मुझे खुशी है कि वहां पे 20 स्टेशन में इस प्रकार के कंफर्टेबल बोर्ड्स और रेल मतलब स्टेशन वगैरह तमाम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। अब ये एक हमारे लिए नया अवसर पैदा हो गया और नया अवसर ये पैदा हो गया कि इसके हिसाब से अब आप हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हमारे देश में करीब 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और उसमें कई सारे जगह पर इस प्रकार की चीजें हैं, तो अगर जहां पे है तो वहां पे ऐसे 18 शहर चुने गए हैं जहां पे इस प्रकार की वाटर मेट्रो की सुविधा हो सकती है। इसी में मैं आपको एक और चीज बताऊं कि केवल वाटर मेट्रो के अलावा अब एक नई चीज पहले बार देश में होने जा रहा है, उसमें अगेन मैं एज ए सचिव मुझे मौका मिला काम करने का। भारत में पहले बार हमको ट्रांसपोर्ट को एयर के माध्यम से यानी रोपवे, अभी तक हमारे देश में रोपवे का उपयोग होता था, वो कहीं कोई धार्मिक स्थान है वहां पे जाने के लिए लोगों को केवल टूरिस्ट पर्पज से, बकायदे आप अपना सामान लेकर के कहीं से कहीं आप जा सकते हो। और बनारस में बहुत जल्दी मैं आशा करता हूँ कि ये जो रोपवे जो बनेगा, ऐसे शहरों में बहुत कंजेशन आज लैटिन अमेरिका के कई सारे शहरों में, यूरोप के कई सारे शहरों में रोपवे का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट के तौर पर
1: जी।
0: ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया चीज और पहले बार उनके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहला हमारा देश का जो ट्रांसपोर्ट रोपवे, बहुत जल्दी मैं आशा करता हूँ कि शुरू होने जा रहा है।
1: कार्यक्रम में समय कम है, एक एक सवाल आप दोनों से बहुत संक्षेप में। रवि जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, चाहे वो लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या उत्तर पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्र हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है कि वहां भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। किस तरह देखते हैं इस बदलाव को?
2: आनंद जी देखिए, पिछली सरकारों की जो नीति थी उस नीति को बिल्कुल मोदी सरकार ने उलट दिया है। मुझे याद है कि 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने पार्लियामेंट में बताया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास इसलिए नहीं करती है केंद्र सरकार कि कहीं जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें और उसका फायदा हमारे दुश्मन न उठा लें, इसलिए जैसा है दूभर को दूभर बना रहने दीजिए। लेकिन 2014 में अगले साल मोदी सरकार केंद्र में बनते ही ये नीति बिल्कुल आमूल चूल बदल दी गई और अब स्थिति यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वहां सुरंगों का विकास, अटल टनल और बहुत सारी सुरंगें बनाई जा रही हैं जो आपातकाल में बिगड़े हुए मौसम में सेना के आवागमन को बहुत सुगम बनाती हैं। बहुत सारे बंकर सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को जो बसे हुए हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे स्थानीय स्तर पर काम किए जा रहे हैं। सड़कें बहुत मजबूत और पक्की बनाई जा रही हैं और इसके अलावा जो हमारे रोड कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, हम वहां भी देखते हैं कि उनको इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि हमारे हवाई जो हमले करने में सक्षम जो विमान है, लड़ाकू विमान, उन पर टच लैंडिंग कर चुके हैं यानी उतर सकें अगर ऐसी स्थिति हो तो। तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के मामले में मोदी सरकार बहुत प्राथमिकता दे रही है और पिछली सरकारों के तमाम नीतियों के उलट ये काम अब वहां हो रहा है।
1: मिश्रा जी, कार्यक्रम के समापन में बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की गति है इस देश में, उससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कितना हमें आसानी होने वाली है।
0: मैं इसके पहले एक और चीज जोड़ना चाहूंगा जो फ्रीट कॉरिडोर, क्योंकि हमने अभी तक मोबिलिटी जो है पैसेंजर मोबिलिटी की ज्यादा बात की, जो हमारा डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न बनकर के लगभग तैयार हुआ, 2,800 किलोमीटर से ज्यादा है। इससे पूरा का पूरा एक हमारा फ्रीट ईस्ट से लेकर वेस्ट, वेस्ट से लेकर के ये सारा इतना बड़ा ये फैसिलिटी बन गई है। और नया इसके बाद फिर से अभी सूरत से लेकर के दुला वो भी प्रारंभ किया गया, उसको शुरुआत का अनाउंस किया गया। तो देश में हमारा लॉजिस्टिक का मूवमेंट इतना आसान किया गया जिससे लॉजिस्टिक का कॉस्ट बहुत हमारा कम हो जाएगा। देखिए, कोई भी देश आगे बढ़ता है तब जबकि उसके लिए ऐसा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे कि लोगों का मूवमेंट आसान हो जाए, गुड्स का मूवमेंट आसान हो जाए, सारा का सारा प्रोसेसेस हमारे आसान हो जाए और वो सब कुछ बन करके तैयार है या तैयार होता हुआ दिख रहा है। देखिए, हम बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि 100% हम वहाँ पहुंच चुके हैं, तैयार होता हुआ दिख रहा है और ये सारा का सारा जो धरातल तैयार की जा रहा है कि ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में भारत को विकसित बनाने का, वो हम विकसित होकर के रहेंगे। क्योंकि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक तरफ हमारा मेक इन इंडिया हो रहा है, मेक फॉर द वर्ल्ड हो रहा है, एक तरफ हम जितनी सारी नई टेक्नोलॉजीज है, आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे ग्रीन एनर्जी

0: जी हो, हर तरह की हर चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम सब चीजों को बिल्कुल आसान कर दे, मैंने ये लुब्रिकेशन कहेंगे कि इकोनॉमी को लुब्रिकेशन लुब्रिकेट कर रहा है। एक और भी बड़ा इसका इंपॉर्टेंट पहलू है, ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना बड़े लेवल पे रोजगार क्रिएट हो रहा है
1: जी,
0: और उस रोजगार के क्रिएट होने से लोगों की इनकम बढ़ रही है
1: जी।
0: तो एक इनकम तो इकोनॉमी के ग्रोथ से हो रहा है, दूसरा इसके वजह से तमाम सारे हमारे जो नौजवान है, जो हमारे युवा ज्योति, जो नए आजकल के बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, उनके लिए इतना बड़ा रोजगार का साधन भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनको नए साधन क्रिएट कर रहा है। ये हमारे देश की बदलती हुई तस्वीर है। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आपका जन सेवा से देश सेवा की बात है, वो इस प्रकार की चीज करके आज देश को हमारे एक नए लेवल पे, एक नए भारत को, आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
2: बिल्कुल, जब बुनियादी ढांचे के पहिए तेजी से घूमते हैं तो पूरे देश की प्रगति को नई रफ्तार मिलती है। आज भारत सिर्फ रास्ते नहीं बना रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के समृद्ध भविष्य की नींव रख रहा है। डॉक्टर मिश्रा, आपका, रवि पाराशर आपका, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद आनंद जी।
2: ये थी बुनियादी ढांचे की वो नई रफ्तार जो आज भारत के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ रही है और देश को आत्मनिर्भरता के साथ साथ समृद्धि के मार्ग पर आगे भी बढ़ा रही है। जनसेवा से देश सेवा की इस विशेष श्रृंखला के आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 23वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा बुनियादी ढांचे की नई रफ्तार। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और राजनीतिक विश्लेषक रवि पाराशर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: जन सेवा से देश सेवा, अभी आपने ये विशेष कार्यक्रम सुना। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है छोटे से अंतराल का।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नविपिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजी नगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल

और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड,

0: प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन परम कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि परम कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परम H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। परम आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance की गैर अमेरिकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: There are three parties that have got licenses.
4: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
5: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
3: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें

0: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
2: सेमीकंडक्टर जर्नी,
3: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
2: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
1: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
5: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
4: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9।

0: सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में रेजी नगर और नंदीग्राम असेंबली हलकों में जिमनी इंतखाबात जीत लिए हैं। तमिलनाडु में हुक्मरान टीवीके ने मधुरंतकम और धर्मापुरम सीटों के जिमनी इंतखाबात में जीत हासिल की है। पुडुचेरी में कांग्रेस ने तट्टन चावड़ी असेंबली हलका बरकरार रखा है। बीजेपी ने आसाम की नगांव लोकसभा सीट भी जीत ली है। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर एहतजाज की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। सिक्योरिटी के पेश नजर दिल्ली मेट्रो के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के दरमियान नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली तमाम मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके इब्तदाई स्टेशनों से ही मनसूख कर दिया गया है। भारत ने जोर दिया है कि मुस्तकिल मुलाजिमत की तस्दीक के प्रोग्राम PERM के सिलसिले में अमरीका की जानिब से ऐलान करदे इकदाम दोनों मुल्कों के मुश्तरक मकासद को आगे बढ़ाने में माविन नहीं है। भारत नजाद जनूबी अफ्रीका के कानूनदान नवीनतम नवी पिल्ले को अमन और बैन अल-अक़वामी कानून के फरोग के लिए उनकी खिदमात के बदले नोबेल इनाम से नवाजा गया। और क्रिकेट में रांची में दूसरे T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 250 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। बीजेपी ने मगरबी बंगाल के मशरकी मिदनापुर जिले की नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद जिले की रेजी नगर दोनों असेंबली सीटों के जिमनी इंतखाबात में बड़ी जीत दर्ज की है। नंदीग्राम में बीजेपी की उम्मीदवार हसी रानी रथ ने अपने करीबी कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को शिकस्त दी। तमिलनाडु में बरसर इकतदार टीवी के पार्टी ने मधुरंतकम और धरापुरम असेंबली हलकों के जिमनी इंतखाबात में जीत दर्ज की है। पुडुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक आनंद ने आसान जीत दर्ज की। ये सीट पुडुचेरी के वजीर आला N रंगासामी के जरिए खाली की गई थी। आसाम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए जिमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने जीत दर्ज की है। शर्मा ने AIUDF के सरबरा बदरुद्दीन अजमल को 1,40,000 वोटों से बआसानी शिकस्त दी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आसाम की नगांव और मगरबी बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर पार्लियामानी सीटों के जिमनी इंतखाबात के नतायज एक बार फिर बीजेपी NDA की बेहतरीन हुक्मरानी में आवाम के भरोसे की अक्कासी करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और पार्टी कारकुनों की सख्त मेहनत की सताइश की। वजीर आजम ने पुडुचेरी की थट्टन चावड़ी सीट पर जीत हासिल करने पर NDA के इत्तेहादी AINRC को भी मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि पार्टी को और तकवीत देंगे क्योंकि ये लोगों की बहबूद और उनके रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की तकमील के लिए अंतक काम कर रही है। वजीर दाखला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने आज कहा कि मगरबी बंगाल आसाम और पुडुचेरी के जिमनी इंतखाबात और हाल ही में मुनक़द हुए राजस्थान और त्रिपुरा के मुकामी इंतखाबात में बीजेपी की जीत इस बात की अक्कासी करती है कि आवाम ने INDIA इत्तेहाद को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर CJP की जानिब से मुजव्वजा एहतजाजी मुजाहरे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। आज नई दिल्ली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरे या दीगर प्रोग्राम मुनाकिद करने की इजाज़त हासिल करने के लिए कम अज़ कम 10 दिन पहले दरख्वास्त जमा कराना ज़रूरी है। मोहतरमा प्रसाद ने कहा कि इससे कबल CJP को जंतर मंतर पर एहतजाज करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन CJP ने मुकर्रा रहनुमा खतूत और अपनी जानिब से दी गई यकीन दहानियों पर अमल नहीं किया था। ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि नई दिल्ली के इलाके में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल, अवाम की सिक्योरिटी और ट्रैफिक जवाबित को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है।
1: We have received an application from Saurav Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
0: मोहतरमा प्रसाद ने मजीद कहा कि इलाके में फिलहाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 के तहत इम्तनाई अहकाम नाफिज हैं। ज्वाइंट कमिश्नर ने खबरदार किया कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुनासिब कानूनी कार्रवाई करेगी। सिक्योरिटी वजूहत के पेश नज़र आज रात 9 बजे से कल अगले अहकाम जारी होने तक 57 मेट्रो स्टेशनों पर दाखिले और बाहर निकलने की सहूलत बंद है।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोतो, खेल का मैदान केवल जीत और हार का मैदान नहीं होता, बल्कि यह जुनून, संघर्ष, अनुशासन, मेहनत और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी होता है। जब हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लेकर उतरते हैं तो उनके साथ करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें और भावनाएं भी जुड़ी होती है। हाल ही में एशियन गेम्स का समापन हुआ। इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हम सभी को गौरवान्वित किया। एथलेटिक्स से लेकर निशानेबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हॉकी, क्रिकेट और कई अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

आज खेल जगत में हम लेकर आए हैं वार्ता जिसका विषय है एशियन गेम्स में भारत की उपलब्धियां एवं खिलाड़ियों का प्रदर्शन। हम जानेंगे कि एशियाई खेलों में भारत का सफर कैसा रहा है, किन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की और हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में पिछले वर्षों में किस तरह का बदलाव और निखार आया। साथ ही बात होगी उन खिलाड़ियों की जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से न केवल पदक जीते बल्कि देश के लाखों युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित भी किया। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं यह वार्ता जिसका विषय है एशियन गेम्स में भारत की उपलब्धियां एवं खिलाड़ियों का प्रदर्शन। वार्ताकार है नवेद इशरत।

श्रोताओं नमस्कार। एशियंस गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर मध्य संपन्न हुआ। 4 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन में 469 गोल्ड दाव पर थे। 45 देशों के 11,000 एथलीट 43 खेलों में उतरे। भारत के 496 खिलाड़ी, 265 पुरुष और 231 महिलाएं एथलीट ने 36 खेलों में किस्मत आजमाई। ये दल 2022 में चीन के हांगझोंग में हुए एशियन गेम्स से छोटा था, तब 661 भारतीय खिलाड़ी उतरे थे। पिछली बार भारत ने 28 गोल्ड समेत रिकॉर्ड 126 पदक जीते थे, तब इन खेलों में पहली बार भारत ने 100 का आंकड़ा पार किया था। एशियन गेम्स पर अगर नज़र डालें तो भारत ने 85 पदक जीते, जिसमें 21 स्वर्ण, 22 रजत और 37 कांस्य के पदक शामिल हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बनाकर चैंपियन बना भारत। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के तूफानी अंदाज में अर्धशतकों की मदद से भारत ने हसन नवाज की आक्रामक पारी के बावजूद रोमांचक फाइनल में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 19 रन से हराकर एशियाई खेलों के पुरुष क्रिकेट में अपना स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया। इस जीत के साथ ही भारत ने अलग अलग बड़े टूर्नामेंटों के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 4-3 की बढ़त बना ली है। अभिषेक ने 28 गेंदों पर 61 और तिलक वर्मा ने आखिरी ओवर में 22 गेंदों पर नाबाद 51 रन की पारी खेली। उन्हें शिवम दुबे का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 15 गेंदों पर 27 रन बनाए। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 211 रन का बड़ा स्कोर बनाया। ये T20 में भारत का पाकिस्तान खिलाफ सबसे बड़ा टोटल था। भारत ने 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। 2012 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 192 रन बनाए थे। पाकिस्तान की तरफ से अहमद दनियाल और अराफात मिन्हास ने 2-2 विकेट लिए। पाकिस्तान ख़राब शुरुआत के बावजूद हसन नवाज की 91 गेंदों पर 96 रन की पारी से मुकाबले में बना रहा, लेकिन आखिर में वे 6 विकेट पर 152 रन तक ही पहुंच पाया। नवाज जब 4 रन पर थे तब वैभव सूर्यवंशी ने उनका कैच छोड़ दिया था। भारत की तरफ से अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदरम और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए। महिला क्रिकेट की अगर बात करें तो महिला क्रिकेट में भी भारत ने गोल्ड अपने नाम किया। एशिया खेलों में 14वें दिन भारत

शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य पदक जीतकर अंक तालिका में चौथे स्थान पर आ गया। क्रिकेट और हॉकी टीम ने उम्मीद के मुताबिक शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन तीरंदाज कुमकुम मोहन, गोल्फर प्रणवी और पहलवान अमन सहरवन ने अप्रत्याशित रूप से एहसास रचते हुए भारत के लिए अंत में आई स्वर्णिम लहर में अहम योगदान दिया। हालांकि भारत पिछले चरण में जीते गए 106 पदकों की बराबरी या उससे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सका। अंत में भारत ने 21 स्वर्ण 27 रजत व 37 कांस्य के पदक हासिल किए। प्रणवी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गईं, जिन्होंने आखिरी दौर में एक स्ट्रोक की बढ़त बरकरार रखकर टीम को भी रजत दिलाया। प्रणवी, अदिति, अशोक और दीक्षा डागर की टीम ने रजत पदक जीता। भारत ने रोला मलेशिया को भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराकर पुरुष हॉकी स्पर्धा का स्वर्ण बरकरार रखा। 2028 ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इस इवेंट में मलेशिया को सिल्वर से संतोष करना पड़ा, वहीं पाकिस्तान को कांसा मिला। इससे एक दिन पहले महिला टीम ने गत चैंपियन और ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 1-9 से हराकर 44 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता और ओलंपिक का टिकट कटाया। 17 साल की कुमकुम मोहन ने कोरिया की ओयोजिन को शूट आउट में हराकर व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बन गईं। कुमकुम ने महिला रिकवर टीम का स्वर्ण भी अंकिता भगत और कीर्ति शर्मा के साथ जीता था। इसके बाद धीरज बुमुम देवरा के साथ मिश्रित जोड़ी का जीता। वहीं रिकवर तीरंदाज नीरज चौहान ने हम वतन धीरज को हराकर व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य का पदक जीता। सेलिंग में भोपाल की हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा ने जीता ब्रॉन्ज। भोपाल की हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। हर्षिता 2018 जकार्ता में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। उनके मेडल जीतने पर भोपाल में उनके घर पर जोरदार जश्न मनाया गया। इधर चचेरे भाइयों की जोड़ी मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबल ने सिल्वर जीता। रेसलिंग में 64 साल बाद ग्रीको रोमन ने भारत को सिल्वर। भारत के पहलवान नितेश सिवाच ने पुरुष 57 किलोग्राम ग्रीको रोमन में सिल्वर मेडल जीता। ये भारत का 64 साल बाद ग्रीको रोमन में पहला सिल्वर है। उन्हें फाइनल में जापान की यूरी नाकाजातो से 0-4 से हार मिली। वहीं मनीषी अहलावत महिला 62 किलोग्राम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल प्ले ऑफ हार गई। भारत ने एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 211-6 का स्कोर खड़ा किया। यह भारत पाकिस्तान के आपसी T20 मैचों में सबसे बड़ा स्कोर था। ओपनर अभिषेक शर्मा महज 28 गेंदों में 61 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने डेथ ओवर्स में 22 गेंदों पर 51 रन जोड़े। जवाब में पाकिस्तानी टीम हसन नवाज की 91 गेंदों पर 96 रन की संघर्षपूर्ण पारी के बावजूद 6 विकेट पर 152 रन ही बना सका। भारत ने अंतिम 3 ओवर में 52 रन बचाए। भारतीय गेंदबाजों में अक्षर पटेल, वाशिंगटन और शिवम दुबे ने 2-2 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही T20 मुकाबलों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बढ़त 15-3 हो गई है। भारतीय T20 टीम एक साल में 3 बड़े खिताब जीत चुकी है। इसी टीम ने पिछले साल सितंबर में एशिया कप और मार्च में टी वर्ल्ड कप जीता था। मौजूदा ओलंपिक कांस्य का पदक विजेता भारत ने मलेशिया को 5-1 से करारी शिकस्त देकर एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी का अपना स्वर्ण बरकरार रखा और इस जीत से 2028 लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। 8 बार के ओलंपिक चैंपियन भारत ने देश की हॉकी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखते हुए एशियाई खेलों का अपना 5वां स्वर्ण पदक भी जीता। टीम ने पहली बार लगातार दूसरी बार स्वर्ण हासिल किया। एशियाई खेलों में ये भारतीय हॉकी के लिए दोहरी खुशी रही, क्योंकि महिला टीम ने मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता और गत चैंपियन चीन को 1-0 से हराकर 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। मलेशिया ने रजत पदक हासिल किया, जबकि पाकिस्तान ने दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर कांस्य का पदक जीता। भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक शुरुआत की और पहले क्वार्टर में ज़्यादातर खेल मलेशिया हिस्से में रहा। भारत ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह 11वें 97वें मिनट और युवराज सिंह 23वें मिनट के जरिए 3 पेनल्टी

कॉर्नर को गोल में बदला, जबकि उप कप्तान हरदीप सिंह ने 42वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया और शिलानंद लाकड़ा ने 54वें मिनट में मैदानी गोल करके औपचारिकताएँ पूरी की। मलेशिया का एकमात्र गोल शेलो सिल्वरिस ने 14 मिनट में किया। अब अगर टेबल पर नज़र डाली जाए तो भारत ने इन खेलों में चौथा स्थान प्राप्त किया। उसको तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में 3, बॉक्सिंग में 3, कुश्ती में 2, क्रिकेट में 2, हॉकी में 2, कबड्डी में 2, एथलेटिक्स में 1 और गोल्फ में भी 1 मेडल हासिल किया। इस प्रकार भारत का इन खेलों में बढ़िया प्रदर्शन रहा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। ख़ासतौर से अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो महिला और पुरुष दोनों ने ही इन खेलों के अंदर शानदार प्रदर्शन किया और 38-38 का आंकड़ा आता है हमारे पास। दोनों ने 38-38 मेडल प्राप्त किए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। जिस तरह से भारत तकनीकी तौर पर इस खेलों में बढ़िया प्रदर्शन करने में कामयाब हुआ है, आगे भी हम इस सफलता की उम्मीद जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है। धन्यवाद।

0: अभी आपने एशियन गेम्स में भारत की उपलब्धियां एवं खिलाड़ियों का प्रदर्शन, इस विषय पर यह वार्ता सुनी। वार्ताकार थे नवेद इशरत। भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के दम पर एशियाई खेलों के मंच पर देश का नाम रोशन किया है। हर पदक के पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन, त्याग और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण छिपा होता है। इन उपलब्धियों की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हमारे खिलाड़ी केवल पदक ही नहीं जीतते, बल्कि वे देश के करोड़ों युवाओं को यह संदेश भी देते हैं कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत निरंतर हो और हौसले बुलंद हो तो सफलता निश्चित रूप से हासिल की जा सकती है। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का बढ़ता प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि देश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत के खिलाड़ी एशिया ही नहीं बल्कि विश्व के खेल मंच पर और भी कई बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे और तिरंगे की शान को और ऊंचा करेंगे। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था।
5: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम खेल जगत। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म है आप आए बहार आई।

अगला गीत शब्बीर कुमार की आवाज़ में है। मेरा हक फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है अनजान ने, और संगीतकार हैं अनु मलिक।

घोड़ा ना है हाथी और ना बाराती। तौबा तौबा तू है राजी मैं हूँ राजी हाँ कर ले शादी। आजा आजा, आजा, आजा।

और लीजिए, अब सुनिए दोस्ताना फिल्म का गीत। किशोर कुमार, आशा भोसले ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी ने लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रेम शरण खेमरिया। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, पालदा।

का इंदौर से फरमाइश की है हसीना बी मंसूरी और अमीना बी मंसूरी ने। अगली फरमाइश है ग्राम पजोनिया ज़िला जालौन। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है हिना फिल्म का गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

अगला फरमाइशी गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। आई मिलन की बेला फिल्म के लिए इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है कवाई ज़िला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया।

ज्योतिर्लिंग रेडियो श्रोता संघ नेहरू वार्ड यादव मोहल्ला सनावत से फरमाइश की है दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार और योगेश मालाकार ने।

साजन फिल्म का गीत सुनने के लिए फरमाइश की है प्रियदर्शनी आकाशवाणी श्रोता संघ से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दंडकवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना बंडू और बहादुरपुर रथ चौक जिला जलगांव से इन्होंने फरमाइश की है। अगली फरमाइश है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन और कैलाश महाजन। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं साजन फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। समीर ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आपकी फरमाइश कार्यक्रम। अगला फरमाइशी गीत कुदरत फिल्म से है, परवीन सुल्ताना की आवाज़, मजरूह की शब्द रचना और राहुल देव वर्मन का संगीत। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश की है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना गुप्ता और सानवी गुप्ता। अगली फरमाइश है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक और जैतिक विरक और मीका विरक की। आप सभी की फरमाइश पर पेश है कुदरत फिल्म का गीत।

कुदरत फिल्म का ये गीत अभी आपने परवीन सुल्ताना की आवाज़ में सुना। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले, पाटिल, राजदीप, राजेश, राची राजेश, श्रीमती शीतल राजेश ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक। पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना गुप्ता और सानवी गुप्ता ने। और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शोर फिल्म से। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ें हैं। इंद्रजीत सिंह तुलसी ने ये गीत लिखा है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है वार्ड नंबर 1 पोफाली ज़िला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता। अंबेडकर चौक वाकोड़ी हिंगोली महाराष्ट्र से फरमाइश की है उत्तम जामधाड़े, स्वराज जमधाड़े, स्वरती पोपलवाड़, श्री तेज संघर्षा संविधान घोड़के। और अगली फरमाइश है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया की। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से फरमाइशी पत्र भेजा है मनमोहन राजावत, राज, मधु राजावत, ऋषि राजावत, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वीटी सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार ने। तो आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर पेश है शोर फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में।

शोर फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी शोभा मुदगल का ख्याल गायन। राग है बिहाग।

अभी आपने विदुषी शोभा मुद्गल का ख्याल गायन सुना। राग था बेहाग। अब आज का राग रजनी कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम में सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के 3 डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। देश भर की हॉकी टीमों के बीच 10 अक्टूबर से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal, Nandigram in East Midnapur district and Rejinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal assembly has risen to 209 seats. In Nandigram, BJP candidate Hasirani Rath defeated Congress candidate Milan Pradhan by over 1,22,000 votes. In Rejinagar, BJP candidate Shakha Rao Sarkar defeated Ghulam Nabi Azad of the Aam Janata Unnayan Party, AJUP, by more than 75,000 votes. In Puducherry, All India NR Congress candidate Ashok Anand won the Thattanachavadi Assembly by-election by 8,482 votes. In Tamil Nadu, the ruling Tamil Raga Vetri Karagam TVK won the by-elections in Madurantakam and Tharapuram. K. Margatham Kumaravel won Madurantakam by 73,801 votes, while B. Satyabam won Tharapuram by 9,471 votes, defeating S. Suganya of DMK. In Assam, BJP candidate Devashish Sharma won the Nagaon Lok Sabha by-election, defeating AIUDF chief Badruddin Ajmal by over 1,40,000 votes. Congress candidate finished third. Prime Minister Narendra Modi congratulated the BJP candidates and praised party workers, saying the results reflected public support for the BJP NDA's good governance agenda. He also congratulated the AINRC for its victory in Puducherry. Union Home Minister Amit Shah said the NDA's by-election and local body poll victories showed that the people have completely rejected the India Alliance. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar tomorrow. Addressing media in New Delhi today, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said that applications seeking permission to hold protest or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance.
3: We have received an application from Sarav Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
2: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. The Joint Commissioner warned that the Delhi Police would take appropriate legal action against anyone found violating the law. Meanwhile, due to security reasons, the entry and exit facility will remain closed at 45 metro stations from 9 p.m. tonight till tomorrow until further notice. However, interchange facility will remain available at all the concerned metro stations except New Delhi Metro Station. The Supreme Court has directed the centre and authorities to ensure that there is no complete suspension of Delhi metro and railway services in the national capital in view of the CJP protest scheduled for tomorrow. A bench headed by Chief Justice of India Surya Kant and said that public transport services must continue in a regulated manner to minimise inconvenience to commuters. A delegation of opposition MPs met President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening regarding allegations on functioning of the Election Commission. Talking to media after the meeting, Congress President Mallikarjun Kharge said they apprised the President about the alleged discrepancies in Special Intensive Revision or SIR exercise. He said the opposition leaders have demanded that EVMs be rolled back and elections be conducted using ballot paper. South African jurist of Indian origin Navaneetham Navi Pillai has won the Nobel Peace Prize today for her contributions to promoting peace and international law. A former UN human rights chief and a judge at the International Court of Justice, Pillai grew up under apartheid and went on to build a career defending anti-apartheid activists and advancing human rights and equality. In cricket, West Indies defeated India by 6 wickets in the second T20 international in Ranchi today to level the 5-match series at 1-1. Chasing 250 for victory, West Indies overhauled the target with 6 wickets in hand and 9 balls to spare. And that is the end of this news bulletin.
4: Yakashvani, Madhya Pradesh hai. Ratri ke 11:10 hue hain. हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 10 अक्टूबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 3:56 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की ये विशेष प्रातःकालीन प्रसारण सभा। इस सभा में आपके साथ मैं हूं आपका मित्र विशाल। आप सभी को हमारा नमस्कार, शुभ प्रभात।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 4 बजने वाले हैं। महिषासुर मर्दनी महालय पर ये विशेष कार्यक्रम अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

0: चेतन यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयम्।
1: पूर्व कल्प के अवसान के पश्चात प्रलय काल में जब समस्त संसार कारण सलिल में परिणत हुआ, तब भगवान विष्णु ने अपनी संपूर्ण शक्ति प्रभाव संग्रहित कर

आसान पर नाभि कमल से जाग उठे वावी कल्प के सृष्टि विधाता ब्रह्मा, परंतु विष्णु के कर्णमल से उत्पन्न मधुकैटव असुर ब्रह्मा के कर्म और अस्तित्व के नाश के लिए उद्दत हो उठा। तब पद्म योनि ब्रह्मा ने योग निद्रा मग्न सर्वशक्तिमान विश्व पिता विष्णु को जागृत करने हेतु जगत की स्थिति

वंशोधा वंशि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमशरी नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानि चर्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वैव धार्यते सर्वं तवैतत्सृज्यते जगत् तवैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्वञ्च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि गोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि स्वं शान्ति इक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चा

सरस्वती देवी सबन से प्रबुद्ध हो, विष्णु के अंग प्रत्यंग से बाहर प्रकट हो आई। भंग हुई भगवान विष्णु की योग निद्रा, तत्काल उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और छिन्न कर डाला मधु कैटव का मस्तक। ब्रह्मा पुनः ध्यान मग्न हो बैठे, इधर दुर्धर्ष दैत्यराज महिषासुर के पराक्रम से परास्त हो देवतागण स्वर्गाधिकार से वंचित हुए।

उपस्थित हुए। कारण ब्रह्मा के वरदान से ही था महिषासुर अपराजेय। उनके द्वारा दैत्यराज का क्षय असंभव जान उनके निर्देशानुसार देवताओं ने कमल योनि ब्रह्मा जी को अपना प्रतिनिधि बना वैकुंठ में जा देखा। भगवान विष्णु और देवाधिदेव भगवान शिव परस्पर आलाप मग्न है। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से कह सुनाई महिषासुर के दुर्विषह अत्याचार की करुण कहानी। स्वर्ग भ्रष्ट देवताओं का विषाद सुनते ही परम शांति योगीवर महादेव का सुगौर मुखमंडल क्रोध से रक्त कमल के समान लाल हो उठा। शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण की तन गई भ्रुकुटियां।

महाशक्ति के आह्वान से आकाश में निनादित हो उठे महाशंख। विश्व योनि विष्णु और महारुद्र के शरीर से प्रस्फुटित हो निकली तेज की परम ज्योति। ब्रह्मा और देवगण के मुखमंडलों से निकल चला तेज। पर्वत प्रमाण ज्योति पुंज ने प्रज्वलित उताशन के तुल्य देदीप्यमान किरणों से दिग्मंडल को पूर्ण कर दिया। तेज रश्मियां एकत्रित हो परमा सुंदरी रूपवती दिव्य देवी मूर्ति में परिणत हुई। जगन मातृका महामाया के दर्शन कर

श्वेत वर्ण है नेत्र कृष्ण वर्ण, अधर पल्लव आरक्तिम करतल द्वय ताम राव, वे कभी सहस्र भुजा वाले कभी अष्टादश भुजे, कभी प्रकाशित भीम का

देवगण के कार्य सिद्ध हेतु सर्वदेव शरीरज तेज पुंज से प्रकाशित उनका अभिनव आविर्भाव हुआ महिषमर्दिनी रूप में। देवी सज्जिता हुई विचित्र रूपा रणचंडी रूप में। हिमाचल ने सिंह वाहन दिया विष्णु ने चक्र पिनाक पाणी शंकर ने शूल यम ने दंड काल देव ने सुतीक्ष्ण खंग चंद्र ने अष्टचंद्र शोभा से युक्त चर्म सूर्य ने धनुर्बाण विश्वकर्मा ने अभेद वर्म ब्रह्मा ने अक्षमाला और कमंडल कुबेर ने रत्न हार दे डाला। सभी देवताओं ने महादेवी को नाना अलंकारों से अलंकृत एवं विविध प्रहरणों से सुसज्जित कर उनसे असुर विजय यात्रा के निमित्त प्रार्थना की। रणदुंद विध्वनि से विश्व चराचर निनादित हो उठे यात्रा के पूर्व।

भुजी सिंह वाहिनी मूर्ति का परिग्रह धारण कर फूका अपना शंख, देवी के रणाहवान का अनुसरण कर ससैन्य दौड़ परा महाबलशाली महिषासुर। असुर राज देख स्तंभित हुआ, तेजस्विनी महालक्ष्मी की तेज प्रभा से लोक ज्योतिर्मय हो उठे। उनका मुकुट आकाश का चुंबन करने लगा, पदभार से सारी पृथ्वी नत हो गई और धनुष्टंकार से प्रकंपित हो उठा संपूर्ण रसातल। देव सेनापति ने महाशक्ति के जय मंत्र के गुण से

महिषासुर क्षण क्षण पर रूप परिवर्तन कर अनेक प्रकार के कौशल का करने लगा विस्तार। महिष से हस्ती बना सिंह रूपी दैत्य की रणरमत्वता को देवी ने क्षण में प्रशमित किया। तत्काल वे इंद्रजालिक नयन विमोहन पुरुष वेश में प्रकट हुआ। देवी के हाथों प्रत्याख्यान हो वे पुनः महिष मूर्ति।

0: पराजित करने के भाव से उल्लसित हो उठा। देवी का वाहन सिंहराज दावाग्नि के समान सारे रण क्षेत्र में विध्वंस करने लगा शत्रुओं को। नाना प्रहरण धारिणी देवी दुर्गा ने मधुपान करते हुए महिषासुर को ललकारा।
1: गर्ज गर्ज स्खलन बुढ़ो मधु यावत पिबाम्य हम, मैं हते त्रैव गर्ज संत्याशु देवता।
0: देवताओं ने हर्षोत्फुल्ल नेत्रों से देखा, देवी दुर्गा ने महिषासुर

त्वां स्वरूपस्थितया तवैतदप्या यते कृष्णम् अलङ्घ्य वीर्ये मोघवैष्णवीशक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवि भेदा श्रियः समस्तः सकला जगत्सु तवैकया पूरितमम्बय्यैतत् कापि स्तुतिः सद्य परा परोक्तिः स्वर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सूता सुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य निधि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणी नमस्तुते कलाकष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।

नमस्ते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देव नारायणी नमस्ते अंशयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भशरिके देवी नारायणी नमस्ते त्रिशूल चंद्राही धरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्ते मयूर कुक्कुटभृते महाशक्ति धरे नघे कौमारी रूप समस्थाने नारायणी नमस्ते शंख

समन्विते भयभ्यो स्राहिरो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रय भूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्य कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रं शेषासूरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वरेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो अनसुतानिव असुरासृग्वसापङ्क चित्तस्ते करज्वलः शूहाय खड्गो भवतु चण्डिके वाङ्नथा वयं भोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्ट्वा तु कामान् सकलानभीष्टा त्वामश्रितानां न विपन्नराणां त्वामश्रिता झाश्रयथा गमयान्ति एतत्कृतं यत् कदलं तयाद्य धर्मदिशा देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्ति कृताम्बिके तत्प्रकरति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकोद्दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम तगत्ते अतीवान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वं रक्ष्यांषि यत्र ग्रभीषाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलादि यत्र धावानलो यत्र तदाब्धिबन्धे तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधारसीति विश्वं विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तै भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतिर्नित्यं यथा असुरवधादधुनैव सिद्ध्य पापानि सर्वजगदाज्य शमनयाशु उत्पातपाकजनितांश महोपसर्गान् प्रणतालां प्रसीद।

सगुण महालक्ष्मी का प्रथम प्रकाश सप्त कांचन वर्णा भादश प्रहरण धारिणी महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी दुर्गा का पूजन वैभव

महिषासुर मर्दिनी। महालय के पावन अवसर पर आप सुन रहे थे देवी आराधन का ये विशेष कार्यक्रम। मूल आलेख बानी कुमार, हिंदी रूपांतरण दीप नारायण मिठोलिया, श्लोक पठन बीरेंद्र कृष्ण भद्र, वाचन और संगीत संयोजन पंकज कुमार मल्लिक।